0: ଆକାଶବାଣୀ ରାଉରକେଲା ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀର।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। मगरा हाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान होगा। इन केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा मतदान अधिकारी की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन मतदान केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। ये याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि मतगणना केंद्रों पर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही होंगे। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमौलिया बागची आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे। 4 मई को मतगणना के चलते तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत युद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
2: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को सांस्कार घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
1: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायक उत्पाद सूची पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए कई मानक जारी किए हैं। BIS द्वारा कोहनी, बेसाखी, चलने वाली छड़ियां और

0: तीन या अधिक स्पैरो वाली छड़ियों के लिए मानक प्रकाशित किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिमी एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे प्रस्तावित शर्तों से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व में बिखरा हुआ ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। उधर लेबनान में इजरायली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए, जिसमें कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। कल रात खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोता बंधु आपने कार्यक्रम शुणुंट एफएम बैंड्रे 102.6 मेगाहर्स जोगे आकाशवाणी राउरकेला केन्द्र को श्रोता बंधु शुणा भक्ति गीतर कार्यक्रम बंदन कितोटी भक्तिभरा भजन भजनटी को शुणा मोनालिसा पंडा कंठरे निरंजन पाढ़ी रचनारू

मंत्रीवर सुमंत्र को अपने महल में आया देख श्री राम ने उन्हें पिता तुल्य आदर सम्मान दिया। सुमंत्र महाराज की आज्ञा सुना उन्हें अपने साथ ले चले। कोप भवन का दृश्य देख श्री राम स्तब्ध रह गए। राजा ऐसी दयनीय हालत में थे मानो वृद्ध अवश गजराज क्रुद्ध सिंघनी के सामने गिरा पड़ा हो। पास क्रोध की साक्षात प्रतिमा सी खड़ी कह गई। जीवन में पहली बार श्री राम ने ऐसा दुख भरा करुण दृश्य देखा। शांत गंभीर मुद्रा में वे बोले, हे माता, पिताजी के दुख का कारण बताइए ताकि उसके निराकरण का उपाय किया जाए। कैकेयी ने बताया कि राजा के दुख का कारण स्वयं श्री राम के प्रति उनका स्नेह है। वे मुझे दो वरदान देने को वचनबद्ध थे, मुझे जो जचा मैंने मांग लिया। बस वही सुनकर राजा सोच में पड़ गए। एक ओर है पुत्र स्नेह और दूसरी ओर वचन की मर्यादा। यदि तुम सको तो इनकी आज्ञा का पालन करके इनका संताप मिटाओ। कैकेयी ने जो निष्ठुरता की प्रतिमूर्ति बन गई थी बड़ी सहजता से ये सब कुछ कह दिया। रघुवंश मणि सारा वृत्तांत सुन मन ही मन मुस्काते हुए बोले, हे माता, वो पुत्र बड़ा बड़भागी होता है जो माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य करता है। पिता की आज्ञा और आपकी सहमति पाकर वन गमन में मेरा कल्याण है। मेरे प्रिय भारत राज्य पाएंगे ये तो मेरा परम सौभाग्य है।

0: एयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा. अथ वार्ताः. निर्वाचनायोगेन पश्चिमबंगालस्य 15 मतदानकेन्द्रेषु पुनर्मतदानाय आदेशः प्रदत्तः. मगरहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्रस्य 11 केन्द्रेषु तथा डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्रस्य 4 मतदानकेन्द्रेषु अद्य पुनः मतदानं भविष्यति. एतेषु केन्द्रेषु प्रातः 7 आरभ्य सायं 6 यावत् मतदानं भविष्यति. आयोगेनोक्तं यत् एतेषु मतदानकेन्द्रेषु पुनर्मतदानस्य निर्णयः पर्यवेक्षकाणां निर्वाचनाधिकारिणां च प्रतिवेदनमालक्ष्य प्रदत्तः. एतेषु मतदानकेन्द्रेषु बुधवासरे विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीयचरणाय मतदानं जातमासीत्. प्रतिवेदनानामाधारे आयोगेन एतेषु मतदानकेन्द्रेषु निर्वाचनं निरस्तीकृतमासीत्. आन्ध्रप्रदेश अरुणाचलप्रदेश हरियाणा चण्डीगढ़ मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ेषु अस्य वर्षस्य जनगणनायाः प्रथमचरणस्य अन्तर्गतम् अद्यारभ्य गृहसूचीक्रमः गृहगणना च प्रारब्धा अस्ति. गृहमन्त्रालयेनोक्तं यत् इदं कार्यम् अस्य वर्षस्य मई मासस्य 30 यावत् प्रचलिष्यति. अस्य अन्तर्गतं प्रशिक्षितगणनाकर्तारः प्रतिगृहं गत्वा सूचनाः एकत्रितं करिष्यन्ति. एतन्मध्ये दिल्ली राजस्थान महाराष्ट्र मेघालय झारखण्डानां नगरनिगमेषु अपि स्वगणनायाः सौविध्यं प्रारब्धमस्ति. आभासीय माध्यमेन सौविध्यमिदम् अस्य मासस्य 15 यावत् प्रचलिष्यति. अनन्तरम् अस्य मासस्य 16 आगामी मासस्य 14 यावत् प्रतिगृहं गत्वा कार्यं प्रचलिष्यति. बिहारे 15 स्वगणनावधिः अद्य समाप्तः भविष्यति. अथ क्षेत्रसञ्चालनम् अद्यारप्स्यते. एवञ्च अस्य मासस्य 31 यावत् प्रचलिष्यते. विदेशमन्त्रालयेन गतमासस्य 25 30 यावत् बैंगलोर कर्नाटक भुवनेश्वर ओडिशा चेत्येषु स्थानेषु आर्ट ऑफ लिविंग इत्येतस्य सहयोगेन युवनेतृभ्यः बिम्स्टेक विनिमय कार्यक्रमस्यायोजनं कृतमासीत्. आसप्ताहं प्रचलिते अस्मिन् कार्यक्रमे 7 बिम्स्टेक सदस्य देशानां सर्वेषां क्षेत्राणां 70 युवनेतारः भागं गृहीतवन्तः. विदेशमन्त्रालयेनोक्तं यत् अयं कार्यक्रमः गतवर्षे बैंकॉक नगरे 6 बिम्स्टेक शिखरसम्मेलने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कृता घोषणा प्रख्यापनाय आयोजितः आसीत्. केन्द्रीय पञ्चायती राज मन्त्रालयः अद्य हैदराबादे आत्मनिर्भर पञ्चायत उपक्रमे एका आउटरीच इति कार्यशाला आयोजयिष्यते. आउटरीच इति कार्यशाला प्रतिभागेभ्यः राष्ट्रिय ग्राम स्वराजाभियानस्य अन्तर्गतं पञ्चायती राज मन्त्रालयस्य एकस्य उपक्रमस्य आत्मनिर्भर पञ्चायत कार्यक्रमस्य दृष्ट्या उद्देश्यैः परिचालन अवसंरचनया च परिचयं दास्यति. पञ्चायती राज मन्त्रालयस्य सचिवः विवेक भारद्वाजः आत्मनिर्भर पञ्चायत कार्यक्रमस्य दृष्टिमालक्ष्य मुख्य भाषणं प्रदास्यति. एतस्य अनन्तरं राष्ट्रिय नीति उद्देश्यानां प्राविधिक मार्ग चित्रस्य अपेक्षित परिणामाणां च विषये विस्तृत प्रस्तुतिः भविष्यति. मोरार्जी राष्ट्रिय योग संस्थानम् अद्य तेलंगानायाम् अस्य वर्षस्य योग महोत्सवस्य आयोजनं करिष्यति. आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां दिल्ली कैपिटल्स दलेन जयपुरस्य सवाई मानसिंह क्रीडांगणे राजस्थान रॉयल्स दलं 7 पराजितं. तत्रैव अद्य चेन्नई सुपर किंग्स दलं सायं 7:30 चेन्नईस्थे एमए चिदंबरम क्रीडांगणे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति. इति वार्ताः.
1: आकाशवाणी राउरकेला श्रोताबन्धु आपण कार्यक्रम शुणुछन्ति एफएम पेंट्रे 102.6 मेगाहर्ज जोगे आकाशवाणी सदा सर्वदा आपणक मनोरंजन पई। श्रोताबन्धु वर्तमान शुणिबा चलित अधिवेशन प्रसारित हेबाक कार्यक्रम संपर्क में केतोटी सूचना टिके परे परे 17:05 शुणिपारे आंचलिक संवाद 17:10 आमर स्वास्थ्य एवं 17:15 शुणिबे ओडिया संवाद आकाशवाणी कटक केन्द्ररु ओडिया भक्तिगीतर कार्यक्रम शुणिपारे 17:25 समाचार प्रभात हिंदी संवाद शुणिपारे 8:00 और 8:15 शुणिबे मॉर्निंग न्यूज इंग्राजी संवाद आकाशवाणी दिल्ली रो सुगम संगीत शुणिपारे 8:30 आज एणबु देवाशीष महापात्र शिशिर दास कंठरे केतोटी लघु संगीत बणपाहाड़ गीत शुणिपारे 8:45 क्रम आज रही साद्री गीत परेषण कर अजमर सिंह एवं साथी एवं 10:00 शुणिपारे आपण प्रिय फोन कॉल को नहीं कार्यक्रम हेलो राउरकेला एवं सबुदिन पर 9:00 अपराह 5:00 मध्य शुणिबे आपण प्रिय विविध भारती कार्यक्रम। श्रोताबंधु ये चलित अधिवेशन प्रसारित हेबाक कार्यक्रम संपर्क में केतोटी सूचना आकाशवाणी राउरकेला। श्रोताबंधु आपणक व्यवसाय उन्नति आणिबा पई आकाशवाणी सहयोग नियंतु आकाशवाणी राउरकेला केन्द्र रे विज्ञापन बुकिंग पई आज ही जोगाजोग करंतु 7008248758 रे नंबर टी आउ थरे कहि रखुछि 7008248758 रे। श्रोताबंधु वर्तमान शुणतु आंचलिक संवाद पर आमर स्वास्थ्य एवं ओडिया रे संवाद आकाशवाणी कटक केन्द्र रु किछि समय मध्यरे

0: ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଶୁଣିଲେ ମିନଲ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଏହି ଭକ୍ତିଗୀତଟିକୁ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରଚନାରୁ। ଆକାଶବାଣୀ ରାଉରକେଲା ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏଫ୍ଏମ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ 102.6 ମେଗାହର୍ଜ ଯୋଗେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ସମାଚାର ପ୍ରଭାତ ଏବଂ ପରେ ପରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया। कहा, ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में भारत की पुरुष टीम डेनमार्क में थॉमस कप के सेमीफाइनल में फ्रांस से खेलेगी और भारतीय फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद AFC U17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
2: पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों के 15 बूथों पर आज सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान शुरू हो गया है। इनमें से 11 बूथ पश्चिम मगराहाट में और 4 बूथ डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में हैं। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष पीठ का गठन किया है जो तृणमूल कांग्रेस की उस अपील पर तत्काल सुनवाई करेगी जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मतगणना केंद्रों के कर्मचारियों केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जय माल्यबागची की पीठ आज सुबह करीब 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि अदालत मतगणना कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में चुनाव आयोग के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है।
3: गृह मंत्रालय ने बताया है कि ये प्रक्रिया इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी जिसके दौरान प्रशिक्षित जनगणना कर्मी घर घर जाकर आंकड़े एकत्रित करेंगे। इस बीच जनगणना 2027 के अंतर्गत स्वगणना सुविधा कल दिल्ली नगर निगम क्षेत्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में शुरू हो गई है। ये ऑनलाइन सुविधा इस महीने की 15 तारीख तक उपलब्ध रहेगी जिसके बाद इन राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में 16 मई से 14 जून के बीच घर घर जाकर जनगणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना 2027 में पहली बार शुरू की गई इस सुविधा को जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। जनगणना 2027 के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के तहत अब तक लगभग 82 लाख परिवारों ने आधिकारिक पोर्टल sc.census.gov.in के माध्यम से इस सुविधा का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
4: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से LPG की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। रिफाइनरियों में LPG उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
1: एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड एईआरबी ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना केकेएनपी इकाई 5 और 6 में प्रमुख उपकरण लगाने की अनुमति दे दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर, कूलेंट पंप सहित संयंत्र के प्रमुख उपकरणों को लगाने की अनुमति दी गई है। एईआरबी द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इकाइयों के डिजाइन को संतोषजनक बहुस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद अनुमति दी गई। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देशभर में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। देशभर में कल 2,300 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। सरकार ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान भारतीय ध्वज वाले किसी भी पोत के साथ किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि उड़ान की स्थिति में सुधार हो रहा है और क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से भारत के लिए अतिरिक्त उड़ानें चलाई जा रही हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास ने ईरान से बाहर निकलने के लिए 2,490 भारतीय नागरिकों को सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराई है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा है कि चलन में मौजूद 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के 98.47% नोट वापसी की घोषणा के 3 साल बाद बैंक में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने अपने मुद्रा प्रबंधन अभ्यास के हिस्से के रूप में 19 मई 2023 को 2,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय प्रचलन में ऐसे नोटों की कुल कीमत लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 अप्रैल 2026 तक ये आंकड़ा तेजी से घटकर 5,451 करोड़ रुपए हो गया है। नोटबंदी की घोषणा के बाद से 2,000 रुपए के नोटों को बदलने की सुविधा 19 आरबीआई कार्यालयों में उपलब्ध है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि वापसी के बावजूद 2,000

0: रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि चार साल पहले लागू हुए भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीपीए ने भारतीय किसानों, सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यमों और अन्य व्यवसायों के लिए परिवर्तनकारी अवसर पैदा किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध मजबूती से आगे बढ़ते हुए 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
1: श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। फार्स समाचार एजेंसी सहित ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि देश का नेतृत्व आंतरिक अस्थिरता की अटकलों को निराधार सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है। यह राजनयिक गतिरोध पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में बढ़ती हिंसा के बीच आया है। उधर लेबनान में इसराइली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। पिछले महीने अमरीका के मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हमलों में दक्षिणी शहर टायर में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए जिसमें कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। लेबनान में चल रहे संघर्ष में अब तक 2000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: टेनिस में मैड्रिड ओपन के महिला एकल फाइनल में मीरा एंड्रीवा का सामना आज यूक्रेन की मार्टा कुत्स्युक से होगा। मीरा एंड्रीवा ने पिछले गुरुवार को सेमीफाइनल में अमेरिका की हेली बैप्टिस्ट को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं मार्टा कुत्स्युक ने अनास्तासिया पोटापोवा को हराकर अपने करियर के पहले WTA फाइनल में जगह बनाई। पुरुष एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जैनिक सिनर ने कल आर्थर फिल्स को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन में डेनमार्क के होर्सन्स में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। लक्ष्य सेन ने पहले मैच में चोउ तिएन चेन को हराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चियू हिस्यांग चिए और वांग ची लिन को हराया। अंत में आयुष शेट्टी ने लिन चुन यी को हराकर टीम की जीत सुनिश्चित की। पीवी सिंधु की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम उबर कप 2026 में ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई। चीन के खिलाफ हार के बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंटी ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर और एक गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर ही 226 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल ने सर्वाधिक 75 रन बनाए। केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कराईकाल, केरल और माहे में भी तेज बारिश की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे श्री अजय राय के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी आज के अखबारों की पहली खबर है। देशबंधु लिखता है गैस सिलेंडर के दाम में 973 रुपए की बढ़ोतरी। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है दाम 3000 के पार। अमर उजाला ने महंगाई का वार शीर्षक से लिखा है 5 किलो वाले छोटू के दाम 261 रुपए बढ़े। पत्र ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान दिया है, आम उपभोक्ताओं पर असर नहीं। हिंदुस्तान लिखता है बाजार पर जल्द दिखेगा असर। जनसत्ता का कहना है घरेलू गैस पेट्रोल और डीजल में भी बढ़ोतरी का खतरा। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर जनसत्ता लिखता है नशे में मान, विपक्ष परेशान आप हलकान। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है विशेष सत्र में मान सरकार ने जीता विश्वास, कांग्रेस का वॉकआउट, अकाली भाजपा रहे गैर मौजूद। नवभारत टाइम्स ने नोएडा से 15 जून से घरेलू उड़ानों के समाचार को अपनी पहली खबर बनाया है। साथ ही 13 मई तक गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री सफर की जानकारी दी है। पत्र ने सूरत में देश के पहले बैरियर फ्री टोल प्लाजा की तस्वीर भी दी है। बरगी डैम क्रूज हादसे की दर्दनाक खबर अनेक अखबारों के पहले पृष्ठ पर है। मां के सीने से लिपटे बच्चे के शव का सिहरन पैदा कर देने वाला चित्र देते हुए राजस्थान पत्रिका लिखता है सांसें थम गई पर मां की बाहें नहीं खुली। लोक सत्य के शब्द हैं मां की ममता, लाइफ जैकेट में छिपा लिया जिगर का टुकड़ा। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है डूबा क्रूज मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ओर से संचालित किया जा रहा था, इसीलिए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होगा। केवल घटना पर शोक जताने या फिर मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा मात्र से कर्तव्य की तिश्री नहीं की जानी चाहिए। पत्र लिखता है ये कहने में हर्ज नहीं कि भारत में हर स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने का शर्मनाक सिलसिला जारी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया, कहा ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में थॉमस कप के सेमीफाइनल में डेनमार्क में भारत की पुरुष टीम का सामना फ्रांस से और भारत की महिला फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Repolling begins in 15 polling stations of 2 assembly constituencies in West Bengal. Field operations for house listing and housing census under phase 1 commence in 5 states and 1 union territory. IMD forecasts very heavy rainfall over northeast region and southern peninsula today. US President Donald Trump rejects Iran's proposal to end ongoing conflict, says Iran is seeking concessions they cannot accept. In badminton, Indian men's team to take on France in semi-finals of Thomas Cup in Denmark. And in football, Indian women team all set to play in AFC Under 17 Women's Asian Cup after 21 years in China. Repolling has started in 15 booths in 2 constituencies in West Bengal from 7 in the morning today. More details on this from our correspondent.
4: Among these, 11 are in Poshchim Ograhat and 4 booths are in Diamond Harbour Assembly constituency. Election Commission has ordered repolling after irregularities were reported. Meanwhile, in another development, a special bench has been set up by Supreme Court to urgently hear the Trinamool Congress's appeal against the Calcutta High Court order that restricted counting centre staff to central government employees only. The bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Jayamallu Bakka Bagchi will take up the matter today. Since vote counting scheduled for Monday, the Trinamool Congress requested an urgent hearing. Day before yesterday, Calcutta High Court Justice

0: चिन्मय विद्यालय इंग्राजी माध्यम छेंड राउरकेला स्वतंत्र आदर्श स्वतंत्र चिंताधारा और स्वतंत्र शिक्षा प्रदान करुथिबा एक अनन्य शिक्षानुष्ठान चिन्मय सेवा ट्रस्ट द्वारा परिचालित स्वामी चिन्मयानंदनक आदर्शरे अनुप्राणित आईसीएसई बोर्ड स्वीकृति प्राप्त 34वें वर्षरे पदार्पण करिथिबा उत्तम मनुष्य गढ़ुथिबा एक अग्रणी शिक्षानुष्ठान जेउठी सर्वांगीन शिक्षा उचित मार्गदर्शन सह पिलांक सुरक्षा सुस्थता और सर्वांगीन विकास को दिया जाए प्राथमिकता शत प्रतिशत पास हार सह श्रेष्ठ फलाफल हेउछि जहार अनन्य सफलता जेउठी 2026-27 शिक्षा वर्ष पई केजी श्रेणी रु नवम श्रेणी एवं विशेष भाव रे एकादश विज्ञान और वाणिज्य श्रेणी पर्यंत चलीछि एबे नामलेखा एवं समस्त श्रेणी रे सीमित स्थान रहिछि ताहाले आउ डेरी काहे कि केजीरु नवम और एकादश श्रेणी में नाम लिखाइबा पई विद्यालय कार्यालय सह आज ही जोगाजोग करंतु समय सकाळ 8:00 दिन 11:00 मोबाइल नंबर 7873819988 एवं 9437109907 आउथरे कहि दउछि मोबाइल नंबर 7873819988 एवं 9437109907 चिन्मय विद्यालय सफलतार अनन्य शिक्षालय
1: श्रोताबंधु सुगम संगीत रे परवर्ती गीतटिकु शुणिबा देवाशीष महापात्र एवं शिशिरा दासंक जुगल कंठरे तपन पटनायकंक रचनारो

विविध भारती पर चित्रलोक कार्यक्रम में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब सुनवा रहे हैं आपको स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म का गाना, शेखर रवजियानी, सलीम मर्चेंट और नीति मोहन का गाया हुआ। लिखा है अन्विता दत्त ने, धुन बनाई है विशाल शेखर ने।

इश्क से महकते इस गीत के बाद अब अगला गाना टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म से सचेत टंडन की आवाज में, परंपरा ठाकुर साथ में, गरिमा वहाल और सिद्धार्थ सिंह ने इस फिल्म के गीत लिखे और सचेत परंपरा का संगीत है।

कहीं एक मुख्तसर सी मुलाकात की बात हो तो फिर ये बात ज़रूर होगी। तेरी मेरी कहानी फिल्म के इस गाने के साथ वाजिद अली की आवाज़ में प्रसून जोशी का गीत, साजिद वाजिद का संगीत।

ये ख़ास मुलाकात, कुछ बातें अनकहीं, बहुत स्पेशल हैं, बहुत ख़ास हैं। और इन गीतों का ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

द डर्टी पिक्चर फिल्म से आप सुन रहे थे कमाल खान का गाया हुआ ये गाना। रजत अरोड़ा ने लिखा था और विशाल शेखर ने संगीत तैयार किया था। चित्रलोक कार्यक्रम में अगला गाना सिंघम फिल्म से सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और अजय गोगावले की आवाजों में। स्वानंद किरकिरे के बोलों को संगीत से सवारा है अजय अतुल ने।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में आपने हिचकी फिल्म का ये गाना सुना, राजशेखर के बोल, जसलीन रॉयल का संगीत। और यहीं तक है आज का सफ़र चित्रलोक कार्यक्रम में। दीजिए राजुल को इजाज़त, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों नमस्कार, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है सत्यजीत रे की स्मृति को। सत्यजीत रे का शुमार भारत के महानतम फिल्मकारों में होता है। आज पश्चिमी दुनिया में अगर भारतीय सिनेमा अपनी कोई पहचान कायम कर पाया है या अपना परचम बुलंद कर पाया है तो इसका सीधा श्रेय जाता है सत्यजीत रे को, जिनकी पहली ही फिल्म पाथेर पांचाली सन 1956 में कैंस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी। सत्यजीत रे का सिनेमा सरोकारों का सिनेमा था। वहां पॉपुलर सिनेमा की कोई चमक दमक नहीं थी, वहां समस्याओं से जूझते भारतीय समाज की चिंता थी, वहां भूख और गरीबी के खिलाफ रचनात्मक हस्तक्षेप था, वहां सामाजिक अन्याय की बातें थीं, सदियों से शोषित होती चली आई नारी की पीड़ा को पर्दे पर साकार रूप देने की आकांक्षा थी सत्यजीत रे के सिनेमा में।

मुंबई सिनेमा की मार धाड़, उसका नाच गाना और उसका स्वप्निल संसार एक छोर पर है और दूसरे छोर पर है सत्यजीत रे का यथार्थवादी सिनेमा। आइए एक नजर डालें सत्यजीत रे की सिने यात्रा पर। सत्यजीत रे का जन्म 2 मई 1921 को कलकत्ता के एक सांस्कृतिक परिवार में हुआ था। फिल्मों का शौक सत्यजीत रे को बचपन में ही लग गया था। उन्हें वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक का शौक भी लग गया और पेंटिंग का भी। अपनी मां के कहने पर सत्यजीत रे सन 1940 में शांति निकेतन आ गए। वे चित्रकला के छात्र बनकर यहां आए थे। सन 1942 में वे शांति निकेतन छोड़कर अपने घर चले आए। सन 1943 सत्यजीत रे ने डीजे कीमर नामक एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जूनियर विजुलाइजर का काम शुरू किया। 13 साल तक सत्यजीत रे इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी में बने रहे। इसी दौरान सत्यजीत रे ने शौकिया तौर पर पटकथाएं लिखना शुरू किया। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी घोरे बाईरे पर आधारित पटकथा इन्हीं दिनों सत्यजीत रे ने लिखी थी। उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने सन 1950 में उन्हें लंदन हेडक्वार्टर भेज दिया। 6 महीने के लंदन प्रवास में सत्यजीत रे ने विक्टोरिया देसीका की फिल्म बाइसाइकिल थीफ देखी और इसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब सत्यजीत रे ने यह तय कर लिया था कि वे शौकिया कलाकारों को लेकर एक यथार्थवादी फिल्म जरूर बनाएंगे। उन्होंने विभूति भूषण बंदोपाध्याय की कृति पाथेर पांचाली के अधिकार खरीद लिए। तलाश थी एक फाइनेंसर की। प्रोड्यूसरों को प्रभावित करने के लिए सत्यजीत रे अपने साथ एक नोटबुक लेकर जाते थे जिसमें पाथेर पांचाली के कुछ अहम दृश्यों के रेखा चित्र बनाए हुए थे। 2 साल तक सत्यजीत रे प्रोड्यूसरों की तलाश में भटकते रहे लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार निराश होकर सत्यजीत रे ने अपनी जीवन बीमा पॉलिसी गिरवी रख दी। कुछ पैसा मित्रों और रिश्तेदारों से मिला और 27 अक्टूबर 1952 को रविवार यानी दफ्तर की छुट्टी के दिन पाथेर पांचाली का पहला दृश्य फिल्माया गया। जैसा कि हमने आपको बताया 27 अक्टूबर 1952 को सत्यजीत रे ने फिल्म पाथेर पांचाली का पहला दृश्य फिल्माया था। ये वो दृश्य है जिसमें अपू दुर्गा के पीछे काश के खेत में से भागता है। काश एक बहुत ऊंची सी घास होती है। ये दोनों लोग खेतों में से भागते हुए जा रहे हैं पहली बार गांव के नजदीक से गुजरती छुप छुप रेलगाड़ी को देखने के लिए। सत्यजीत रे को ये लगा था कि ये दृश्य बहुत ही प्रभावी होगा और इसके जरिए उन्हें पाथेर पांचाली के प्रोड्यूसर मिल जाएंगे, यानी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो इस फिल्म में पैसा लगाने को तैयार हो जाए। लेकिन ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत आसान नहीं था। अपू की भूमिका के लिए कलाकार को ढूंढना सत्यजीत रे के लिए बहुत मुश्किल था। उन्होंने समाचार पत्रों में विज्ञापन छापे। सैकड़ों लोग इसके लिए ऑडिशन देने के लिए आए लेकिन आखिरकार सत्यजीत रे को दक्षिण कलकत्ता के एक फ्लैट के पास बिजोया खेलता हुआ दिख गया और बस उन्हें लगा कि यही है उनका अपू। इसी दौरान बिमल रॉय ने सलील चौधरी की कहानी पर बनाई अपनी यथार्थवादी फिल्म 2 बीघा जमीन, जिसे सन 1954 में कैंस फिल्म फेस्टिवल में ग्रां प्री अवार्ड मिला।

0: दो बीघा जमीन और कुरुसावा की रोशोमन ने यथार्थवादी सिनेमा पर सत्यजीत रे का विश्वास प्रबल कर दिया। बहुत मुश्किलों से बनी फिल्म पाथेर पांचाली आखिरकार 26 अगस्त को कलकत्ता में प्रदर्शित हुई और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाब रही। सन 1955 में केन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म ने स्पेशल जूरी अवार्ड जीता और सत्यजीत रे अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्मकार बन गए।
1: सोनार मानुष भासछे रसे, सोनार मानुष भासछे रसे।
0: पाथेर पांचाली की कामयाबी ने सत्यजीत रे को नई ऊर्जा से भर दिया। पाथेर पांचाली, अपराजितो और अपूर संसार, ये तीनों अपूत्रयी के नाम से विख्यात हैं। सन 1981 तक हर साल सत्यजीत रे अपनी एक फिल्म जरूर लेकर आए। सत्यजीत रे की फिल्म यात्रा सिने इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी हुई है। सन 1958 में आई परश पाथर, इसी साल आई जलसाघर, 1960 देवी, सन 1961 तीन कन्या, सन 1962 कंचनजंगा, सन 1963 महानगर, 1964 में आई चारुलता, 1968 में आई गोपी गायन बाघबाइन, सन 1977 में आई उनकी हिंदी फीचर फिल्म शतरंज के खिलाड़ी। प्रेमचंद की कहानी पर उन्होंने अपनी एक टेलीफिल्म भी बनाई सदगति, सन 1984 घरे बाई रे, सन 1989 गणशत्रु। 1984 के बाद कुछ साल सत्यजीत रे अपनी बीमारी की वजह से सिनेमा से दूर रहे। सन 1989 में उन्होंने इप्सन की कृति एनिमी ऑफ द पीपल पर अपनी फिल्म बनाई गणशत्रु, इसके अगले वर्ष शाखा प्रशाखा और सन 1991 में आई सत्यजीत रे की अंतिम फिल्म आगंतुक। सत्यजीत रे ने अपनी अधिकांश फिल्में साहित्यिक कृतियों पर बनाई थीं। सन 1992 में सत्यजीत रे को लाइफटाइम अचीवमेंट का ऑस्कर अवार्ड मिला था। इसी साल उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म का लेखन जानी मानी लेखिका शमा जैदी ने चर्चित लेखक जावेद सिद्दीकी के साथ किया था। मैंने शमा जैदी और जावेद सिद्दीकी दोनों से बातें की। शमा जैदी ने हमें बताया,
2: बंसी चंद्रगुप्त उनके आर्ट डायरेक्टर थे
0: जी,
2: तो जावेद और मेरे वो बहुत दोस्त थे, वो तो उनके यहाँ हम जाके
0: जावेद सिद्दीकी साहब जिन्होंने शतरंज के खिलाड़ी में आपके
2: साथ, तो मैं उनके साथ जाती थी, तो उन्होंने कहा कि तुम चलो, सत्यजीत रे आए हुए फिल्म बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बैकग्राउंड मटेरियल मेरे लिए जमा करो, तो काफी मैंने इधर उधर से उनको मटेरियल भी दिया उसके लिए
0: जी,
2: तो उन्होंने कहा कि तुम डायलॉग भी लिख लो, तो मैंने कहा ऐसी फंसी उर्दू शायद मैं नहीं लिख पाऊंगी, मगर मेरे एक दोस्त हैं, मैं बात करती हूं उनसे, तो मैंने जावेद से कहा, जावेद ने कहा मैंने कभी फिल्म के लिए नहीं लिखा है,
0: उन दिनों वो जर्नलिस्ट थे,
2: जर्नलिस्ट थे, मैंने कहा नहीं नहीं तुम लिखोगे।
3: अब ये शतरंज भी कंपनी की अमलदारी में आ गई क्या? खूब। वैसे मैंने ला मार्टिनेर के कॉलिन साहब से सीखी है, मैं उन्हें उर्दू फारसी पढ़ाने जाता हूँ ना।
4: अच्छा अच्छा मुंशी साहब, ये दोनों वजहों में फर्क क्या है?
3: नवाज साहब को ज्यादा फर्क नहीं है, या आपका वजीर जो है वो अंग्रेजी खेल में क्वीन यानी मलिका कहलाता है, और दोनों आमने सामने रहती हैं, और प्यादा पहली चाल में दो घर चल सकता है।
4: दो घर?
3: जी हाँ दो घर, और मुखालिफ सिरे पर पहुंच जाए तो मलिका बन जाता है।
4: कमाल करते हैं ये अंग्रेज भी। मगर इन तब्दीलियों से फायदा?
3: बाजी झटपट खत्म हो जाती है।
4: क्यों? उन्हें हमारा खेल सुस्त लगता है क्या?
3: जी हाँ, उन्हें हमारी सवारियां भी सुस्त लगती हैं, इसीलिए तो रेलगाड़ियां आने वाली है।
4: और तार?
3: जी हाँ। तार घर तो कब के आ गए, लेकिन मुझे एक आंख भी नहीं भाते।
4: क्यों?
3: बुरी खबरें जो फौरन पहुंच जाती हैं।
4: बुरी खबरें?
3: आपने कुछ सुना नहीं?
5: हम सुनते उनते कुछ नहीं मुंशी साहब, खेलते हैं।
3: मीर साहब, हंसने से बला नहीं टलेगी। सुना है कंपनी बहादुर अवध पे कब्जा करने वाली है। यही खबर देने को तो हाजिर हुआ था मैं।
6: मुंशी साहब, आप अंग्रेजी वजह की शतरंज खेलते हैं फिर भी अंग्रेजों की चाल नहीं समझ सके। अरे भाई, ये नेपाल में लड़ाई, पंजाब में लड़ाई, अफगानिस्तान में लड़ाई, इन लड़ाइयों के लिए दरकार है पैसा, और कंपनी ठहरी कंगाल। पैसा लाए कहां से?

0: ये हैं चर्चित लेखक जावेद सिद्दीकी, जो सत्यजीत रे से जुड़ी निजी यादें हमारे साथ बांट रहे हैं।
1: भाई शतरंज के खिलाड़ी की याद मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट याद है। उसकी वजह यह है कि शतरंज के खिलाड़ी वो फिल्म है जहां से मेरे फिल्मी सफर का आगाज होता है।
0: बिल्कुल,
1: उससे पहले मैंने कोई फिल्म लिखी नहीं थी, मेरा कोई इरादा भी नहीं था, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि मैंने जर्नलिज्म छोड़ दिया था। और उस जमाने में मेरी दोस्त शमा जैदी ने मुझसे कहा कि सत्यजीत रे से मिलना चाहते हैं, और पहले तो मैं समझा कि ये मजाक हो रहा है, लेकिन ये कि फिर मैं सत्यजीत रे से मिलने के लिए गया जो बॉम्बे में एक होटल में ठहरे हुए थे। बड़ा मैं हैज बैज में था कि मतलब पता नहीं ये क्या हो रहा है क्या है, लेकिन मैंने जब फोन किया तो एक बड़ी गूंजती हुई आवाज आई, क्योंकि सत्यजीत रे की आवाज जिसे इंग्लिश में बैरिटोन कहते हैं,
0: बिल्कुल
1: वो वैसी एक आवाज थी, बड़ी इम्प्रेसिव
0: जी।
1: और उन्होंने कहा कि कम आप, मैं चला गया और उन्होंने वो खुद दरवाजा खोला क्योंकि वो कमरे में अकेले थे
0: जी।
1: पहली मर्तबा मैंने इतना लंबा बंगाली देखा बाल वो कोई 6 फीट से मेरा ख्याल है 1-2 इंच ऊपर ही थे
0: जी हाँ।
1: और एक बड़ी प्लीजिंग पर्सनैलिटी, खादी का कुर्ता पजामा सफेद पहने हुए, और मैंने अपना इंट्रोडक्शन कराया, वो बैठे रहे, मैं उनके सामने बैठ गया। और उनकी एक बड़ी अजीब आदत थी कि वो कोई जब सोचते थे तो कोई चीज चबाया करते थे।
0: अच्छा,
1: कभी वो रुमाल का कोना चबाया करते थे, कभी अपने चश्मे का डंडा चबाया करते थे, तो उनके बेचारे सारे चश्मे जितने भी थे वो सब बहुत जख्मी हालत में, वो अपने चश्मे की डंडी चबाते रहे और वो मुझे देखते रहे कुछ देर तक। और फिर कहने लगे कि अच्छा, उनको एक बात मैं बता दूं यूनुस साहब, कि उन्हें इंग्लिश और बंगला के सिवा कोई जबान नहीं आती थी,
0: और ये फिल्म उनकी पहली और आखिरी हिंदी फिल्म थी।
1: पहली और आखिरी हिंदी फिल्म। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आई एम टोल्ड दैट यू आर ए वेरी गुड शॉर्ट स्टोरी राइटर। मैंने कहा साहब, आई राइट इन उर्दू एंड नोबडी कैन बी ए गुड जज ऑफ हिज ओन वर्क, इफ यू लाइक आई कैन गेट सम ऑफ माय वर्क ट्रांसलेटेड फॉर यू एंड यू कैन हैव ए लुक। तो वो कहने लगे कि नो यंग मैन, आई कैन हैव ए लुक एट यू
0: जी,
1: एंड हियर इज माय स्क्रिप्ट एंड यू आर राइटिंग द डायलॉग।
0: ओहो,
1: तो ये कुल 1.5 मिनट की मुलाकात थी सर, और मतलब वो ऐसी अजीबोगरीब मुलाकात थी कि उसे भूलने का सवाल ही नहीं पैदा होता।
0: बिल्कुल।
1: तो फिर मैं बौखला के फिर मैं भागा हुआ वहां से अपनी दोस्त शमा जैदी के गया और मैंने उनसे पूछा कि भैया ये बताओ डायलॉग कैसे लिखे जाते। तो वहां से सत्यजीत रे, अच्छा जब हमने डायलॉग लिख दिए तो उसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था कि हमने जोश में लिख तो डाले, लेकिन जो लोग बाकी लोग इन्वॉल्व थे, खासतौर से हमारे दोस्त बाद में बहुत ज्यादा बन गए सुरेश जिंदल जो प्रोड्यूसर थे
0: जी,
1: वो बेचारे बहुत घबराए हुए थे, पकड़ लिया पता नहीं कहाँ से, और उसको इतनी इम्पोर्टेंट फिल्म जिसकी पूरी दुनिया वेट कर रही है उसके डायलॉग इन्होंने लिखवा लिए। हालांकि उस रेस में दूसरे लोग भी थे, वो जिसे फारसी में कहते हैं ना कुरै फाल बनामे मने दीवाना जदन, कि वो कुरै फाल जो था वो इस दीवाने के नाम। तो बहर हमने वो लिख दिए और सुरेश जिंदल साहब ने जो बम्बई में जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, खास तौर से उर्दू जानने वाले, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और ये वो पता नहीं कौन कौन, उनको बुला के बिठाया और कोई 20 आदमियों की एक महफिल थी जिसमें मैंने वो पढ़ के डायलॉग उनको सुना दी फ्रॉम पहले फ्रेम से आखिरी फ्रेम तक
0: जी।
1: फिर अब सब चुप थे, वो मोमेंट मेरे लिए बड़ा अजीबोगरीब था कि सब चुप बैठे हुए, भाई पता नहीं मैंने पहली बार लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा है। सडनली उनकी बूमिंग वॉइस मुझे सत्यजीत रे की सुनाई दी, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला है जो मैं कभी नहीं भूलता
0: जी,
1: कि I don't know what he has written, but it sounds very good.
0: वाह।
1: उसके बाद की यादें भी बड़ी प्यारी हैं कि जब फिर हम, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने लोग उनके करीब थे वो उन्हें सत्यजीत रे या कुछ ऐसा नहीं कहते थे, या मिस्टर रे नहीं कहते थे, हम लोग उन्हें मानिक दा कहा करते थे।
0: बिल्कुल।
1: जो मानिक उनके घर का नाम था, और बोधी जो उनकी बीवी हैं वो असल में उन्हें मानिक कहा करती थी, तो सभी मानिक दाई कहते थे।

0: कुछ दिनों के बाद फिर मानिक दा का फोन आया, कहने लगे भाई वो तुमने डायलॉग तो लिख दिए और वो बहुत अच्छे भी हैं, मैंने कई लोगों से उनको पढ़वा के तर्जमा करा के देखा और बहुत बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका शीन काफ कौन बताएगा। विल यू बी एबल टू बी द डायलॉग डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। तो वो गरीबी का जमाना था, मैंने अरे भाई इसे अंधा क्या चाहे दो आंखें, तो मैं भाग के फौरन कलकत्ता पहुंच गया। अच्छा फिर जब हम वहां पहुंचे तो वहां एक अजीब गरीब सूरत हाल थी। वहां सूरत हाल ये थी कि वो उनके जो बंगाली असिस्टेंट थे वो कलकत्ते के इंद्रपुरी स्टूडियो में एक लखनऊ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। अब जाहिर है कि वो इसलिए नामुमकिन था कि वो बेचारे किसी लखनऊ से पहले तो खुद वाकिफ नहीं थे, और दूसरी चीज ये कि लखनऊ हो या यूपी को आप अगर इन जनरल कह लें तो वो एक कल्चर है, वो एक मिजाज है, और कल्चर और मिजाज को आप जब तक आप उसे जिए नहीं, आप उसे बरते नहीं, आप उसे महसूस नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे बहुत ही अजीब लगा कि ये तो क्या हो रहा है भाई, ये तो सब सारी की सारी चीज़ें गलत हैं। फिर हमने उसमें दखल अंदाजी की कि साहब ये तलवारें ऐसी नहीं होती थीं और ये कपड़े ऐसे नहीं होते थे और ये चलते ऐसे नहीं थे और ये ऐसे होता था वो ऐसे होता था। फिर हम ढूंढते फिरे कलकत्ते में एक एक चीज़ पुराने ज़माने की, क्योंकि 1857 का माहौल था
1: जी।
0: तो मानिक दा बहुत इम्प्रेस हुए हमारी मेहनत से। और तो आप अगर देखें तो उसमें फिल्म में मेरा टाइटल दो मरतबा आता है, एक मरतबा एज एन असिस्टेंट, स्पेशल असिस्टेंट, और दूसरा डायलॉग राइटर।
1: ये बताएं कि जब शतरंज की खिलाड़ी बन रही थी, अब आप उसमें दो तरह से शामिल हो चुके थे, बतौर डायरेक्टर आप उनको कहां किस तरह से पाते हैं?
0: मैं जिस सत्यजीत रे को जानता हूं, मेरा ख्याल ये है कि वो एक बेहद जहीन, बेहद समझदार और फिल्म को महसूस करके बनाने वाला डायरेक्टर था। और ये बहुत ही अहम बात मेरे लिए थी, और उसकी बहुत सारी मिसालें थी। एक तो ये कि वो, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि उसके फोटोग्राफर जो थे, सिनेमाटोग्राफर, वो शोमेंदु रॉय थे, लेकिन ये कि कैमरा ऑपरेट मानिक दा खुद करते थे।
1: अरे वाह।
0: हाँ, वो हमेशा खुद

0: को सत्यजीत रे इस असार संसार को छोड़कर चले गए। महान फिल्मकार कुरुसावा ने सत्यजीत रे के लिए कहा था, सत्यजीत रे का अवलोकन बड़ा गहरा और खामोश होता है। उनकी फिल्मों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। वो अपने आप में एक विशाल फिल्म इंडस्ट्री है। अगर आपने सत्यजीत रे का सिनेमा नहीं देखा तो समझ लीजिए कि आपका जीवन वैसा ही है जैसे आप धरती पर तो रहे मगर आपने सूरज और चांद पर नजर नहीं डाली। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

फिल्म संसार के जानी मानी कलाकारों पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, हर रोज सुबह 9:30 और रात 9:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: कौन करंती आपण कहले
1: बारे आसी आ
0: ना खाली इनते हाउसवाइफ
1: ए ए गाडी गाडी करे फुला बसा परिवार तो इरा तो लगा लगे
0: को गीत सुनिबा जी कोंतु
1: की जगन्नाथर अपतो भाबरे बंदारे से तो भक्त जीवन बन
2: तो भक्त तो भाबरे बंदारे
0: बहुत सुंदर गाइले बढ़िया गाइले आप पसंद अनुसार श्रीजगन्नाथ कथाचित्रु सुंदर गीतटे शुणी दूचु आपण को भी आपणकर जिते अच्छा जगत सिंहपुर अंचल जिते अधिवासी अच्छा आमर जिते लिस्नर अच्छा समस्त को धन्यवाद ठीक अच्छे बहुत बहुत धन्यवाद फोन कर था कौन हेलो राउरकेला।

चिन्मय विद्यालय इंग्राजी माध्यम छेंड राउरकेला स्वतंत्र आदर्श स्वतंत्र चिंताधारा और स्वतंत्र शिक्षा प्रदान करुथिबा एक अनन्य शिक्षानुष्ठान चिन्मय सेवा ट्रस्ट द्वारा परिचालित स्वामी चिन्मयानंदनक आदर्शरे अनुप्राणित आईसीएसई बोर्ड स्वीकृतिप्राप्त 34वें वर्षरे पदार्पण करिथिबा उत्तम मनुष गढ़ुथिबा एक अग्रणी शिक्षानुष्ठान जेउठी सर्वांगीन शिक्षा उचित मार्गदर्शन सह पिलांक सुरक्षा सुस्थता और सर्वांगीन विकास को दिया जाए प्राथमिकता शत प्रतिशत पास हार सह श्रेष्ठ फलाफल हेउचे जहार अनन्य सफलता जेउठी 2026-27 शिक्षा वर्ष पई केजी श्रेणी रु नवम श्रेणी एवं विशेष भावरे एकादश विज्ञान और वाणिज्य श्रेणी पर्यंत चलीचे एबे नामलेखा एवं समस्त श्रेणी रे सीमित स्थान रहीचे ताहाले आउ डेरी काहे कि केजी रु नवम और एकादश श्रेणी रे नामलेखाइबा पई विद्यालय रो कार्यालय सह आज ही जोगाजोग करंतु समय सकाळ 8टा रु दिन 11टा मोबाइल नंबर 7873819988 एवं 9437109907 आउ थरे कहि दउछि मोबाइल नंबर 7873819988 एवं 9437109907 चिन्मय विद्यालय सफलतार अनन्य शिक्षालय।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। जी दोस्तों, चित्रपट संगीत की शुरुआत कर रहे हैं इस गजल के साथ। गायिका हैं जगजीत कौर, फिल्म का नाम है बाजार। मिर्जा शौक की रचना है और खयाम साहब की धुन।

और आइए अब सुनते हैं खय्याम साहब के संगीत निर्देशन में शहरयार की रचना स्वर तलत अजीज का, और फिल्म का नाम है उमराव जान।

खय्याम साहब के ही संगीत निर्देशन में हम आपको जानिसार अख्तर की रचना सुनवा रहे हैं। आवाज़ लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है शंकर हुसैन।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
3: जी हाँ दोस्तों, आपकी चिट्ठियों का हमें बेसब्री से इंतजार है। आज ही सुनेंगे आप अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत दोपहर 3 बजे।

यह अवस्थी चित्रा सिंह की फिल्म का नाम था साथ साथ। इसे लिखा था जावेद अख्तर ने और धुन बनाई थी कुलदीप सिंह ने। और लीजिए अब सुनिए आशा भोसले के साथ भूपेंद्र को, फिल्म का नाम है एतबार। इस गीत को हसन कमाल ने लिखा है और धुन बनाई है बप्पी लहेड़ी ने।

पेश खिदमत है कार्यक्रम की आखिरी गजल। मदन मोहन का संगीत है, साहिर लुधियानवी की रचना, आवाज लता मंगेशकर की, और ये फिल्म है

प्रस्तुत है आज का मैटिनी शो। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, आज इस कार्यक्रम की ये है पहली कड़ी और इस कार्यक्रम में हम करेंगे कुछ फिल्मी गपशप। क्यों, कैसा रहेगा दोस्तों? अच्छा रहेगा ना? देखिए ना, दोपहर का वक्त है और ऐसे समय में अगर हल्की फुल्की गपशप हो जाए तो कहने ही क्या। अच्छा, हम आपको बता दें कि आपको पता ही है कि कल 1 मई को हमने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया था, है ना? तो क्यों ना आज इसी पर हम मैटिनी शो कर लेते हैं। देखिए ना, मजदूरों की मेहनत, संघर्ष और उनकी मजबूरियों को दर्शाने वाली कितनी ही बेहतरीन फिल्में बनाई गई हैं ना, जो समाज के इस अहम वर्ग की कहानी को बयां करती हैं। तो हमारी बहुत सारी फिल्में इसी श्रम पर बनी हैं। चलिए तो आज के इस कार्यक्रम में कुछ समय उन आइकॉनिक फिल्मों के लिए निकालते हैं जो मजदूरों के अधिकारों और संघर्ष के बारे में बताती हैं, श्रम के महत्व के बारे में बताती हैं। सबसे पहले 1957 की फिल्म नया दौर की बात करते हैं। जी हाँ, वही नया दौर। इसके गीत तो आप सभी को बहुत पसंद हैं। इस फिल्म को भारतीय फिल्मों के इतिहास में मील का पत्थर माना गया है और इस फिल्म में दिलीप कुमार अपने साथी मजदूरों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। इस फिल्म में दिलीप कुमार, वैजयंती माला अपने अद्भुत अभिनय से हमारा मन मोह लेती है और इस फिल्म का ये गीत साथी हाथ बढ़ाना एक अमर गीत बन गया हो जैसे।

0: फिल्म नया दौर में अभी आपने मोहम्मद रफी आशा भोंसले को सुना, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और ओपी नैयर साहब की धुन थी ये। दोस्तों, दुनिया भर में हर साल हर दिन यानी साल का जो पहला दिन है मई का, उसे हम मजदूर दिवस के रूप में मनाते जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अन्य दिनों में इस वर्ग के बारे में बात नहीं करें, क्योंकि ये वर्ग इतना अहम है हमारी जिंदगी के लिए कि बड़े पर्दे पर हमेशा से ही आम आदमी के जीवन और उससे जुड़ी समस्याओं को बखूबी दिखाया गया है। अगर हम हिंदी फिल्मों की बात करें तो पुराने समय से ही फिल्मों में मजदूर और उसके संघर्ष को फिल्माया गया है। समाज में अपना अहम योगदान देने वाले इन मजदूरों के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी हैं जिनका जिक्र हम अक्सर करते हैं और ऐसी फिल्मों को हम पसंद भी करते हैं, और ये फिल्में अपने समय की आइकॉनिक फिल्में बन गई हैं और इन फिल्मों को हम कभी नहीं भूल पाते हैं। अगर 1953 की फिल्म दो बीघा जमीन की मैं बात करूँ तो आप ज़रूर मेरे हाँ में हाँ मिलाएंगे, है ना। देखिए, 1953 में ये फिल्म आई थी, दो बीघा जमीन, बिमल रॉय की फिल्म थी और बड़ी ही क्लासिक फिल्म थी। एक किसान अपनी जमीन बचाने के लिए शहर में रिक्शा चलाने के संघर्ष पर ये पूरी फिल्म बनाई गई, जो श्रमिक वर्ग की परेशानी को बहुत ही मार्मिकता के साथ दिखाती है। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।
1: भाई रे,
0: इस बार लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों के हैं दो बीघा जमीन के लिए। शैलेंद्र ने इसे लिखा और सलील चौधरी ने संगीत में ढाला। क्या शानदार गीत है।

जी हाँ, तो इस समय हम मैटिनी शो पर बात कर रहे हैं, आज मजदूरों पर, श्रमिकों पर और श्रम पर। आप सभी जानते हैं एक फिल्म आई थी बूट पॉलिश, 1954 में बनी राजकुमार की, राज कपूर साहब की, क्षमा कीजिए, फिल्म जो थी गरीबी, अभाव और विपरीत परिस्थितियों में भी ईमानदारी, आत्मसम्मान और मेहनत के रास्ते पर चलना सिखाती है। ये फिल्म बच्चों के संघर्ष और उनके जज्बे की अमर कहानी है। बूट पॉलिश फिल्म आपने देखी होगी और ज़रूर आप बच्चों के अभिनय से प्रभावित हुए बिना नहीं रह गए होंगे, है ना। फिल्म में जो पात्र थे भोला और बेलू, वो अभावों में भी भीख मांगने से इनकार करते हैं और बूट पॉलिश करके अपनी मेहनत की रोटी कमाने का रास्ता चुनते हैं। लेकिन अगर हम अब देखें श्रोताओं, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करवाना एक दंडनीय अपराध है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि भारत में बाल श्रम अधिनियम जो है 23 दिसंबर 1986 को आधिकारिक रूप से लागू हुआ था। और इस अधिनियम का जो उद्देश्य है वो ये है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों और प्रतिक्रियाओं में काम करने से हमें रोकना है। और इसका संशोधन 2016 में हुआ था, जिसमें ये संशोधन किया गया कि बाल और किशोर श्रम निषेध और विनियमन 1986 के रूप में जाना जाए। और हाँ, अब वर्तमान की अगर हम बात करें तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पूर्ण निषेध और 14 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए खतरनाक व्यवसायों में काम करने पर ये अधिनियम रोक लगाता है। लेकिन जब बात चल रही है फिल्म की, तो फिल्मों में बाल श्रम को बहुत भी दर्शाया गया है।

0: पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, वो गंगा जी नहलाते हैं।
1: हम पेट का मंत्र पढ़ते हैं, जूते का मुंह चमकाते हैं।
0: पंडित को पांच चवन्नी है,
1: अपनी तो एक ही कन्नी है।
0: फिर भेदभाव ये कैसा है,
1: जब सबको प्यारा पैसा है।
2: ऊंच नीच

ये था बूट पॉलिश फिल्म का गाना, मन्ना डे, मधुबाला झवेरी और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम बूट पॉलिश तो था ही, शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था और शंकर जयकिशन ने इसको संगीत में ढाला था। और जब बात मैटिनी शो में हम बात कर रहे हैं श्रमिक वर्ग की, तो एक फिल्म आई थी पैगाम, 1959 में ये फिल्म आई थी और SS वासन द्वारा निर्देशित। इस फिल्म में दिलीप कुमार और राज कपूर ने बहुत ही बखूबी काम किया था। राजकुमार इस फिल्म में थे और ये औद्योगिक मजदूरों और मिल मालिकों के बीच के वर्ग संघर्ष को दर्शाती हुई ये फिल्म थी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

पैगाम फिल्म का गीत अभी आपने मन्ना डे और साथियों का गाया हुआ सुना। प्रदीप के बोल थे और सी रामचंद्र की धुन थी। तो हम बात कर रहे हैं मजदूर वर्ग की, श्रमिक वर्ग की। एक और फिल्म आई थी कुली। जी हाँ, समाज के वंचित वर्ग और उन शोषित लोगों की कहानी का एक उत्कृष्ट उदाहरण इस फिल्म में प्रस्तुत किया गया था, जो मुश्किल से अपना पेट भरते हैं और मुश्किल हालातों में अपनी जिंदगी चलाते हैं और उन्हीं वर्ग के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं। तो आइए सुनते हैं फिल्म कुली का ये गीत। शब्बीर कुमार की आवाज है और आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

तो दोस्तों मैटिनी शो में आज हमने मजदूर और श्रमिक वर्ग को लेकर बातचीत की, फिल्मी गपशप की। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। तो मैटिनी शो का आज का ये अंक यहीं खत्म होता है।

0: आयोग के अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि रिटर्निंग ऑफिसर राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हो रहा है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद निर्वाचन आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। बिहार में जनगणना 2027 का पहला चरण आज शुरू हो गया है। स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हो गई। जनगणना 2027 का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। सूत्रों के अनुसार पंजाब के 2 अलग अलग जिलों में 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिलों के नाम अभी घोषित नहीं किए गए हैं। जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। यह इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है। We
1: diversified our sources. हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमरीका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमरीका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान पर चर्चा के लिए भारत और नेपाल के बीच आज काठमांडू में एक बैठक होगी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माही में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में,

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आज इस कार्यक्रम में हमने आपके लिए चुने हैं सलिल चौधरी के संगीत निर्देशन में सजे कुछ फिल्मी गीत।

सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन का लिखा गीत अभी आपने सुना। स्वर लता मंगेशकर और साथियों का था। फिल्म का नाम था जागते रहो।

कार्यक्रम में आप सुनिए फिल्म माया का गीत, स्वर लता मंगेशकर, द्विजेन मुखर्जी और साथियों के मजरू सुल्तानपुरी की रचना है सलील चौधरी की धुन।

कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज। फिल्म का नाम है अन्नदाता। गीतकार हैं योगेश और संगीत दिया है सलील चौधरी ने।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको फिल्म मधुमति का गीत सुनवा रहे हैं। गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत रचना सलिल चौधरी की।

लता मंगेशकर को अभी आपने फिल्म मधुमति में सुना। आइए सुनते हैं इसी आवाज में फिल्म हनीमून का गाना। गीत रचना शैलेंद्र की है और धुन बनाई है सलिल चौधरी ने।

योगेश का लिखा गीत सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे। मुकेश का साथ दे रही थी लता मंगेशकर। फिल्म का नाम था अन्नदाता।

0: लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था परख। इस गीत को शैलेंद्र ने लिखा और धुन बनाई वही यानी सलील चौधरी ने।
1: संगीत सरिता में शुरू हो रही है नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। विविध भारती पर आ रही है विदुषी कल्पना जोकरकर।
2: बंदिश मतलब एक ऐसी रचना जो शास्त्र में ताल में निबद्ध स्वर लय के साथ उस राग की विशेषताओं को लेकर बनाई जाती है।
1: तो सुनिए 3 मई से संगीत सरिता में नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ

0: बतौर बाल कलाकार उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था अपना पहला कदम।
1: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
0: जिंदगी की राहें उन्हें ले आईं फिल्म निर्देशन की दुनिया में। सन 1977 दूसरा आदमी।
2: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981 बसेरा।
3: जहां पे सवेरा हो बसेरा वही है।
0: 1984 दुनिया।
2: तू चांद नगर की शहजादी मैं जिस धरती का बंजा।
0: 1993 फिल्म साहिबा।
2: कैसे जियूंगा
0: मंच और सिनेमा के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार।
3: नजरों से कह दो प्यार।
0: उजाले उनकी यादों के 3 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

और आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा दुगाना, स्वर किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है जीवन ज्योति।

तो प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन, बहुत बहुत स्वागत है इस नए कार्यक्रम सुरीला सफर में आपका। और मैं हूँ आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। लेकिन हाँ, मुझे पता है इंतज़ार है आपको इस कार्यक्रम का, इस सुरीले सफ़र का। तो चलिए, आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त और निकलते हैं इस सुरीले सफ़र पर, ठीक है। जी हाँ, इतनी ही खुशी के साथ हमें निकलना है इस सुरीले सफर पर। लेकिन लेकिन लेकिन जरा ठहरिए दोस्तों, आज जो इबारत हमने आपके लिए लिखी है, उसे आपने पढ़ा कि नहीं, जाना कि नहीं कि आज के इस सुहाने सफर में क्या क्या है, क्या क्या आने वाला है, क्या क्या दिक्कत आने वाली है, क्या क्या अच्छा होने वाला है। हाँ, जो श्रोता हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हैं, उन्होंने तो पढ़ ली है हमारी इबारत, लेकिन अन्य श्रोताओं ने नहीं पढ़ी है। तो क्या है हमारी इबारत, क्या हम उन्हें बताएं पढ़ के? चलिए, तो हमारे वो दोस्त जो फेसबुक से नहीं जुड़े हैं, हम उन्हें बता देते हैं कि आज हमने उनके लिए क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, हमने लिखा है कि नमस्ते दोस्तों, जिंदगी के कठिन रास्तों पर दीवाने ही हैं तो बाजी मार लेते हैं। कोई खाली हाथ है तो किसी की जेब पैसे से भरी है। यहाँ कहीं फूल है तो कहीं कांटे हैं। कोई पैदल चला जा रहा है, कोई घोड़े पर दौड़ा जा रहा है। वैसे बाबूजी, ये दुनिया एक तमाशा है, खेल पैसों का। कैसी दुनिया है राम जाने। दुनिया को समझने का एक और तरीका है क्या? पान का एक बीड़ा लगाओ, आहा। और फिर उसी धुन में गाना है आपको, गाने जो आज हमने इस कार्यक्रम में आपके लिए चुने हैं। तो बताइए कौन से हो सकते हैं आज के शब्द? आपको क्या लगता है, जो शब्द हमने इस इबारत में लिखे हैं, इन शब्दों पर कौन कौन से गाने हम आपको सुनवाने वाले हैं? जरा दिमाग पर जोर लगाइए। बिल्कुल इस म्यूजिक की तरह ही हमें दौड़ लगानी है आज के सुरीले सफर पर। और देखिए ना, किसी ने कहा है जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बिल्कुल सही ही तो कहा है। लेकिन हाँ, डर के साए में जीना हमारी फितरत नहीं। हम तो सफर में भी पत्थर से रास्ता निकाल लेते हैं हुजूर, है ना। तो दोस्तों, कहीं कहीं मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर होता है, और आज बस इसी सफर को हमें जीना है। और ये सुहाना सफर, जहां मैं हूं, जहां आप हैं और हमारे तमाम दोस्त हैं, हम सब मिलकर चलते हैं इस सुरीले सफर पर। मजेदार रहेगा ये सफर, है ना। आप मेरे साथ हैं।

जी हाँ, तो हम आगे बढ़े इससे पहले हम इसी बात पर एक सवाल आपसे पूछते हैं कि पत्थर फिल्म से कितनी और सारी फिल्में बनी हैं, जैसे कि ये काला पत्थर है और बहुत सारी फिल्में पत्थर के साथ बनी हैं, आगे पीछे कुछ नाम जुड़े हैं, बताइए कौन कौन सी फिल्में हैं जिनमें पत्थर भी है जुड़ा हुआ। और हाँ, हम आपको बता दें कि कल जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, यानी इसकी जो पहली कड़ी कल शुरू हुई थी, तो हमारे वरिष्ठ उद्घोषक यूनुस खान साहब ने आपको बताया था कि इस कार्यक्रम को किस तरह से समझना है और किस तरह से इस कार्यक्रम में भाग लेना है। आपको समझ आ ही गया था कि हर रोज हम एक इबारत फेसबुक पर पोस्ट करेंगे और इस इबारत में शामिल शब्दों में से कुछ को चुनकर सुनवाएंगे सुरीले सफर के गाने। तो आपको इबारत पढ़कर अंदाजा लगाना है कि कौन से शब्दों पर आज गाने आ सकते हैं। तो आज आपने हमारी इबारत पढ़ी होगी कि जिंदगी के कठिन रास्तों पर दीवाने ही हैं जो बाजी मार लेते हैं, कोई खाली हाथ है तो किसी की जेब पैसों से भरी है, यहाँ कहीं फूल है तो कहीं कांटे हैं, कोई पैदल चला जा रहा है तो कोई घोड़े पर दौड़ा जा रहा है। वैसे बाबूजी, ये दुनिया एक तमाशा ही तो है, खेल पैसों का। कैसी दुनिया है राम जाने, दुनिया को समझने का एक तरीका और है क्या कि सुकून से ये खा लेना, यानी पान खा लेना, ताकि थोड़े मुश्किलें हमें लगे हल हो चुकी हैं और हम अपनी धुन में कुछ गाते चले जाएं। तो बताइएगा कौन कौन सी फिल्में आज हमने आपके लिए चुनी है। कुछ लोगों ने अंदाज लगाया है, कुछ लोगों ने हमें लिखा भी है कि भाई आज जिंदगी कठिन राह दिखाने वाली है और इसमें दुनिया पान आदि शब्द मंदाकिनी जी ने लिए हैं, पान खाए सैया हमारो। अच्छा, आपने ये गीत चुना है और आपने चुना है एक और गीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीले सफर में हम सभी मंदाकिनी जी के साथ दूर तक जाएंगे, फिलहाल सभी को दोपहर की प्यार भरी नमस्ते हम कर रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर में आज की इबारत में आपने जो शब्द चुने हैं शायद वो है जिंदगी, रास्ते, दीवाने, बाजी, खाली हाथ, पैसे, फूल, कांटा, बाबूजी, दुनिया, राम, पान। इन शब्दों का सुंदर चुनाव है। जब हम इन शब्दों के माध्यम से अपना सुरीला सफर तय करेंगे तो जिंदगी के हर रास्ते पर एक नया गीत सुनाई देता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भाई आज ये जो जीवन है परिस्थितियों का दास है, कभी बाजी इस किनारे तो कभी उस पार, मगर जीवन की बाजी चाहे कितने ही पहलू क्यों न हो उसके, दोस्तों का साथ हो तो कांटे भी फूल बन जाते हैं और पथरीला रास्ता सुगम हो जाता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन बताइए तो सही कि आज इन शब्दों पर हमने कौन कौन से गीत चुने हैं। अब देखिए, हम तो आपको बताएंगे क्योंकि हमने जो गीत आपके लिए चुने हैं उसमें एक गीत बहुत खास है, क्योंकि जिंदगी का ये सफर है सुहाना और यही है जीवन का सटीक अंदाज। हर लम्हा हर क्षण बहुत कीमती है और एक बार गुजर जाने के बाद वो वापस नहीं आता है। तो जीना हर पल में है, मुस्कुराकर जिए तो क्या हर्ज है, नए दोस्त बनाइए, नफरत मिटाइए, खुद को संवारते चलिए। जीवन बहुत सरल और सादा है और हमने इसे जटिल बना दिया है। तो कैसा होना चाहिए इंसान को, वो इंसान ही क्या जो दिल से अमीर न हो, और वो अमीर ही क्या जिसका दिल फकीर न हो। तो हमारे अंदर एक फकीराना अंदाज होना चाहिए और एक दीवानगी होनी चाहिए। हम तो भाई ऐसे ही हैं दीवाने। फटाफट बताइए हमने और कौन से गाने आपके लिए चुने हैं।

हमने आपसे पहला सवाल किया था कि पत्थर फिल्म पर कितनी और सारी फिल्में बनी है हमें बताइए, और अब हमारा दूसरा सवाल जो आपने अभी गीत सुना, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए मोहब्बत भरी एक नज़र चाहिए, उसमें जो हारमोनियम बजा रहे हैं वो कलाकार कौन है और उनके साथ जो नर्तकी है यानी जो बंजारा नृत्य कर रही हैं वो कौन सी कलाकार हैं? जी हाँ, ढूंढिएगा कि हारमोनियम जो बजा रहे हैं इस गाने में वो कौन सी कलाकार है और जो नर्तकी हैं साथ में नाच रही हैं वो कौन सी कलाकार है, उनके बारे में बताइए हमें। जी हाँ, बताना तो पड़ेगा क्योंकि इस कार्यक्रम में तो हम यही चाहते हैं कि जो आज हम आपके लिए इबारत लेकर आए हैं उसमें आप क्या समझे हैं कि हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। अब देखिए, हमारे कुछ श्रोता कह रहे हैं कि भई ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है लेकिन हमें लग रहा है कि बहुत सारी बातें समझनी और लिखनी होती हैं तो इसके लिए मुश्किल है क्योंकि ज़्यादा दिमाग नहीं चला पा रहे हैं। आपने जो पहेलियां हमारे लिए रख छोड़ी हैं इस कार्यक्रम के ज़रिए वो बड़ी मुश्किल हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कार्यक्रम बहुत अच्छा है, दीवाने हैं तो बाजी मार लेते हैं, ठोकरों में भी सुर ढूंढ लेते हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम अच्छा है लेकिन आपने इसे दोस्तों जिंदगी दीवाने बाजी हाथ पैसे फूल कहीं कोई चला बाबूजी दुनिया एक और पान जैसे शब्दों पर लाकर ठहरा दिया है जो हमारे लिए समझना बड़ा मुश्किल हो गया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीले सफ़र को शुरू करने के लिए कुछ रुकावटें आ रही हैं और हमारा मोबाइल हमें परेशान कर रहा है। अच्छा, एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपने जिस तरह से इसको पिरोया है भाई उसे समझना आसान तो नहीं है, आज सुरीला

0: सफर आसान नहीं, लेकिन कुछ जज्बाती जरूर है जिसमें जिंदगी, रास्ते, बाजी, दीवाना, पैसा, चलना, फूल, कांटे, बाबूजी, दुनिया, अपनी धुन जैसे कुछ शब्दों को लेकर आपने गाने चुने हैं, पर कौन कौन से चुने हैं ये हम नहीं बता पा रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि नमस्कार, इस दुनिया में जिंदगी के रास्ते, फूल और कांटों पर से चलते चलते दीवाने लोग गुजरते हैं, बाबूजी आगे चलकर बाजी कौन जीतेगा ये तो राम जाने। उन्होंने कुछ गाने लिखे हैं कि आपने नमस्ते दिल तेरा आशिक का या एहसान या रास्ते पर रास्ते जाने वाली दीवाने हैं दीवानों का न घर जीत ही लेंगे बाजी हम तुम जैसे बहुत सारे गीतों को लिख कर भेजा है, लेकिन हम आपको बता दें सिर्फ एक गीत दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए ये हमारी लिस्ट में जरूर शामिल था जो आपने अभी सुना, लेकिन बाकी गाने हमारी लिस्ट में शामिल नहीं है। तो सफर जब हम निकल ही पड़े हैं दोस्तों, तो देखिए सफर में हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहीं घोड़ा, कहीं गाड़ी, कहीं कार, कहीं पैदल चलने वाले लोग, कहीं ट्रेन, कहीं बहुत कुछ साधन अपनाने वाले लोग जो अपने अपने साधनों से चले जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, ना किसी की चिंता, ना किसी की फिक्र, बस अपनी ही मंजिल, अपनी ही दौड़। तो कई बार ऐसा होता है कि हम भी इस दौड़ में शामिल हो जाते हैं और हमें एहसास ही नहीं रहता कि किसी के जीवन पर, किसी के दिल पर क्या गुजर रही है।
1: उरिया। उरिया। उरिया। उरिया। उरिया। उरिया। उरिया। उरिया।

अच्छा बताइएगा, आप कभी किसी रिक्शा पर बैठे हैं, आपने रिक्शा की सवारी ली है और आपको लगा है कि जो रिक्शा चला रहा है उसकी हालत क्या होती है जब हम अतिरिक्त भार उसकी रिक्शा पर लाद देते हैं, कभी सोचा आपने?

0: हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अरे भाई, विविध भारती का ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर है, थोड़ा लेट हो गया हूँ इसलिए सुहाने सफर की गाड़ी अगले स्टेशन से पकड़नी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं पकड़ लीजिए, अभी भी मौका है गाड़ी पकड़ने का।
1: अरे सामने क्या देख रहे हैं, उन्हें पीछे से पॉकेट मार रहे हैं।

जी हमारे श्रोता कह रहे हैं कि आज इस कार्यक्रम का स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन इस नए कार्यक्रम में, बहुत अच्छा लग रहा है। ये कार्यक्रम नया है लेकिन बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत इबारत है, लगता है आज के गीत जिंदगी और दुनिया की इर्द गिर्द होंगे, जैसे जिंदगी कैसी है पहली या जिंदगी एक सफर है सुहाना, बेसब्री से इंतजार रहेगा। भाई आज हम आपसे एक बार फिर कहेंगे कि हमारे श्रोता लगभग हार गए हैं हमसे, क्योंकि आपने जो प्लेलिस्ट बनाई है हमारी इबारत पढ़कर, वो गाने हमसे तो मेल नहीं खा रहे हैं, थोड़ा दिमाग पर और जोर लगाइए। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती परिवार को हमारा नमस्कार, इस चिलचिलाती धूप में भी ठंडक का सफर जारी है जो विविध भारती से हमें मिल रहा है, तो ये सुनहरा चमकता दमकता सफर ठंडी फुहार की तरह चलता रहे, धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि पिछला प्रोग्राम गीतमाला में आपने हम सभी श्रोताओं के खूब कॉमेंट्स दौरान प्रोग्राम में शामिल किए, वैसे ये नया प्रोग्राम है सुरीला सफर, पूरी तरह समझ तो आ गया है लेकिन देखते कि हम श्रोताओं के कितने गीत आपके चुने गीतों से मेल खाते हैं। सुरीला सफर नाम के अनुसार बहुत ही सुरीला होने वाला है, निश्चित है ये कार्यक्रम सुरीला है, लेकिन ये और सुरीला तब होगा जब आप हमारे गाने, आपके गाने हमारे गानों से मेल खाएंगे। जी हाँ, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहेलियों से पूर्ण संगीतमय सफर सुरीला सफर जरूर चलेगा, और आप पेचीदा प्रश्न पूछ रहे हैं पर गाने मजेदार हैं, प्रोग्राम प्रस्तुति का अंदाज हाँ थोड़ा सा अलग लग रहा है इस कार्यक्रम में। तो भाई कार्यक्रम अलग है तो प्रस्तुतकर्ता का अंदाज भी अलग होगा ना। तो आपने हमें बताया नहीं, हमने दो सवाल आपसे किए थे उनके बारे में बताइए, कि पहला कि पत्थर फिल्म से और कितनी फिल्में बनी हैं जिसमें, जैसे काला पत्थर है या उस तरह की बहुत सारी फिल्में जिसमें पत्थर शब्द भी जुड़ा है, ऐसी फिल्मों के नाम बताइए। और साथ ही हमने कहा था कि दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, इस फिल्म में हारमोनियम कौन बजा रहे हैं और साथ में जो नर्तकी हैं वो कौन हैं। अच्छा, साथ में एक तीसरा सवाल ये भी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि रिक्शे पे आपने सवारी कब की थी और क्या कभी रिक्शा वाले से आपने मोल भाव किया? देखिए जनाब, ये जिंदगी है और जिंदगी में ये सफर जारी रहेगा जब तक हमारी जिंदगी है, यानी अंतिम सांस तक हम इस सफर में चलते रहेंगे और बहुत सारी चीजें, बहुत

बातें सफर में हमें देखने सुनने को मिलती है। याद करिए वो पुराना जमाना, वो देसी मनोरंजन यंत्र जिसे बेतार का टीवी या चलचित्रदर्शी भी हम कहते थे, याद आया आपको? ये एक लकड़ी का बक्से जैसा होता था जिसमें लेंस लगे होते थे और उसके माध्यम से हम पुरानी रीलों को, तस्वीरों को घुमा घुमा कर ऐतिहासिक स्तर और फिल्मों के दृश्य देखते थे। याद कीजिए बक्से नुमा वो यंत्र, जब वो आदमी आवाज़ लगा लगा कर हम बच्चों को लुभाता था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसमें लेंस और अंदर रील चलाने की व्यवस्था होती थी और हम एक आँख गड़ा कर उसको देखा करते थे और इसमें हमें कुतुब मीनार, गोल घर जैसे न जाने कितने चित्र दिखाए जाते थे। याद आया? नहीं तो ये गीत सुनते हैं, फिर बताइएगा आपके बचपन में ये दिन कब आया था।

याद आया हम किस यंत्र की बात कर रहे हैं? आज के मल्टीप्लेक्स के दौर में ये तो एक लुप्त हो गई है कला जो अक्सर बचपन की यादों के रूप में याद की जाती थी। याद करिए।

0: जी हाँ, आपको याद आया उस यंत्र का नाम? बायोस्कोप, हाथ से घुमाकर चलने वाला, चलता फिरता वो सिनेमा घर जहाँ हमें बुलाकर एक आंख से वो चित्र दिखाए जाते थे, है ना?
1: अच्छा जी, ओ टायर पंचर हो गया।
2: पैसे निकाल।
1: पहले मेरे काले से हाथ हटा, नहीं तो मैं गांव वालों को बोल दूंगा कि बुतिया खेत में चुड़ैल बन के तू ही डराती। तो मैं अब जाऊं?
2: जा।
1: थैंक यू।
2: ए, उधार रख के जा तो रहा है, लेकिन अपना नाम तो बताता जा।
1: सुना नहीं बच्चे ने क्या कहा? दुश्मन चाचा। चाचा सिर्फ बच्चे का, तेरा नहीं।

0: आ गया? क्या हुआ?
1: हुआ मेरा सर। अरे ऐसे कमीनों के घर में कौन लड़की देगा? देखना साली, कमला के लिए मैं ऐसा लड़का लेके आऊंगा कि तू भी देखती रह जाएगी।
0: ए, रहा ना आखिर ड्राइवर का ड्राइवर ही, तू क्या लड़की के दिल को भी गाड़ी का पहिया समझता है? जब एक
2: तो हमारे कई श्रोताओं ने सही जवाब दिया है कि ये बायोस्कोप है जो बचपन में हम देखा करते थे, और इस बायोस्कोप को देखने के बाद हमें लगता था जैसे हमने बहुत बड़ी फिल्म देख ली है ना? तो हम आपको बता दें, दुश्मन फिल्म का गीत था ये, लता मंगेशकर की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन पर आपने गीत सुना।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि काला पत्थर का ये गीत आपने बजा ही दिया, मैं तो अभी इसी गीत के बारे में सोच रहा था। राजेश रोशन का संगीतबद्ध ये गीत मोटरसाइकिल पर बैठकर शशि कपूर जब गाते हैं तो एक अलग ही आनंद आ जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं, आप ही लिखते हैं कि दिल्ली में पिछले 20 वर्षों में मैं कभी भी हाथ रिक्शा पर नहीं बैठा, मुझे इन पर बहुत दया आती है। भले ही मैं पैदल चला जाऊं, ये रिक्शा वाला गाना महमूद पर फिल्माया गया था जो मुझे बेहद पसंद है और इसमें भी राजेश रोशन साहब का ही संगीत है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम रिक्शे पर बैठ तो जाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि जो रिक्शा खींच रहा है व्यक्ति उसकी हालत कैसी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि गीतों का सुरीला होगा, दोस्त होंगे मंदाकिनी जी, न हो ये हो ही नहीं सकता। हमें पता था कि आप इस कार्यक्रम में आएंगी और आप आ गई हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दीवाने ही तो हैं जो बाजी मार लेते हैं, जो ठोकरों में भी सुर ढूंढ लेते हैं, तो खाली जेब भी में भी ख्वाब भर लेते हैं। कहीं फूलों की खुशबू बसी है तो कहीं कांटों की चुभन है, कोई पैदल धूप में तपता है, कोई घोड़े पर हवाओं के साथ है, पर बाबू जी दुनिया सचमुच एक तमाशा है, हंसी और आंसू का एक झमेला है, यहाँ हर धड़कन का मूल लगा है, ये खेल भी क्या बस पैसों का मेला है। फिर भी एक और तरीका है इसे समझने का, थोड़ा ठहरने का, थोड़ा मुस्काने का, एक पान का बीड़ा लगाकर अपनी ही धुन में गुनगुनाने का, गम को भी गीत बना लें, थकान को तान बना लें, सफर को यूं ही नहीं सुरों से सजा लें, मुस्कान से सजा लें, क्योंकि जब दिल से आवाज निकलती है तो राहें आसान हो जाती है और ये दुनिया तमाशा नहीं एक सुरीला सफर बन जाता है। जी, सुरीले सफर पर जब हम निकल ही गए हैं तो और भी बहुत कुछ हमें देखने सुनने को मिलता है। क्या आइए सुनते हैं इस गीत में।

0: क्या आपको लगा था कि बाबू शब्द पर ये गीत आने वाला है?
1: सुनते जाना,
2: महंगा सौदा है इसका लुटना जाना,
1: ये सब है जाल इसका, मालूम है हाल इसका,
2: चोरी का है माल इसका, धोखा न खाना।
3: मौजी बोलो मौजी, मौजी बोलो मौजी, मौजी बोलो
2: बाबू आना, सुनते जाना,
1: महंगा सौदा है इसका लुटना जाना,
2: ये सब है जाल इसका, मालूम है हाल इसका,
1: चोरी का है माल इसका,

0: ये हंटर भागे दुश्मन की नानी, ले लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी।
1: अरे
0: तू जा जा, ए जा जा जामू धो के आ, तू जा जा, अरे जा जा जामू धो के आ।

0: लड़की पहाड़ी है काटे की लाला।
1: घास का बाबू आना सुनते

0: रे मत लड़ना मुझसे वरना मैं दूंगी गालियाँ।
1: सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ, सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ।
0: रुक जा निकाल की मैं तेरा दीवाना,
1: जा रे तू पीत जाके गरम मसाला।
0: अरे जा क्या?
1: तू जा जा घर जाके आलू।

0: ಬೌದಿ ಬಲ ಬೌದಿ ಬೌದಿ ಬೌದಿ
1: झुमरू फिल्म का गाना था, बहुत ही मजाकिया गीत किशोर कुमार, आशा भोंसले और साथियों की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे और किशोर कुमार का ही संगीत था। जी हमारे श्रोता जो अपने गानों की लिस्ट हमारे साथ शेयर कर रहे हैं उनमें कुछ कुछ गाने हमारी लिस्ट से मिल रहे हैं, हमारी प्लेलिस्ट से मिल रहे हैं, लेकिन सभी गानों पर हमारे श्रोता अपनी पकड़ नहीं बैठा पाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो पोस्ट भेजी है उसके हर शब्द पर गाना निकालते हैं, विविध भारती के सुरीला सफर में आज इन्हीं शब्दों पर गाने बजेंगे। जिंदगी पर आपने गाना निकाला है, कठिन रास्तों पर, बाजी पर, कांटे पर, फूल पर, बाबूजी पर, दुनिया पर, तमाशा पर, लेकिन गीत आपने बहुत अच्छे निकाले हैं, लेकिन हमारी लिस्ट से आपका कोई भी गीत नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो की है। हाँ, एक गाना जरूर मिल रहा है, वो हम आपको सुनाने वाले हैं थोड़ी देर में। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दीदी जी, सुरीला सफर की प्लेलिस्ट तैयार है, किस शब्द से शुरू करें, जिंदगी से या दुनिया से। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ, दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, मैं गाना जो है गुलशन बावरा जी हारमोनियम के साथ हैं, गीतकार बिल्कुल सही कहा, और नृत्य करने वाली नायिका का नाम है संजना। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है कि जो हारमोनियम बजा रहे हैं वो हैं गीतकार और अभिनेता गुलशन बावरा, और उनके साथ जो नृत्य कर रही हैं नायिका वो है संजना। एक श्रोता ने लिखा है कि कार्यक्रम नया है फिर भी मेरे अंदाज से कुछ गीत जरूर सुनने को मिल सकते हैं, जैसे मिले ना मिले, फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, बाबूजी धीरे चलना, इस तरह के कुछ गाने, और आखिर में तो तय है कि खाई के पान बनारस वाला गीत तो हमें सुनने को मिलेगा ही। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुहाना सफर एक नया कार्यक्रम है, बहुत पसंद आ रहा है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है बहुत अच्छा कार्यक्रम है लेकिन कुछ समझ में कम आया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं अच्छा, आप हमारी तारीफ लिखते हैं, और एक श्रोता लिखते हैं कि आपका ये कार्यक्रम बहुत ही रोमांचक लग रहा है। एक श्रोता ने जिंदगी पर कुछ गीत लिखे हैं लेकिन वही बात कि सिर्फ एक गाना हमारी लिस्ट से आपका मिल रहा है। जो अभी मजाकिया गीत आप सुन रहे थे, बाबू आना सुनते जाना, महंगा सौदा है इसका लुट न जाना, बताइए कभी आप लुटे इस महंगाई से? कहीं जाकर आपने कोई खरीदारी की हो और आपको पता चले कि भाई दुकानदार ने आपको लूट लिया और ज्यादा दाम लगा दिए, कभी पता चला आपको? अगर हाँ ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो आपने क्या किया इसके बारे में हमें लिखकर बताइए। और हाँ, जिंदगी के इस सफर में देखिए फूल हैं तो कांटे भी हैं, कई बार ये होता है कि कांटा लग जाता है तो गाना निकलता है क्या, कांटा लगा हाय लगा।

0: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इंकार कहा अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया भारत और नेपाल के बीच बाढ़ व पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी मौसम विभाग का अगले दो दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा अब समाचार विस्तार से सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इंकार कर दिया न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है हमारी संवाददाता ने बताया कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में कराया गया था कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा
0: इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान की खबर है मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है दोपहर 1 बजे तक मगरहाट पश्चिम में लगभग 56% और डायमंड हार्बर में लगभग 55% मतदान दर्ज किया गया मतगणना 4 मई को होगी तमिलनाडु के सभी 234 विधानसभा सीटों पर सोमवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं ब्यौरा हमारे संवाददाता से
2: तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों में डाले गए वोटों की गिनती के लिए कुल 62 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं इस बार डीएमके एआईएडीएमके और राज्य के राजनीतिक मैदान में नए खिलाड़ी के तौर पर उभरी टीवी के पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है कई सीटों पर पिछले चुनावों में कम अंतर से जीत हार होने और इस बार बहुकोणीय मुकाबले की आशंका को देखते हुए राजनीतिक दल मतगणना के दिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कड़ी निगरानी रख रहे हैं और इसके लिए विशेष वॉर रूम तैयार किए गए हैं तमिलनाडु की प्रधान सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक भी आगामी मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला चुनाव अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं और तैयारियों का जायजा ले रही हैं। सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार चेन्नई
0: उधर केरलम में सोमवार को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं मुख्य चुनाव अधिकारी रतन यू केलकर ने बताया कि मतगणना 8 बजे से 43 स्थानों पर 140 मतगणना केंद्रों पर होगी इस प्रक्रिया के लिए रिटर्निंग ऑफिसर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर सूक्ष्म पर्यवेक्षक मतगणना पर्यवेक्षक और सहायकों सहित कुल 15,465 अधिकारी तैनात रहेंगे स्ट्रांग रूम में उम्मीदवारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों चुनाव पर्यवेक्षक और अधिकारियों की उपस्थिति में मतपत्र खोले जाएंगे और पूरी प्रक्रिया की वीडियो कॉन्फ्रेंस वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है भाजपा सांसद डॉ संजय जायसवाल को लोकसभा की 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल हैं। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति

0: की अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फगन सिंह कुलस्ते करेंगे। समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों की मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक सुरक्षित राष्ट्र। ये संदेश परीक्षण के लिए है, इसलिए जनता को इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। इसे दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे। संचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक उन्नत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
2: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। इस चरण में आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता, जाति और अन्य सामाजिक आर्थिक संकेतकों सहित विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। जनगणना का उद्देश्य नीति नियोजन और विकास पहलों को समर्थन देने के लिए व्यापक डेटा तैयार करना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
3: We diversified our sources.
4: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने आज पटना में बिहार और झारखंड के विभिन्न मीडिया संस्थानों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पत्र सूचना कार्यालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान श्री कुमार ने सभी मीडिया संस्थानों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी मीडिया संस्थानों को डिजिटल मीडिया प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान मॉडल पर भारत और नेपाल के बीच काठमांडू में बैठक हो रही है। भारत की ओर से बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये बैठक 30 अप्रैल और 1 मई को काठमांडू में आयोजित कोसी और गंडक परियोजनाओं पर भारत नेपाल संयुक्त समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद हो रही है।

0: हिमालय के तराई वाले क्षेत्र केरल माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में भारी वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है विभाग ने बिहार छत्तीसगढ़ तटीय आंध्र प्रदेश पूर्वी राजस्थान जम्मू कश्मीर लद्दाख झारखंड मध्य प्रदेश ओडिशा पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की भी संभावना व्यक्त की है आंध्र प्रदेश तटीय कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है अमेरिका ने वैश्विक शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि यदि वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए ईरान को भुगतान करती है तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है इससे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है खबरों के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में अमेरिका और इजराइल के बीच हुए संघर्ष के बाद ईरान ने हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही रोक दी थी इसके बाद ईरान ने अपनी तटरेखा के पास वैकल्पिक मार्गों से कुछ जहाजों को गुजरने की अनुमति दी और कभी-कभी इसके लिए शुल्क भी वसूल किया था अमेरिका ने 13 अप्रैल को हॉर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी लागू की इससे ईरान के तेल टैंकरों को रोक दिया गया अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 45 वाणिज्यिक जहाजों को वापस लौटाने के लिए कहा गया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमेरिका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया है यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा ईरान द्वारा संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका को भेजे गए ताजा प्रस्ताव के बाद कल वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं सप्ताह भर में ब्रेंट क्रूड ऑयल में 2.7% की वृद्धि हुई और WTI में 8% की तेजी आई IPL क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था ये IPL इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा रन चेज है उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से पराजित किया था फुटबॉल में भारतीय टीम AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना अभियान शुरू कर रही है भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है मुख्य कोच पामेला कोंची ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इनकार कहा अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया भारत और नेपाल के बीच बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान IPL क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ नमस्कार
1: आपण माने कार्यक्रम सुनचंती आकाशवाणी कटक केंद्ररु कार्यक्रम आम केंद्ररु प्रचारित होउची 308.6 मीटर तथा 972 किलोहर्ट्ज जोगे हमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद सुनि परिबे एही विज्ञापन परे

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के ठीक 3 बजे हैं, प्रस्तुत है हमारा पसंदीदा और आपका पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी,
0: मन चाहेगी।
1: मन चाहे गीत, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आपका अपना चहेता कार्यक्रम आज से फिर शुरू हो गया है। आज ये इसका पहला अंक है। हम आपको पहला गीत सुनाएं, उससे पहले ये संदेश।
0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

तो प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में आज हमने पहला गीत चुना है आप सबकी पसंद पर। आप हैं हमारे सबसे पहले श्रोता आज के चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा और उनके परिवार वाले, नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से मधुलता पुरोहित, डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, डॉक्टर प्रांजल, हर्षिता, राजन, कमाली, परम। और ये खत हमें मिला है जिला लुधियाना पंजाब से संतोष जोशी, नरेश, मुक्ता जोशी, जोयल जोशी, वज्रा जोशी का। और नासिक महाराष्ट्र से आप हैं सुमन पारिक, साहिल पारिक, भावना पारिक। और ये खत लिखने वाले हैं नुहिया वाली हरियाणा से लीलाधर जोशी, कमला जोशी, गायत्री, मिथिलेश पुरोहित, दिनेश जोशी, पूजा और पवन पारिक। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म दो चोर में, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन।

फिल्म दो चोर का ये गाना आप सभी सुनना चाहते थे। सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर, सुनवी और जयपाल यादव। और इसी गाने को सुनना चाहते थे। आपने ये खत लिखा है, नोखा से प्रेम बलबीर, हरि सिंह, दुर्गा देवी, अनिल, अनुप्रिया, सीता और कैलाश। आप सबने भी अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था लव इन टोक्यो। शब्दकार हसरत जयपुरी थे और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। इस गीत को सुनना चाहा था, सुनने वाले हैं आप जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजिमा बेगम सिद्दीकी, रियांज और रिफाकत। इसी गीत को सुनना चाहते थे रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी और ये हैं देशमुख पेट अकोला से महेंद्र जैन, नागेश जैन, पारस जैन, जयेश, ऋषभ और संयम जैन। हमें उम्मीद है आप सभी ने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा।

ग्यावासी किशोर कुमार की फिल्म याराना के लिए गीतकार थे अनजान और संगीतकार थे राजेश रोशन। इस गीत को सुनने के लिए आपने हमें खत लिखा गांव जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, निर्मला देवी, शंभू दयाल खटक और उनके परिवार वालों ने। और आप हैं अन्य श्रोता लिखते हैं कि ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लग रहा है, साथ में आपने अपना नाम लिखा है। कृष्ण कुमार डागी, भूपत कुमार डागी, राधा देवी डागी, विक्रम, अर्चना और पूरा डागी परिवार। आपने लिखा है जिला बालोतरा से ये खत। हमें उम्मीद है आपने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा।

फिल्म शोर का गीत अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, महेंद्र कपूर और अन्य साथियों का गाया हुआ। गीतकार थे राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे। गांव फ्रांसी, जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और इनके परिवार वालों ने इस गीत को सुनना चाहा था। और इसी गीत को सुनने के लिए हमारे एक श्रोता हैं घंटाघर चौक खंडवा से, संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म का नाम है आप तो ऐसे न थे, आवाज मोहम्मद रफी की। सुनने के लिए ख्वाहिशमंद हैं कवन कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी, मीनूराज और उनके परिवार वाले।

मोहम्मद रफी को आपने सुना, फिल्म का नाम था आप तू ऐसे न थी। गीतकार निदा फाजली थी और संगीतकार थी उषा खन्ना। मनचाहे गीत की कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, फिल्म का नाम है ममता। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजें हैं, मजरू सुल्तानपुरी की रचना और रोशन की धुन। इस गीत को सुनना चाहते हैं जिला अंबाला से शहनवाज आलम, सरफरोज बेगम, शाह उमर आलम और उनके परिवार के अन्य लोग। और इसी गीत को सुनना चाहती हैं बोरीवली गोराई महाराष्ट्र से एकता और उनके परिवार वाले।

0: इस दो गाने के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम पेश किया आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने।
1: मनचाहे गीत।
2: मनचाहे गीत।
1: मनचाहे गीत।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक इंस्पेक्टर जनरल। ये नाटक गोगोल के मूल नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी रेडियो रूपांतरण है। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक सत्येंद्र शरत, प्रस्तुति विविध भारती की। तो सुनते हैं नाटक इंस्पेक्टर जनरल, इस नाटक का पहला भाग।
1: मिश्का, मिश्का।
2: जी हजूर।
1: सब लोग आ गए या नहीं?
2: जी जज साहब और स्कूल सुपरिंटेंडेंट साहब तो तशरीफ ले आए हैं। लेकिन आरती फिलपौतिक जामलिनी का साहब,
1: इतने लंबे चौड़े नाम की जगह हेल्थ ऑफिसर कहते हुए तुझे शर्म आती है?
2: जी हाँ, बस वही नहीं आए।
1: आएंगे कैसे? वो तो अस्पताल के कोने में बैठे तंबाकू का धुआं उड़ा रहे होंगे। उन्हें इस बात की क्या फिक्र के यहाँ बैठे बैठाए मुझे मौत का परवाना मिल गया है। शहर का मेयर होना भी क्या मुसीबत है। अबे तू खड़ा खड़ा मुझे अपनी मनहूस शक्ल क्यों दिखा?

0: भाग यहां से, चल चल जय जय। और सुन, जैसे ही वो हेल्थ ऑफिसर अंदर कदम रखे ना, मुझे इतला मिलनी चाहिए, समझा
1: जी? अच्छा
0: अच्छा अच्छा, तू रहने दे रहने दे रहने दे, मैं खुद ही जाकर देखता हूँ। हाँ
1: जी बाप, अच्छा
2: मौसम कितना प्यारा हो रहा है।
0: अरे आप आ गए मिस्टर जेमलियानी का।
2: नमस्कार नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार, बैठिए बैठिए बैठिए बैठिए।
2: माफी चाहता हूँ मेयर साहब, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई है, दरअसल मैं
0: ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मेरा ख्याल है अब मुझे असली बात शुरू कर देनी चाहिए जिसके लिए आप लोगों को यहाँ आने की तकलीफ दी गई है।
2: जी जी
0: साहिबान, आज सुबह सुबह एक बुरी खबर मिली है
2: जी।
0: मुझे मालूम हुआ कि पीटर्सबर्ग से एक इंस्पेक्टर जनरल हमारे शहर का मुआयना करने आ रहे हैं।
2: इंस्पेक्टर जनरल पीटर्सबर्ग से?
0: जी हाँ, सरकार ने इंस्पेक्टर जनरल साहब को सीक्रेट ऑर्डर्स दे रखे हैं, वो इस शहर में भेस बदल कर रहेंगे।
2: भेस बदल कर?
0: यकीन मानिए साहिबान, मुझे तो जैसे पहले से ही इंस्पेक्टर जनरल के आने का अंदेशा हो गया था। ठहरिए ठहरिए ठहरिए ठहरिए ठहरिए, मैं आप लोगों को अपने दोस्त की चिट्ठी सुनाता हूँ जिसके जरिए मुझे ये खतरनाक खबर मिली है। लिखा है, प्रिय एंटन एंटनोविच, ईश्वर तुम्हारी सेहत बराबर बनाए रखे, वगैरह वगैरह। हाँ हाँ, सुनिए सुनिए दोस्त, एक जरूरी खबर यह है कि एक इंस्पेक्टर जनरल भेस बदलकर पूरे प्रांत का दौरा लगा रहे हैं जिसमें वो हमारे शहर का खास तौर से मुआयना करेंगे।
2: मुआयना खास तौर से?
0: जी हाँ, मुझे ये सूचना एक बहुत ही खास आदमी से मिली है, लेकिन जो अपने को बहुत ही मामूली आदमी कहने का ढोंग करता है। वैसे तो मैं जानता हूँ दोस्त, हम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन तुम जरा ज्यादा ही अपनी मुट्ठी गर्म करने की फिराक मेरे मेरा दोस्त भी देखो ना। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप लोग कोई गैर थोड़े ही हैं। हाँ हाँ, तो साहिबान आगे लिखता है, ध्यान रखना एंटन एंटोनोविच, इंस्पेक्टर किसी भी दिन पहुंच सकता है, और क्या मालूम पहुंच ही गया हो और खुफिया तौर पर वहां रह रहा हो। परसों मैं अपनी चचेरी बहन अन्ना किरी लोबना के यहां गया था, मेरा जीजा तो एकदम भैंस जैसा भारी हो गया है, और हर बाकी सब हमारी घरेलू बातें लिखी हुई
3: है। लेकिन मियां साहब, ये तो एकदम नामुमकिन लगता है, भला यूं चोरी से हमारे शहर में आना?
2: क्यों साहब, हमारे शहर में इंस्पेक्टर भेजने का मतलब, हम तो राजधानी से पहले ही इतनी दूर पड़े हुए हैं, बेबात ही हमें छेड़ने में फायदा।
0: ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। स्कूल सुपरिंटेंडेंट साहब
2: जी,
0: आज तक दूसरे शहरों का मुआयना होता रहा
2: जी,
0: और हम चैन की बंसी बजाते रहे
2: जी। हाँ।
0: आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाती, आज हमारा भी नंबर आ गया।
3: मेयर साहब
0: जी,
3: अगर मैं गलती पर नहीं हूँ हाँ। तो इस मुआयने के पीछे जरूर कोई गहरी राजनीतिक वजह है
0: जी।
3: हमारी सरकार जल्द ही लड़ाई की घोषणा करने वाली है, सरकार ने चुपचाप इस आदमी को भेजा होगा कि देखना इधर उधर बगावत तो नहीं हो रही है।
0: वे वे, वे वे, वे वे, क्या बात कही जैसा। इस पर आप अपने आप को बहुत ही अकलमंद और विद्वान कहते हैं। इस छोटे से गांव जैसे शहर में बगावत, ये क्या देश की सरहद है जनाब? यहाँ से 3 दिन तक घोड़ा दौड़ाते हुए भी आप सरहद तक नहीं पहुँच पाएंगे, समझे कुछ?
3: जी जी, मैंने तो ऐसी ही बात कही थी हुजूर, लेकिन ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि हमारे अफसरान की किच की आंखें हैं।
0: इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो अपना काम देखना है अपना। इस शहर के मेयर के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, इसके लिए मैंने कुछ जरूरी कदम भी उठाए हैं, आप लोगों को भी मैं कुछ सलाह देना चाहता
2: हूँ। जरूर जरूर, जरा ध्यान दीजिए हेल्थ ऑफिसर साहब,
0: मैं आप सबसे ये बात कह रहा हूँ। पहले आप ही सुन लीजिए हेल्थ ऑफिसर साहब
2: जी,
0: इंस्पेक्टर जनरल आपका अस्पताल जरूर देखेंगे, जल्दी से कुछ चादरें ले आइए और मरीजों को सफेद धुली वर्दियां पहना दीजिए, ये ध्यान रहे कि उनके शरीर का बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही बाहर दिखाई दे, समझे आप
2: जी?
0: चाहे तो वो भी ढका हुआ हो। हाँ, सिर पर टोपी पहना दीजिए।
2: ये तो बहुत मामूली बात है मेयर साहब, मैं अभी सब इंतजाम कर रहा देता हूं।
0: और मरीजों से कहिए तंबाकू पीना बंद करें, अस्पताल के कमरे अच्छी खासी फैक्ट्री की चिमनी दिखाई देते हैं। सुनिए, मरीजों को पहचानने के लिए उनके बिस्तरों पर तख्तियां लटका देना जिनमें झूठ मूठ मरीज का नंबर, बेड नंबर और बीमारी का नाम लिखा होना चाहिए। हाँ, ये भी ध्यान रहे कि ये तख्तियां लैटिन ग्रीक या किसी और भाषा में लिखी जाए ताकि इंस्पेक्टर के पल्ले कुछ ना पड़े, समझे आप? और हाँ, कुछ मरीजों को जबरदस्ती छुट्टी भी दे दीजिए, अफसर इतनी भीड़ देखेगा तो समझेगा यहाँ के डॉक्टर को कुछ आता ही नहीं है।
2: जी जनाब, मैंने और डॉक्टर हिब्बर ने तो शुरू से ही अस्पताल को कामयाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा को ही उत्तम मानते हैं, बेकार कीमती दवाओं पर पैसा खर्च करने से क्या फायदा। देखिए, और हमारे मरीज, ईश्वर उन्हें स्वर्ग में जगा दे, बहुत ही भले नागरिक हैं, जिन बेचारों को अच्छा होना होता है अपने आप अच्छे हो जाते हैं, और जिन्हें मरना होता है चुपचाप मर जाते हैं।
0: अब आपसे मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ जज ल्यापकिन त्यापकिन
3: जी,
0: आप इस शहर के आदरणीय डिस्ट्रिक्ट जज हैं
3: जी हाँ,
0: लेकिन आपकी अदालत और जेल से

0: चिड़ियाघर अच्छा है। हाँ? जी, हर कमरे में चपरासियों की पाली हुई मुर्गियां और बत्तखें आजादी के साथ घूमती रहती हैं और आने जाने वाले वकीलों और मुवक्किलों के पैरों से चिपटकर जबरदस्ती प्यार करती रहती है। मैं मानता हूं मुर्गी पालन बहुत अच्छा पेशा है, लेकिन ईश्वर के लिए इस नेक काम से अदालत को तो बख्शिए।
1: ये कोई बड़ी बात नहीं है साहब, मैं सारी मुर्गियों बत्तखों को आज ही हलाल कर देता हूँ। आप भी आइएगा ना आज शाम के खाने पर।
0: जेल तो परले सिरे का कूड़ा घर ही नजर आता है, कहीं जंगली जानवरों की खाल सूख रही है तो कहीं आपकी बंदूक शोभायमान हो रही है। खुशी की बात है कि आपको शिकार का इतना शौक है, लेकिन जब तक इंस्पेक्टर मुआयना नहीं करता आप ये गोदाम किसी और जगह बना सकें तो बड़ी कृपा होगी। बाद में चाहे फिर उन चीजों को यहाँ ले आइएगा, समझे आप। और आपका जो वो बूढ़ा मुंशी है ना जी, माना कि उसे सारा कानून पहाड़े की तरह रटा हुआ है, लेकिन उसके पूरे शरीर से शराब की ऐसी भयंकर बू आती है कि बाप रे, मैं तो एक मिनट भी उसके पास खड़ा नहीं रह सकता।
1: मजे की बात यह है मेयर साहब कि ये मेरा मुंशी शराब छूता तक नहीं। बात यह हुआ ये कि बचपन में उसकी
0: अगर उसके बदन से कुदरती तौर पर ऐसी बू आती है तो मामला और भी टेढ़ा है। उससे कहिए प्याज लहसुन या ऐसी किसी तेज बू वाली चीज का सेवन करे जो शराब की बू को मार दे, या फिर फौरन डॉक्टर के पास भागे। और हाँ वो जज साहब, जरा आप भी अपने को अच्छी तरह टटोल
1: दीजिएगा। मैं तो ठीक ही चल रहा हूँ, देखिए ना रिश्वत भी लेता हूँ तो न लेने जैसी। शिकारी कुत्तों के पिल्ले, भला ये भी कोई रिश्वत है?
0: मिस्टर ल्यापकिन त्यापकिन, रिश्वत रिश्वत होती है, चाहे वो शिकारी कुत्तों के पिल्लों के रूप में हो या किसी और रूप में।
1: वाह साहब वाह, ये कैसे हो सकता है? रिश्वत तो वो होती है जनाब कि जब एक आदमी 500 रूबल का फरकोट या अपनी बीवी के लिए कीमती शाल लेता है।
0: इन बेकार के तर्कों से तुम अपने को नहीं बचा सकते मिस्टर ल्यापकिन त्यापकिन। हाँ स्कूल सुपरिटेंडेंट साहब
2: जी,
0: अपने स्कूल के बारे में दो एक बातें सुन लीजिए।
2: जी
0: मैं जानता हूँ आपके अध्यापक बहुत होशियार और विद्वान हैं, लेकिन उनकी चाल ढाल, उनका व्यवहार दुनिया से निराला।

0: होश आ जाता है उसका क्या किया जाए। अभी उस दिन की बात है, वो बच्चों को जब तक असीरियनों का इतिहास बताता रहा तब तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही वो सिकंदर महान पर आया, बस कुछ ना पूछो, अपनी कुर्सी से कूदा, एक कुर्सी उठाई और जोर से डेस्क पर दे मारी। मैं जानता हूं इस तरह से वो युद्ध का वर्णन कर रहा था, ठीक है सिकंदर महान एक शूरवीर योद्धा था, लेकिन इसके लिए स्कूल की कुर्सियां क्यों तोड़ी जाए।
1: जी आप ठीक कहते हैं मियां साहब, मैंने भी एक दिन स्कूल का टूटा हुआ फर्नीचर सामने रखकर उसे समझाया, लेकिन उसको तो बस एक ही रट है।
0: क्या
1: आप लोग कुछ भी कहते रहिए, मैंने तो शिक्षा के लिए अपने आप को मिटा देने की कसम खा रखी
0: और मिटा वो हमें रहा है। जीवन कितना रहस्यमय है, ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी भी खतरनाक होता है।
1: अजी शिक्षा विभाग से तो ईश्वर ही बचाए। अजी मेयर साहब, ये भी कोई चमत्कार ही है कि मैं इस लाइन में रहकर भी जिंदा हूँ, वरना ये अपनी अकल के आगे किसी की चलने दें।
0: मुआयना, वैसे मुआयना वैना कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन यूं भेष बदल कर।
1: जी भेष बदल कर,
2: बदल कर
0: मान लो वो अभी प्रकट हो जाए और कहे, अच्छा मित्रों तुम सब यहाँ जमा हो, हाँ तो तुम में से हेल्थ ऑफिसर कौन है
1: जी,
0: जरा आपके हालचाल पूछने हैं, और जज साहब आप भी जरा मेरे कमरे में तशरीफ लाइए। दोस्तों हमारे लिए तो ये डूब मरने की बात हो जाएगी।
1: कौन कौन कौन?
3: नमस्कार
0: मैम। क्या नमस्कार? तुम कोई नया समाचार लाए हो पोस्टमास्टर? मेरा मतलब है कोई खास चिट्ठी तो नहीं आई?
3: नहीं हुजूर, मैंने तो अभी अभी बॉब चिंस्की से ही ये भयानक खबर सुनी है।
0: तुम्हारा क्या ख्याल है पोस्टमास्टर?
3: ख्याल क्या है मेयर साहब, लड़ाई है और कुछ नहीं।
0: लड़ाई?
3: जी हाँ, हमारा देश भयंकर युद्ध करने वाला।
0: तुम्हारी बेवकूफी का भी जवाब नहीं है पोस्टमास्टर। अरे मियाँ, ये हमला हमारे शहर पर हो रहा है, ये चिट्ठी बता रही है कि इस लड़ाई के शिकार हम हैं, सिर्फ हम।
1: जी जी,
0: मुझे लगता है जरूर किसी ने मेरी शिकायत की है। वैसे मैं डरता वरता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे नेक कामों का भगवान साक्षी
1: जी
0: है।
1: जी हाँ, ठीक है।
0: लेकिन फिर भी थोड़ी सी घबराहट जरूर हो गई है, शहर के व्यापारियों ने जरूर मेरे खिलाफ चिट्ठी लिखकर राजधानी में जहर उगला होगा।
3: जी हाँ, किसी की शिकायत पर ही इंस्पेक्टर यूं चोरी चोरी आ सकता है।
0: देखो पोस्टमास्टर, ये हमारे तुम्हारे दोनों के हित में है कि इस शहर से बाहर जाने वाली हर एक चिट्ठी को तुम खोल कर देख लिया करो। अगर उसमें हमारी शिकायत जैसी कोई बात नहीं लिखी है तो उसे फिर से चिपका कर या खुली ही आगे भेज दिया करो। और अगर वो समझ गए ना?
3: समझ गया बिल्कुल समझ गया। और इसमें आपके समझाने की बात ही क्या है, मैंने तो बरसों चिट्ठियां खोलने और पढ़ने का धंधा किया है। कुछ चिट्ठियों में तो इतनी मजेदार बातें लिखी रहती है कि उन्हें छोड़ने को मन ही नहीं करता।
0: सुनो, कोई ऐसी चिट्ठी तो तुमने नहीं देखी जिसमें पीटर्सबर्ग से अफसर आने की इत्तला हो?
3: जी नहीं, ऐसी कोई चिट्ठी नहीं है, लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प चिट्ठियां मेरी आंखों के सामने से गुजरी हैं। मेयर साहब, काश आपने भी एक आध चिट्ठी पढ़ी होती, वो मनोरंजक बातें, वो लच्छेदार शैली के पढ़ने वाले की तबीयत फड़क उठे।
0: अच्छा?
3: एक लेफ्टिनेंट ने अपनी प्रेमिका को चिट्ठी लिख रखी थी। आप वो चिट्ठी पढ़ना चाहेंगे?
0: शुक्रिया शुक्रिया, मैं तुम्हारी तरह फालतू नहीं हूँ, मैंने जो सुझाव दिया है उसका तुम्हें ध्यान है ना?
4: ये भी ध्यान रहे पोस्टमास्टर साहब कि ऐसी हरकतों से तुम्हें जेल जाने में देर नहीं लगेगी।
0: आप बकते हो लियापकिनती आपकी, कोई सरे बाजार रिश्वत ले तो बेशक ये बुरा है, लेकिन ये तो हमारा व्यक्तिगत मामला है।
4: आपके सारे मामले व्यक्तिगत ही होते हैं मेयर साहब
0: जी।
4: हाँ छोड़िए, हाँ याद आया,
0: क्या
4: ये बताइए, क्या आप एक बहुत अच्छी नस्ल का शिकारी कुत्ता लेना पसंद करेंगे? मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था।
0: मैं ये भेंट तुम्हें मुबारक हो मिस्टर ल्यापकिन त्यापकिन, मुझ पर मेहरबानी करो, मेरे चारों तरफ तो भेष बदला हुआ इंस्पेक्टर नाच रहा है। इंस्पेक्टर तुम यहाँ बैठकर माज करो और इंतजार करो कि कब दरवाजा खुलता है और इंस्पेक्टर लगता है इंस्पेक्टर जनरल साहब पहुंची आ गए हैं।
5: हे भगवान,
6: दरवाजा खोलिए मेयर साहब,
7: दरवाजा खोलिए मेयर साहब।
6: तुम चुप रह सकते हो डॉक्टर चिंस्की, मेरा बोलना काफी है।
7: पर बॉब चिंस्की, मेरी आवाज तुमसे ज्यादा तेज है। मेयर साहब दरवाजा खोलिए।
0: ये आप दोनों महाशय हैं,
8: कमाल हो गया मेयर साहब, कमाल हो गया।
9: सपने में भी इस बात की उम्मीद नहीं थी।
0: क्या हुआ
1: बाप चिंस्की? क्या हुआ
9: खबर है, हम लोग होटल में पहुंचे थे कि
8: हाँ, मैं और डॉब चिंस्की होटल में पहुंचे ही थे कि
9: बाप चिंस्की, जब मैं बता रहा हूँ तो
8: अरे पर मुझे ही बताने दो ना डॉब चिंस्की, तुम्हारा कहने का ढंग बहुत ही बचकाना है।
9: लेकिन तुम बीच में भूल जाओगे, तुम्हें आज तक कोई चीज याद रही?
8: अरे जहाँ मैं भूल जाऊँ मुझे बता देना।
0: क्या तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने, यहाँ पहले ही मेरा दिल बैठा जा रहा है।
8: सुन लिया ना डॉब चिंस्की? लीजिए मेयर साहब, मैं शुरू से सारी बात सुनाता हूँ। सुबह आपसे वो अहम खबर सुनकर मैं कोरोबोकिन को बताने के लिए गया, लेकिन उस वक्त वो घर पर नहीं था। मैंने सोचा रूस्ता कोविंस्की को ये समाचार दे दूं, लेकिन वो भी अपने साली की शादी में बाहर गया हुआ था। मैं वापस आ ही रहा था कि मेरी मुलाकात डॉबचिंस्की से हो गई।
9: समोसे वाले

0: की दुकान के पास।
1: हाँ, समोसे वाले की दुकान के पास। लेकिन इससे ये खबर आपकी नौकरानी अवधोत्या से पहले ही मिल चुकी थी। वो आबकारी की दुकान पर कुछ लेने गई थी।
0: मेयर साहब के लिए फ्रांसीसी ब्रांडी की बोतल लेनी।
1: हाँ, फ्रांसीसी ब्रांडी की बोतल लेनी। बीच में मत टोको डॉक्टर की। इसने मुझसे कहा कि मारे भूखे इसके पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो मैं इसे कुछ खिलाने पिलाने के लिए होटल में ले गया। जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो एक लंबा तगड़ा खूबसूरत नवयुवक
0: सूट बूट पहने हुए
1: डॉक्टर की, तुम बार बार टोकते हो, ये बहुत बुरी आदत है। तो हाँ साहब, सूट बूट पहने हुए खूबसूरत नौजवान कमरे में चहलकदमी कर रहा था। रोबीला गंभीर चेहरा, जैसे कोई बहुत अहम बात सोच रहा हो। मैंने छूटते ही डॉबचिंस्की से कहा, हो ना हो, ये वही आदमी है। हम दौड़े दौड़े होटल के मालिक के पास गए। उसने बताया ये कोई सरकारी मुलाजिम है, पीटर्सबर्ग से आया है और सारातोव की तरफ जा रहा है। इसका नाम इवान अलेक्जेंड्रोविच हेलस्टकोव है। लेकिन अजीब शैतान आदमी था वो भी। 2 हफ्ते से उनकी रोटियां तोड़ रहा था और उनकी छाती पर मूंग दल रहा था। न होटल से निकलने का नाम ले और न उनके बिल के चुकाने का नाम ले। होटल मालिक की बात सुनकर मैं तो जैसे उछल पड़ा। मैंने डॉबचिंस्की से कहा, पकड़ा, ये वो आदमी।
2: नहीं बाप, पहले मैंने ये कहा।
1: अरे हो सकता है पहले तुमने कहा, लेकिन फिर मैंने भी तो कहा था। यही है वो पीटर्सबर्ग का अफसर।
0: कौन सा अफसर?
1: अरे भूल गए मेयर साहब, अजी पीटर्सबर्ग का अफसर।
0: क्या?
1: यानी इंस्पेक्टर जनरल।
0: क्या? नहीं नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता।
3: वो कैसे हो सकता?
0: वही है मेयर साहब, वही है। वो होटल में एक पैसा नहीं देता, वहां से जाता भी नहीं। इतनी हिम्मत एक इंस्पेक्टर जनरल की ही हो सकती है, किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे की नहीं।
1: एक बड़े अफसर की तरह वो हर चीज को बहुत बारीकी से देख रहा था। हम लोग जब खा रहे थे तो उसने जिस ढंग से हमारे खाने की तरफ देखा, वो पैनी नजर एक इंस्पेक्टर जनरल के अलावा और किसी की नहीं हो सकती, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हाँ,
0: अगर सचमुच वो इंस्पेक्टर जनरल ही है तो फिर तो भगवान ही हमारा मालिक है। बॉबचिंस्की, तुमने उसका नाम क्या बताया?
1: इवान अलेक्जेंद्रोविच हेलस्टकोव।
0: उसके कमरे का नंबर क्या है?
1: नंबर 4, जहाँ पिछले साल कमेटी के अफसरों में मारपीट हुई थी ना?
0: और उसे यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए?
1: 2 हफ्ते।
0: मारे गए, अब क्या होगा?
4: मेरा एक सुझाव है मेयर साहब।
0: क्या?
4: हम सब मिलकर इंस्पेक्टर साहब का स्वागत कर दिख लीजिए।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं अकेला ही वहाँ जाऊंगा, अकेला। आप लोग तो वहाँ जाकर ठूंठ की तरह खड़े हो जाएंगे। डॉबचिंस्की, तुम बता रहे थे कि इंस्पेक्टर नव युवक सा लगता है।
5: जी हाँ, मुश्किल से 23-24 साल का होगा।
0: ये भी गनीमत है, नौजवान अफसरों को उल्लू बनाना आसान है। अच्छा साहिबान, आप लोग फटाफट सब चीजें ठीक ठाक कर लीजिए, समझे आप। मैं होटल का दौरा लगाने और यात्रियों की सुख सुविधा मालूम करने का बहाना कर इंस्पेक्टर से मिलकर आता हूँ। मिश्का,
6: जी हुजूर।
0: गाड़ी तैयार है?
6: जी तैयार है।
0: प्रहरात कहाँ है?
6: हुजूर वो आज ड्यूटी पर नहीं है।
0: क्यों नहीं है?
6: जी वो रात आबकारी वाले नुक्कड़ पर पहरा दे रहा था। सुबह जब ड्यूटी से लौटा तो नशे में धुत था। 2-3 टप पानी डाले जाने पर भी उसका नशा ज्यों का त्यों है।
0: तुम लोग सिपाही नहीं हो, बादशाह हो, बादशाह। तुम भागकर अंदर जाओ। नहीं नहीं, ठहरो ठहरो, भरो भरो भरो, और पुलिस सुपरिंटेंडेंट को बुला लो, समझे? जल्दी जल्दी।
4: हाँ, अभी जज साहब, मेरा ख्याल है कि अब चलकर सब कुछ ठीक ठाक कर लेना चाहिए।
7: भाई तुम्हें क्या फिक्र है हेल्थ अफसर साहब, मरीजों को साफ वर्दी पहना दोगे, सब ढक जाएगा।
4: जी हाँ, और अस्पताल के कोने कोने से जो बदबू के झोंके आते रहते हैं उसे आप किस तरह से?
7: बदबू तो जनाब मेरी अदालत से भी बहुत आती है, पर मुझे इस बात का बिल्कुल फिक्र नहीं है। डर ये है कि कहीं इंस्पेक्टर साहब ने भूले भटके कागज पर नजर डाली तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। पिछले 15 साल से मैं फैसला देता आ रहा हूँ, लेकिन मैंने कसम खाने को भी कभी कागज पर नजर नहीं डाली और ना पढ़ा।
8: चिंता मत करो मित्र, इंस्पेक्टर साहब तुम्हें इनाम दिए बिना नहीं रहेंगे। हाँ,
0: कौन
9: कौन है?
0: कौन?
10: हुजूर, आपने मुझे याद किया।
8: आ गए आप पुलिस सुपरिंटेंडेंट साहब। पलक झपकते देर नहीं होती कि आप ना जाने कहां उड़नछू हो जाते हैं। ये आलम है हमारे शहर के सम्मानीय पुलिस सुपरिंटेंडेंट का।
10: मगर हुजूर, मैं तो बाहर के गेट पर ड्यूटी दे रहा था।
8: सुनिए, इस शहर के मुआयने के लिए पीटर्सबर्ग से अफसर आ पहुंचा है, आपको सारा इंतजाम करना है। जल्दी से किसी लंबे तगड़े सिपाही को नई वर्दी पहनाकर पुल पर खड़ा कर दीजिए, ताकि अफसर पर रौब पड़ जाए। शहर का सारा कूड़ा किसी बुत या किसी स्मारक के पीछे फेंकवा दीजिए। शहर के एक किनारे कुछ खुदाई करवा दीजिए और मजदूरों को हिदायत दे दीजिए कि मिट्टी इधर उधर करते रहे, जिससे ये लगे वहां जमीन बराबर की जा रही है।
10: जी बहुत अच्छा।
8: और हाँ, अगर खुदा ना खास्ता अफसर ने किसी पुलिस वाले से सवाल किया, तुम अपनी नौकरी में खुश तो हो, तो उसे तुरंत उत्तर देना चाहिए, जी आपकी कृपा से मैं बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हूं। ऐसे आदमी को बाद में सचमुच संतुष्ट करने पर विचार किया जाएगा।
10: जी, मैं इस बारे में अभी एक नोटिस घुमा देता हूं।
8: एक बात और है, अगर कोई पूछे कि अभी तक अस्पताल में गिरजा क्यों नहीं बनवाया गया, जबकि इसके लिए 5 साल पहले ही चंदा इकट्ठा कर लिया गया था, तो उसका जवाब यह है कि गिरजाघर बना था लेकिन उसमें
0: आग लग गई, समझे आप। मैंने इस बारे में सरकार को रिपोर्ट भी भेज रखी है। डर यही है कि तुम में से कोई बेवकूफ कहीं ये ना कह दे कि गिरजे का निर्माण तो कभी शुरू ही नहीं किया गया। अब मैं जाता हूँ गॉबचिंस्की, तुम मेरे साथ चलो।
1: जी बाप, मेरे साथ, मुझे भी साथ ले लीजिए।
0: समझदारी की बात करो गॉबचिंस्की, गाड़ी में दो ही आदमियों की जगह।
1: कोई बात नहीं, मैं पायदान पर ही खड़ा खड़ा चला जाऊंगा। दरअसल मैं भी दरवाजे की दरार से अफसर और आपकी भेंट देखना चाहता हूँ।
0: अच्छा, आइए आइए, चलिए चलिए,
3: सुनिए सुनिए। अरे पापा तो चले गए। मम्मी
9: और क्या
3: मारिया, ये देर सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। मम्मी मेरा नेकलेस कहाँ रखा है? मम्मी मेरे हेयर पिन नहीं मिल रहे। मम्मी क्या अफसर आ गया है? कैसा दिखता है, जवान है या बूढ़ा है?
9: लेकिन लेकिन पापा ने जाने से पहले हमें बुलाया क्यों नहीं? अब हम अफसर को कैसे देखेंगे?
3: तू क्या देखेगी, तुझे तो पोस्ट मास्टर को देखने से भी फुर्सत नहीं मिलती।
9: न जाने पापा का अफसर कैसा होगा, मेरा दिल कहता है वो बहुत सुंदर होगा।
11: धत तेरे की, हमें पीटर्सबर्ग से चले 2 महीने हो गए लेकिन अभी तक आधे रास्ते में अटके हुए। लेकिन हमारे मालिक साहब को इसकी कोई फिक्र ही नहीं। उन्हें कोई काम ना काज ना नौकरी ना चाकरी, उन्हें तो बस हुक्म चलाना आता है।
12: और से इवान अलेक्जेंड्रोविच इलिस्टकोव के लिए, यानी हमारे लिए शानदार होटल का शानदार कमरा बुक कर लो। आसिफ जल्दी से बैरे को खाना लाने के लिए बोलो, लेकिन ध्यान रहे खाना एकदम लजीज हो, हमें घटिया खाना खाने की आदत नहीं।
11: घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुना ले। अरे कभी इधर उधर से पैसे आ भी गए तो साहबजादे को जैसे पर लग जाते, फौरन बड़े बड़े आदमियों को जा घेरेंगे और जुए में तब तक जुटे रहेंगे जब तक जेब में आखिरी सिक्का रहेगा। हाँ, अरे कई बार मालिक जेबें गर्म करके भी आते हैं, तब मैंने भी खूब गुल छर्रे उड़ाए। कुछ ना पूछिए, खूब दावतें खाई हैं, बढ़िया कपड़े पहने। मैं और मालिक बाजार से निकलते हैं तो दुकानदार सिर झुका झुका कर स्वागत करते हैं, आइए आइए श्रीमान हमारी दुकान पर भी तो कीजिए। ओह आज तो भूख के मारे ठीक से हंसा भी नहीं जा रहा, और होटल का मालिक है कि हमारी तरफ देखता तक नहीं। इतने जोर की भूख लगी है कि ओह मालिक आ गए। ओह मालिक आज तो आप सह से जल्दी वापस आ गए।
0: नीचे जाकर मेरे लिए खाना ले आओ, बहुत जोर की भूख लगी है।
11: मालिक ये काम मेरे बस का नहीं है।
0: क्या
11: मालिक, मेरा मतलब है मेरे जाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। होटल के मालिक ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक आप उसका पिछला बिल नहीं चुका देते वो हमारे खाने की छुट्टी रखेंगे।
0: उसकी शे मजाल की हमें खाना देने से इनकार करे।
11: आज ही उसने तो यहाँ तक धमकी दे दी है कि वो शहर के मेयर के पास हमारी शिकायत लेकर जा रहा है। कहने लगा मैं मेयर साहब को बताऊंगा कि पीटर्सबर्ग का एक उचक्का लफंगा अपने नौकर के साथ 2 हफ्ते से मुफ्त मेरे होटल की रोटियां।
0: और तुम बहुत चाव के साथ ये सब सुनते रहे।
11: सुनना ही पड़ा मालिक, मुझसे कहने लगा फिक्र ना करो बच्चू, कल से तुम्हें जेल की रोटियां मिलेंगी।
0: बस भी करो, जाओ एक बार फिर उसे खाना भिजवाने के लिए बोलो।
11: मैं उसे यहीं बुला लाता हूँ, आप खुद ही उससे बात कर लीजिए ना।
0: मैं ऐसे घटिया आदमी की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता।
11: अच्छा आप कहते हैं तो एक बार फिर बात करता हूँ।
0: इतनी भूख लगना भी मुसीबत है इवान अलेक्जेंड्रोविच हेलस्तकोव, तुम भी किस भूखे शहर में आकर फंस गए। यहाँ तो रहने का मजा ही नहीं आ रहा, पर यहाँ से निकले भी कैसे, जेब में फूटी कौड़ी नहीं और उधर सारा तो मैं बाबा मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बाबा समझते हैं मैं पीटर्सबर्ग में किसी अच्छी खासी नौकरी में हूँ, और हमें अभी तक ये भी नहीं मालूम कि नौकरी किस बला का नाम।
11: मालिक लीजिए, वेटर खाना लेकर आ गया।
0: खाना
11: जी?
0: यानी कि खाना? खाना
13: हमारे मालिक ने कहा है आज के बाद आपको खाना नहीं मिलेगा।
0: भाड़ में जाए तुम्हारा मालिक, मेरा मतलब है मित्र पैसा वैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, मुझे खाने का इतना चाव नहीं है, लेकिन इसलिए खाता हूँ क्योंकि क्योंकि क्योंकि मुझे खाना है। हाँ
13: जी जी।
0: खैर छोड़ो छोड़ो छोड़ो, शे क्या सिर्फ सुपर मुर्गा, शे क्या बदतमीजी है, इसे ले जाओ और अपने मालिक से कहो ये बहुत कम है।
13: मालिक कहते हैं ये जरूरत से ज्यादा है।
0: बकता है, और बाकी चीजें कहाँ गई? मछली, कलेजी, कटलेट और वो अचार चटनी?
13: बाकी चीजें नहीं है।
0: क्यों नहीं? अरे मैंने ऊपर आते हुए खिड़की से झांक कर देखा था तो पिद्दी से घाक उंगलियां चाट चाट कर दुनिया भर की चीजें।
13: अजी वे ऊंचे ग्राहकों के लिए हैं, आप जैसों के लिए नहीं।
0: बको मत, मेरे गले में वो चीजें अटकती, वो लोग भी तो मुझ जैसे मुसाफिर हैं।
13: फर्क है हुजूर, वो नकद दाम देते हैं और आप।
0: मैं इतनी गजा नहीं खाता कि तुम जैसे जाहिल गमार से बहस कर सकूं। ये सूप है
14: जैसे गर्म पानी में नमक खोल दिया गया।
13: कोई बात नहीं हुजूर, मालिक ने कहा था आपको जरूरत ना हो तो वापस ले आना।
14: वापस ले आना। लो आसिफ, बाकी तुम पी लो।
15: बहुत अच्छा।
16: ये मुर्गा बना मुंह में रखते ही जबड़ा अलग हो जाए जैसे किसी पेड़ का ठूंठ हो। लो आसिफ, थोड़ा तुम भी लो।
13: मैं अब जा सकता हूँ।
16: सुनो मित्र, खाने के बाद कुछ मीठा मिल जाए तो मजा आ जाएगा। आसिफ, तुम बेटो जी के साथ चले जाओ। ये खाना है सूप की जगह उबला पानी और गोश्त।
15: मालिक, मालिक नीचे मेर आया हुआ है और आपके बारे में कुछ पूछताछ कर रहा है।
14: क्या?
15: जी हाँ।
14: आखिर उस बदमाश ने मेयर के पास मेरी शिकायत करी थी। नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगा। मेयर की क्या मजाल कि मुझे जबरदस्ती जेल भेजे। मैं उसे ऐसी झाड़ दूंगा कि याद रखेगा। तुम्हारी ये हिम्मत हुई कैसे? तुम्हारी ये मजा।
17: श्रीमान, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आप भी मेरी नमस्ते दीजिए। क्षमा कीजिएगा, बिना पूछे ही चला।
14: नहीं नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। दरअसल शहर के मेयर की हैसियत से ये मेरा पहला फर्ज हो जाता है कि बाहर से आने वाले यात्रियों की सुख सुविधा का ध्यान रखूं, उन्हें किसी भी तरह।
13: लेकिन आप ही बताइए, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो होटल की कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। दरअसल शरारत तो होटल के मालिक की है। वो मुझे जान बूझ कर घटिया खाना देता है। मांस ऐसा जैसे पत्थर के टुकड़े हों।
14: और सूप भगवान ही जाने उसमें क्या डाला जाता है। मैंने अभी अभी उसे खिड़की से बाहर फेंका है। चाय में मछली की बू आती है और ऊपर से वो मुझे धमकी देता है कि मुझे वो।
17: मैं बहुत शर्मिंदा हूँ हुजूर, बहुत शर्मिंदा हूँ। आपसे सच बताऊं उसमें मेरी जरा भी गलती नहीं है। हमारा शहर तो ताजे गोश्त के लिए मशहूर है। ताज्जुब है ये आदमी कहां से कूटा उठा लाता है। दरअसल ये होटल आपके रहने लायक है भी नहीं। मैं आपसे कहीं और चलने की प्रार्थना कर सकता हूँ?
14: नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं खूब समझता हूँ कहीं और से आपका मतलब क्या है। आप इस बहाने मुझे जेल ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपको मुझे जेल ले जाने का क्या अधिकार है?
17: हे भगवान, ये तो सब जानता है, जरूर किसी ने इससे मेरी शिकायत।
14: जनाब, आप पूरी फौज लेकर आइए तो भी मैं नहीं जाऊंगा। मैं सीधा जार के पास जाऊंगा। आप लोग मुझे समझते क्या हैं?
17: ऐसा ना कीजिएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे बीवी बच्चे तबाह हो जाएंगे।
14: खूब खूब, तो आपके बीवी बच्चों को बचाने के लिए मैं जेल चला जाऊं? माफ कीजिए, मैं भी सब जानता हूं,
17: मुझसे गलती हुई हुजूर। दरअसल मुझ में अकल की बहुत कमी है। और क्यों ना हो हुजूर, तनख्वाह इतनी कम मिलती है कि सारा दिमाग उधर सोचने में ही खत्म हो जाता है। तभी तो भूले भटके रिश्वत लेने की गलती हुई है हुजूर। लेकिन विश्वास कीजिए, रिश्वत में भी हमेशा छोटी मोटी चीजें ही ली हैं मैंने। और वो जो आपने वो देखी ना, हवलदार की विधवा को कोड़े लगाने वाली बात सुनी होगी ना, वो बिल्कुल झूठ है साहब, बिल्कुल झूठ है। मेरे दुश्मनों का गढ़ा हुआ किस्सा है। और हुजूर आपसे क्या कहूं, इन दुश्मनों से तो मुझे अपनी जान का भी खतरा हो गया।
14: मुझे इन बातों से क्या लेना देना। लेकिन आप मेरा कुछ नहीं कर सकते।
17: नहीं नहीं,
14: मैं होटल का एक एक पैसा चुका दूंगा, पर इस समय मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है।
17: धूर्त कहीं का, किस चालाकी से पैसे की बात छिड़ी है। पर बच्चों, में भी तुझे अपने जाल में फांस कर ही छोड़ूंगा। माफ कीजिएगा हुजूर, अगर आपको पैसों की दिक्कत हो तो मैं सेवा के लिए उपस्थित हूँ। शहर में आने वाले प्रत्येक यात्री की सेवा करना तो मेरा
14: पहला। ठीक है ठीक है, आप मुझे कुछ रूबल उधार दे दीजिए ताकि मैं होटल का बिल दे सकूं।
17: मेरा ख्याल है 200 रूबल में काम चल जाएगा। ये लीजिए, गिनने के कष्ट न कीजिएगा।
2: पूरे 200।
14: बहुत बहुत धन्यवाद, मैं वापस जाते ही भिजवा दूंगा।
17: अरे आसिफ
15: डॉबचिंस्की,
17: शुक्र है इतने पैसे चुपचाप ले लिए इसने। मैंने भी समझदारी की, 200 की जगह 400 रूबल दे दिए।
14: आसिफ, वेटर को बुला लाओ।
18: इंस्पेक्टर जनरल गोगोल के इस प्रसिद्ध नाटक के हिंदी रेडियो रूपांतरण का पहला भाग अभी आपने सुना। रूपांतरकार थे शैलेंद्र, निर्देशक सत्येंद्र शरत, प्रस्तुति विविध भारती की थी। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे कल नाट्य तरंग में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।

या सुनते हैं फिल्म एडिटर दिलीप दरक से जयंत पात्रिकर की बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। ये है फिल्म एडिटर दिलीप दरक के फिल्मी गीतों की एक झलक।

0: नमस्कार श्रोताओं, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों में न जाने कितनी ही फिल्मी हस्तियों से आज तक हम मिलते रहे हैं, उनसे रूबरू होते रहे हैं, और आपने फिल्म के जितने भी पक्ष हैं, जितने पहलू हैं, फिल्म निर्माण हुआ, फिल्म निर्देशन हुआ, फिल्म में एक्टिंग करने वाले भी यहाँ आते रहे हैं, फिल्म के लिए गीत गाने वाले आते रहे हैं, संगीतकार आते रहे हैं, शायर आते रहे हैं, गीतकार आते रहे हैं, मगर फिल्म का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, एक पहलू है, जो है फिल्म एडिटिंग। आज उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है विविध भारती के स्टूडियो में जाने माने फिल्म एडिटर यानी फिल्म संपादक दिलीप दरक जी को। दिलीप जी, विविध भारती के स्टूडियो में इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हम भी आपका सबका आभार मानते हैं कि आपने हमको बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में, और सभी श्रोताओं को भी हम स्वागत करते हैं और सबका अभिनंदन करते हैं कि स्टाफ का पूरा विविध भारती के, जिन्होंने हमको इस इंटरव्यू के लिए बुलाया
0: जी
1: और संवाद के लिए बुलाया, तो हम आपका आभारी है। और हम ऐसी चीज़ों पर बातचीत करेंगे जो कि फिल्म से संबंधित है, सब बातचीत करेंगे। तो पात्रिकर जी, आप पूछिए क्या पूछना है।
0: दिलीप जी, फिल्मों में कहानी के मुताबिक जितने सीन्स शूट किए जाते हैं, गीतों का एडिटिंग होता है, इसकी तो बात हमने की, मगर कई बार एक एक्शन सीन्स होते हैं जो मारधाड़ वाले सीन्स हुए हैं, या कहीं से मोटर आ रही है उसका एक्सीडेंट हो गया है, इस तरह के सीन जो एक्शन सीन्स होते हैं, इनमें एडिटिंग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
1: क्यों? तो सर, वो शॉर्ट में क्या करते हैं, वो एक्शन सीन में
0: जी,
1: एक्शन सीन तो अभी सब तो कंप्यूटराइज हो गया, पहले रियल हो जाता था।
0: अच्छा,
1: मतलब पहले गाड़ियां उड़ाते थे।
0: हाँ।
1: तो एक पिक्चर हमने की थी, उसमें 6 गाड़ियां उड़ा दिए थे।
0: ओहो,
1: रियल चेस हुई थी।
0: अच्छा,
1: और वो इतनी बड़ी चेस है, हिंदुस्तान की पहली चेस थी।
0: हाँ।
1: जो राजश्री ने पिक्चर बनाया था एजेंट विनोद, उसमें 6 के 6 गाड़ियां उन्होंने उड़ाए थे, उसमें कोई वायर नहीं था।
0: हाँ।
1: या कोई ट्रिक नहीं थी।
0: अच्छा,
1: वीरू देवगन उसका ये था फाइट कंपोजर, एक्शन सीक्वेंस
0: जी,
1: उन्होंने गाड़ियां कैसे उड़ाए थे आज भी हम देखते हैं।
0: ओहो।
1: और उन्होंने तो यहां तक किया था कि बॉम्बे में कोलाबा में शूट चल रही थी, मोटर बाइक जाते ऐसा ऊपर से। वो तो उन्होंने अपना ऐसे कहते, उस टाइम में कोई वायर नहीं था, अभी तो क्या है, थोड़ा बहुत भी हुआ तो वायर लगा देते।
0: अच्छा।
1: जैसा अभी टेबल पर से कूदना है, वायर लगाए कूदे। मतलब उस टाइम के जो हीरो थे, जितने भी हीरो है, धर्मेंद्र है, शम्मी कपूर है, ये मतलब ज्यादा से ज्यादा खुद बॉक्सिंग
0: स्टंट किया करते थे, पूरा
1: एक्ट करते थे। उस टाइम में वायर था ही नहीं सर, खाली चेस वगैरह में होता था तो उसमें थोड़ा बहुत कहीं ये हो जाता।
0: हाँ।
1: बाकी खुद कर लेते थे सब, और बहुत सारे सीन रहते थे जैसे जंप मारने का वगैरह।
0: हाँ,
1: उसमें
0: हाँ।
1: कहीं जगह पर डुप्लीकेट यूज करते थे। और उस टाइम में तो क्या होता था कि एक पिक्चर आई थी, मैं बताता हूँ, गीता मेरा नाम पिक्चर का नाम है
0: जी,
1: और एक आई थी हमराई, रामानंद सागर की
0: जी।
1: उसके अंदर एक सीन है हमराई में, रणधीर कपूर, तनुजा और गजानन जागीदार
0: जी,
1: उनके पीछे गुंडे लगते हैं और वो भागते हुए जाते हैं, और एक टूटा हुआ ब्रिज था उधर।
0: हाँ।
1: आप पिक्चर में अभी भी देखेंगे
0: जी, जी।
1: तो पहले टेक में वो जो डुप्लीकेट जो भी बैठे थे उन्होंने पूरा मार दिए थे जंप उधर।
0: अच्छा,
1: तो 40-50 मतलब 30-40 फीट का होगा ऐसा।
0: हाँ।
1: ब्रिज तो आपको मालूम है, छोटे नाले पर रहते हैं।
0: अच्छा,
1: मगर सेकंड टेक में वो गिर गए थे उधर आधे में।
0: ओहो,
1: तो ऐसा है। और एक पिक्चर आई थी गीता मेरा नाम, उसमें फिरोज खान, सुनील दत्त और साधना
0: जी,
1: तीनों के चेस, तीनों भी क्रॉस करते पूरा।
0: अच्छा।
1: जंप करके, तो उसमें पहले जोखिम रहता था, कर लेते थे पहले, बहुत सारे में एक्सीडेंट हो जाते थे। कभी वो फाइटर ये हो जाता था। और अभी क्या है, तो अभी तो कंप्यूटराइज हो गया, अभी तो इजी हो गया
0: जी। जी, तो ऐसे जो ये एक्शन सीन्स होते हैं, इन दृश्यों को जोड़ना, ये कितना मुश्किल काम होता था?
1: मुश्किल काम नहीं, उनके शॉट रहते सर।
0: अच्छा,
1: शॉट वो कटिंग में ले लेते शॉट।
0: अच्छा,
1: कटिंग में लेने के बाद हम वो काट लेते, जैसा इधर से गाड़ी का एक्सीलेटर दबा दिया। जैसा विलन ने भी एक्सीलेटर दबा दिया।
0: अच्छा,
1: हीरो उधर से आ रहा है, विलन
0: हाँ।
1: इधर से आ रहा है, दोनों की टक्कर हो रही है, दोनों उड़ के गिर रहे हैं, ये अलग अलग शॉट लेते वो।
0: अच्छा,
1: कट में।
0: हाँ।
1: तो हमको वो टाइमिंग के हिसाब से ड्रू किया उधर, उसने ड्रू किया, फिर इसने देखा।
0: हाँ।
1: उसने देखा, बैंग आ गया उसमें, फिर उसके बाद ये कर लेते। ये सब पूरे यूनिट का काम है सर। अकेला एडिटिंग में क्या होता है कि जिसमें डायरेक्टर का कल्पना रहती है, उसका थॉट रहता है
0: जी, जी.
1: उसको वो नैरेट करते हैं फाइट कंपोजर के साथ में.
0: हाँ.
1: फाइट कंपोजर उसको एग्जीबिट कर लेता है.
0: हुँ.
1: पहले करके बताता है, वो भी सोचता है कि कैसा करे. ये करने के बाद फिर बाद में वो शॉट लिए जाता है, उसको असेंबल करते हैं.
0: हाँ.
1: और उसको असेंबल करने के बाद में वो जो हम पब्लिक को दिखाते हैं, असेंबल करने के बाद में फाइनल जो फुटेज रहता है उसका.
0: हाँ.
1: जो इम्पैक्ट क्या रहता है कि सिक्वेंस जब रहता है कि भाई इधर से हीरो आएगा, इधर से विलन आएगा, दोनों की टक्कर होगी, दोनों हवा में गिरेंगे.
0: हाँ.
1: इधर गिरेंगे, उधर गिरेंगे, रिएक्शन आ गया, दोनों उठ के भाग गए. ये
0: अच्छा.
1: तो अपना कहानी में हो गया.
0: जी,
1: वो
0: जी.
1: शूट कर लेते.
0: हाँ.
1: शूट करने के बाद डायरेक्टर वगैरह दोनों मिलके अपना दिमाग लगा के सब जो उनका कॉन्सेप्ट है वैसा कर लेते. बाद में एडिटर को लाके दे देते, भाई काट दो. तो हम काटते हैं और डायरेक्टर को पसंद आ गया तो हम जीत गए.
0: अच्छा.

0: बहुत सारे एडिटर पहले के ये थे, तो कि वो डायरेक्टर को क्या चाहिए,
1: हाँ
0: आपने शूट किया क्या चाहिए, वही डायरेक्टर ये कर लेता था।
1: कोई ऐसी फिल्म का एक्शन सीन याद आ रहा है जिसको एडिट करने में आपको बहुत मजा आया हो और डायरेक्टर को बहुत ज्यादा आपका काम पसंद आया हो?
0: पिक्चर तो किया था मैं, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बहुत पिक्चर किया था।
1: हाँ जी,
0: एक पिक्चर थी हमारा एक जख्म बोल के पिक्चर था एक,
1: हाँ
0: मैंने इंडिपेंडेंट 2006 में आया था पिक्चर,
1: जी
0: उसमें मुकेश तिवारी एंड नया हीरो था
1: हाँ
0: उसका था, और एक जानी दुश्मन पिक्चर आई थी हमारी
1: जी जी
0: जो सनी देओल की,
1: हाँ
0: उसमें ग्राफिक था पूरा इसमें, तो उसके अंदर टूनू वर्मा सनी देओल तरफ से फाइट मास्टर था और अक्षय कुमार तेरी तरफ से अब्बास अली मुगल,
1: अच्छा
0: तो वो इतना अच्छे तरह से शूट किए थे, वो हमको बोलते थे दादा ये शॉट ऐसा यहाँ से आएगा, ये ऐसा आएगा, ये आएगा, तो उसमें क्या है कि जो पंचे रहते थे जैसा इधर मुंह पर मार दिया वो अलग लेते थे, वो
1: हाँ
0: लॉन्ग शॉट में अलग रहता था, जैसा आपने बोले ना लॉन्ग शॉट में हीरो आया नजदीक क्लोज में फेस के ऊपर विषम कीर दिया,
1: अच्छा
0: तो वो अलग शॉट रहता था, फिर गिरने का इनका, अभी तो आजकल क्या है गिरना पड़ना ज्यादा हो गया, ऊपर से जंप मार लेते गोल गोल घूमते,
1: हाँ
0: मगर उस टाइम में ज्यादा नहीं रहता था, तो वो पूरा मैच करके वो पसंद आना चाहिए, डायरेक्टर बोले कि भाई अच्छा लगा हमको।
1: जी जी
0: कुछ
1: जी
0: एडिटर ऐसे थे कि डायरेक्टर उनको बोलते थे दादा ये काम कर लो आप। हमारे एक डायरेक्टर थे, मेरे भाई के साथ भी मैंने काम किया था नागेदर के साथ में,
1: जी
0: मगर एक डायरेक्टर थे प्रकाश पांचाल,
1: जी जी
0: तो उनके साथ में मेरी पहली पिक्चर थी लाभलो सौभाग्य चलेनी,
1: मराठी फिल्म थी
0: मराठी फिल्म,
1: जी।
0: तो उसमें उसके पास 7 एडिटर जा चुके थे वो पिक्चर में।
1: हाँ
0: उसका कंडीशन क्या था कि 22 फरवरी को पिक्चर की शूटिंग चालू करने वाले थे वो,
1: हाँ
0: 22 मार्च को पिक्चर की शूटिंग खत्म,
1: अच्छा
0: 1 तारीख से डबिंग चालू,
1: हाँ
0: और 17 तारीख के दिन उनको मिक्सिंग, और उनका हीरो का कोई जाने वाला था बाहर, तो वहां पर सब डर गए कि भाई इतना कैसा काम होगा ऐसा फास्ट, तो मुझे बुलाया डायरेक्टर ने,
1: जी
0: तो प्रोड्यूसर भी थे साथ में 3, अजय शाह राजेंद्र काले और अमित मंगतानी, 3 प्रोड्यूसर थे, अनित मंगतानी का था कैसेट का, कैसेट बनाते थे,
1: जी
0: और ये राजेंद्र काले

0: ये तो कॉरपोरेटर थे गोरेगांव के, और अमित शाह बिजनेसमैन थे, तो
1: जी।
0: उनको तो कुछ ज़्यादा नहीं था। तो मुझे बोले कैसा करेंगे, मैं बोले करके दे दूंगा बताओ। तो उन्होंने पूछा कैसा करोगे, मैं डायरेक्टर को बोला कि एक काम करो, जो पिक्चर फ्लैशबैक चालू होती थी,
1: जी
0: एक समारोह है उधर शादी हो रही एंगेजमेंट, मगर कोई आदमी विलन आके बोलता है कि भाई ये नाजायज बच्चा है, तो फिर वो एक्सप्लेन कर लेता है पूरी पिक्चर की कहानी। तो उसमें क्या फ्लैशबैक था, फ्लैशबैक एक नंबर में चालू होता था, 16 नंबर में ख़त्म हो जाता था।
1: अच्छा
0: तो डायरेक्टर को मैंने क्या बोला कि सर आप एक काम करो, आप मुझे कहानी बताओ, खाली क्लाइमैक्स में आप बैठो, समझे ना। और को बहुत सारे डायरेक्टर कॉम्पैक्ट स्क्रिप्ट रहता था, भाई ये सीन है इसमें इतनी शॉट है,
1: अच्छा
0: वो स्क्रिप्ट हमको दिए जाते थे, मैं स्क्रिप्ट के हिसाब से एडिट किया उसको, और टेकिंग अच्छी रहती थी, बहुत सारे डायरेक्टर टेकिंग अच्छी करते थे, मेरे डायलॉग के बाद आपका डायलॉग आ गया, हीरोइन का आ गया, ये आ गया, इंसर्शन आ गया, ये आ गया, हो गया, हो गया, और हम सीन दिख के दिखाते थे। कुछ डायरेक्टर तो ईजी रहता, तो प्रकाश पंचाल के साथ मैंने 9 पिक्चर की है एक ही डायरेक्टर के साथ में।
1: अच्छा
0: तो उनका क्या था कि भाई वो शूटिंग उधर करते थे, कभी कभी हम एडिटिंग इधर करते थे, तो आने तक टाइम बच जाता था। उन्होंने जब 22 मार्च को ख़त्म किया, तो
1: हाँ
0: मेरा क्लाइमैक्स छोड़ के गाने छोड़ के सब एडिट कर लिया था मैं।
1: अच्छा
0: आने के बाद देखे उन्होंने, क्लाइमैक्स के लिए बैठ गए, क्लाइमैक्स बैठने के बाद वो क्या रहता है, थॉट रहता है ना उनका, कहाँ से चालू करना है, कहाँ ख़त्म करना है,
1: हाँ
0: बाकी तो सब था, और गाने तो एडिट अच्छी तरह से पिक्चराइज किए थे। तो वो हमने वो पिक्चर को उनको करके दे दिया, वो पिक्चर रिलीज हो गई। उसके बाद वो डायरेक्टर हमको छोड़ा ही नहीं,
1: अच्छा
0: 10 पिक्चर किया, मेरे भाई की पिक्चर नहीं किया मैं दूसरी, मगर उसकी किया था।
1: अच्छा। तो कार्यक्रम के इस मोड़ पर आप कौन सा गीत अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे?
0: मेरा सर एक गाना था मैं जिसको बहुत लाइक करता हूँ,
1: हाँ जी।
0: हर एक आदमी की जिंदगी में एक ख्वाब होता है, एक सपना होता है हर
1: जी
0: एक का, लड़की का भी रहता है, लड़के लड़की को लगता है कि हमको राजकुमार मिले,
1: हाँ
0: लड़के को लगता है कि हमको राजकुमारी मिले, जो जीवन संगनी है,
1: हाँ
0: अर्धंगिनी जो बोलते हैं जिसको, वो
1: हाँ जी
0: अच्छी मिले, तो वो हमेशा सपने में सोचते रहते हैं।
1: हाँ
0: एक गाना था वो, पहले मिले थे सपनों में, आज सामने पाया तो एक बात जानू, ये
1: क्या बात।
0: जिंदगी पिक्चर का गाना है,
1: जी जी
0: राजेंद्र कुमार वैजयंतीमाला का,
1: हाँ
0: रामानंद सागर की पहली पिक्चर, मतलब उनके बैनर में बनी थी, शंकर जय किशन का म्यूजिक था,
1: अच्छा
0: और वो गाना बहुत अच्छा लगा मेरे को।
1: आइए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं यही गाना।

0: दिलीप जी, फिल्म देखते समय सबसे पहले टाइटल्स आते हैं, तो हमारे श्रोता जितने भी आम दर्शक हैं फिल्मों के, उन टाइटल्स में एक नाम देखते हैं, उस लिखा होता है फिल्म एडिटर, और उस नाम के नीचे लिखा होता है AFE। ये AFE क्या होता है?
1: सर, जो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है,
0: हाँ जी,
1: फिल्म लाइन में, आर्टिस्ट का,
0: हाँ जी,
1: उसके बाद प्रोड्यूसर का,
0: हाँ,
1: डायरेक्टर का, कैमरामैन का, एडिटर का, सबके एक अपने यूनियन है उनके।
0: अच्छा,
1: यूनियन मतलब एक एसोसिएशन है,
0: हाँ हाँ,
1: जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, तो उसका नाम है AFE लिखा जाता है, तो एसोसिएशन ऑफ फिल्म एंड वीडियो एडिटर।
0: एसोसिएशन ऑफ फिल्म एंड वीडियो एडिटर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो
1: हमारा पूरा जो है ना,
0: हाँ हाँ,
1: कुछ जितने भी एसोसिएशन है मेरे, 20-30 जितने भी है,
0: हाँ,
1: वो सारे का एक फेडरेशन है।
0: अच्छा,
1: वो उड़ा जुड़ा जाता है, तो इसमें सबको लिया जाता है, जैसे डायरेक्टर का IFDA, IFDA इंडियन फिल्म डायरेक्टर एसोसिएशन,
0: अच्छा,
1: WICA कैमरेमैन का रहता है उनका, ऐसा सबका अलग अलग है।
0: तो ये यानी कि एक प्रोफेशनल एडिटर जो बन जाता है और इंडिपेंडेंटली फिल्म को एडिट करता है ना, तो स्वतंत्र रूप से, तो वो AFE अपने नाम के आगे लिख सकता है, ऐसा आप कह सकते हैं?
1: नहीं, हमारे संस्था में क्या था कि हम जितने भी लोग काम करते हैं
0: जी,
1: चाहे उसमें म्यूजिक डायरेक्टर हो, कैमरामैन हो,
0: हाँ,
1: राइटर हो, इनके एसोसिएशन है, तो उनको जो भी आप काम करेंगे वहाँ रजिस्टर करना पड़ता है आपको।
0: अच्छा,
1: बिकॉज कुछ आगे चल के मैटर आ जाए या कोई बोले कि भाई ये पिक्चर का एडिटर मैं हूँ, तो उसलिए हमारा एग्रीमेंट बनता था।
0: अच्छा,
1: तो एग्रीमेंट के साथ में हम जाके उधर हम ये कर लेते थे, रजिस्ट्रेशन होता था।
0: अच्छा,
1: तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद एसोसिएशन में सपोज करो मैं काम कर रहा हूँ,
0: जी,
1: और अगर समझो वो पिक्चर का प्रोड्यूसर ने किसी दूसरे को रखा था पहले, तो अगर चल के वो क्लेम करेगा तो हमको अड़चन आ जाएगी, इसीलिए हम पहले वो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं।
0: तो आप इस एसोसिएशन से सबसे पहले कब जुड़े थे?
1: मैं 78 में,
0: 78 में ही, शुरुआत में ही?
1: हाँ,
0: जी जी जी जी
1: 78 में जुड़ा था।
0: हाँ,
1: जो मेरा राजश्री में एक साल पूरा हो गया था,
0: हाँ,
1: जून 78 में, जो अगस्त 78 में, जून जुलाई ऐसा कुछ था, तो उस टाइम में हमको एक कार्ड मिलता था पहले कि भाई अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस में ₹25 में हमको भर के कार्ड मिलता था।
0: जी,
1: तो आजकल सब कार्ड बने हैं, वो हम दिखाते थे तो हमको लैब में जाने देते थे,
0: अच्छा,
1: शूटिंग में हमको जाना है जाने देते थे, क्योंकि तो उस टाइम, अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, उस टाइम में भी स्ट्रिक्ट था मगर इतना ये नहीं था, गड़बड़ जो होती है आजकल,
0: हाँ,
1: वो नहीं था, तो वो हम दिखाते थे हमको छोड़ देते थे। फिर उसके बाद हमारा कार्ड बना मेरा असिस्टेंट का 78 में,
0: जी,
1: उसके बाद मुझे मनोकामना पिक्चर मिली थी, तो हमको कार्ड मिला था, तो हमारा उस टाइम में फीस कुछ हमसे ₹251 लिए थे
0: अच्छा
1: एसोसिएशन ने,
0: जी
1: जो
0: जी
1: कि उनको लेते हैं सब एसोसिएशन में मेंबर बने लेने आते हैं। तो उसके बाद वो कार्ड देते, तो कार्ड में लिखा रहता है कि IFDA, जो आप बोले ना,
0: हाँ, AFE लिखा होता है,
1: AFE लिखा रहता है,
0: हाँ
1: तो वो कार्ड ऐसा रहता है कि वो हमको कार्ड मिल जाता है
0: जी जी जी
1: लिखे, तो ये कार्ड में हमको, हम किधर भी जा सकते हैं ये, और
0: अच्छा,
1: एनी स्टेट में ये अप्रूवल है गवर्नमेंट से,
0: हाँ
1: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एसोसिएशन फेडरेशन अप्रूवल है।
0: हाँ
1: जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमको जाना पड़ता है मद्रास, एडिटिंग के लिए मैं मद्रास जाता था, कलकत्ता जाता था, भुवनेश्वर जाता था, जितने भी लैब है उधर जाता था, तो उधर हमको ये कार्ड कैरी करना पड़ता था,
0: अच्छा,
1: तो ताकि वो बोलते थे कि हम इधर के मेंबर है और ये हम ऐसा है। तो AFE का मतलब ये है, मतलब एसोसिएशन ऑफ फिल्म एडिटर।
0: चलिए, यहाँ इस बात पे एक और गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे?
1: मैं तो सर जिंदगी में नोक झोक,
0: जी
1: प्यार के साथ में नोक झोक जो होना जरूरी है।
0: हाँ,
1: आज हम बीबी के पास चले जाते हैं, हमारी बीबी रूठी रहती है, कभी हम देर से जाते हैं,
0: अच्छा,
1: हमारी

0: टेंशन ऐसी है, कभी कभी हम दो तीन दिन घर नहीं जाते थे तो रूठी रहती थी। तो उसके ऊपर एक गाना है शम्मी कपूर का, जवां मोहब्बत पिक्चर का, रूठो रूठो ना मेरी जान, इसी बहाने आज तेरी मेरी होगी पहचान।
1: वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत ये गाना है। आइए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।

फिर ऐसा समा होगा न किस्मत जगमगाएगी। जरा सी बात का आखिर बनाती हो क्यों अफसाना।

0: आज तेरी मेरी हो गई पहचान। न रूठो रूठो न रूठो न रूठो मेरी जान, किसी बहाने आज तेरी मेरी हो गई पहचान।
1: दिलीप जी, एडिटिंग की बात हम कर रहे हैं। एक जमाना था जब फिल्में रील पर बनती थी, निगेटिव रील हुआ करता था
2: जी, जी।
1: और वो फुटेज आपके पास आता था, आप उसको एडिट करते थे। अब जमाना बदल गया है, सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। शूटिंग जो कैमरे भी जो है वो डिजिटल कैमरे हैं
2: जी सर।
1: तो शूटिंग जो है उसमें डेटा के रूप में वो शूटिंग कैद हो जाती है और बाद में उसकी एडिटिंग भी उसी तरह से होती है कंप्यूटर पे। ये जो फासला है रील से डिजिटल कैमरे तक का, आपको भी ये सीखना पड़ा होगा?
2: नहीं सर, हमारे पास क्या है कि मेरा क्या हुआ कि मेरे जो प्रोड्यूसर जितने भी है,
1: हाँ,
2: प्रोड्यूसर डायरेक्टर जितने में हम पर डिपेंड रहते, डिपेंड मतलब वो बोलते थे कि भाई तुझे ये हमने लाके दे दिए,
1: हाँ,
2: तुम काम कर दे, हमको मालूम नहीं।
1: अच्छा,
2: तो क्या पैसा लेना है ले ले, ये कर ले।
1: अच्छा,
2: तो हम लोग स्क्रिप्ट के हिसाब से काम कर लेते थे।
1: अच्छा,
2: अभी क्या हुआ, अभी भी सेम सिस्टम है, खाली अपना कैमरा चेंज हो गया है, ये हो गया है। तो उसमें क्या है कि अभी कैमरे में चिप्स आ गए,
1: हाँ,
2: कैमरे में चिप्स आ गया। जो अभी मैंने भी एक शॉर्ट फिल्म बनाई है
1: जी,
2: वो मैंने बनाई है माताजी के नाम से, मूसा माता के नाम से
1: जी।
2: तो मैंने भी क्या किया, एक कैमरा लिया,
1: अच्छा,
2: उसके अंदर चिप्स आते हैं, फिर वो अपना कंप्यूटर में लेके वो पूरा जो हमने शूट किया है
1: जी,
2: हमको हार्ड डिस्क में कन्वर्ट करके दे दिए उन्होंने, शूट किए उसमें।
1: अच्छा,
2: तो पूरा कन्वर्ट करके देने के बाद वो जो कन्वर्ट किया हुआ है हमारा मटेरियल,
1: हाँ,
2: वो हम फिल्म मशीन आते हैं FFI बोलते हैं,
1: अच्छा,
2: उसमें जाके उसको लोड कर लेते हैं,
1: अच्छा,
2: कन्वर्ट कर लेते हैं उसमें, और फिर बाद में उसका एडिटिंग होता है अभी।
1: अच्छा,
2: पहले क्या होता था कि फिल्म पर जब एडिटिंग होती थी,
1: हाँ,
2: तो कैमरा में फूजी कलर, ईस्टमैन कलर, ओलो कलर रील आते थे 400-400 फीट के,
1: हाँ,
2: तो वो रील क्या होता था कि शूट होने के बाद उसको हम डेवलप करके लिए प्रोड्यूसर लैब में भेज देता था। जैसे एक फोटो निकालने के बाद हमारे पास पॉजिटिव आता है, नेगेटिव,
1: हाँ,
2: नेगेटिव चला जाता है लैब में डेवलपिंग के लिए, डेवलप होने के बाद हम उसको जोड़ देते थे।
1: अच्छा,
2: जोड़ के रील बनता था उसका, वो रील हम लैब में देते थे, उसका पॉजिटिव बन के आता था।
1: अच्छा,
2: नेगेटिव उधर ही रहता था,
1: हाँ,
2: पॉजिटिव हमारे पास आने के बाद में हम उसको, उसका एक क्लैप रहता था, 1/2 take 1 ऐसा करके आता था आवाज
1: जी, जी, जी।
2: तो वो आवाज आता था, वो आवाज के साथ में वो जो पिक्चर में आवाज है,
1: हाँ,
2: वो मैच करते थे, तो हमारा पूरा साउंड सिंक में जाता था वो पूरे शॉट।
1: अच्छा,
2: फिर वो क्या सब असेंबल होने के बाद है ना,
1: हाँ,
2: तो वो हमको आगे पीछे का सब काट के जो ओरिजिनल बेस है, जो हमारा डायलॉग है,
1: हाँ,
2: जो सीन की रिक्वायरमेंट है, उतना ही हम पोर्शन रख के बाकी निकाल लेते थे।
1: अच्छा,
2: और उसका फिर रील बनता था, रील बनने के बाद उसमें सब प्रोसेस होता था, बैकग्राउंड म्यूजिक है, इफेक्ट है, सब होता था। फिर वो जैसा रील बनी है उसके हिसाब से नेगेटिव कटिंग होता था उधर
1: जी,
2: तो वो होता

0: अभी सब कंप्यूटर पे हो गया सर।
1: आपने एक फिल्म दीवाना मुझसा नहीं, इसके साउंड एडिटर का भी काम किया है, तो ये साउंड एडिटिंग क्या अलग होती है फिल्मों के एडिटिंग में?
0: पहले क्या होता था सर कि एडिटर बॉस, उसके दो असिस्टेंट रहते थे,
1: जी
0: तो पॉजिटिव हम काट लेते थे। पॉजिटिव मतलब जो हम ना एडिटिंग हो गया,
1: जी
0: उसके बाद में उस वो पिक्चर का, वो पूरा पिक्चर कंप्लीट हो गया, डायरेक्टर ने ओके बोल दिया, प्रोड्यूसर ने ओके बोल दिया, सब हो गया। तो वो पिक्चर में जितने भी कैरेक्टर है, एक एक कैरेक्टर आके डबिंग करते थे, उसका
1: अच्छा
0: डबिंग करते थे, तो उसका ट्रैक आता था जिसको डब ट्रैक बोलते थे हम, वो आता था। फिर उसमें कुछ इफेक्ट रहते थे,
1: अच्छा
0: ये डबिंग वाला तो पोर्शन हो गया, कैरेक्टर आपका जो आर्टिस्ट है वो डब करते थे, सब आर्टिस्ट उसमें 20 हो, 25 हो, कोई भी हो,
1: अच्छा अच्छा
0: हीरो हीरोइन, लॉ अपना विलन, हीरोइन की माँ, सब डबिंग करते थे। उसके बाद उसका एक ट्रैक बनता था डायलॉग का।
1: अच्छा
0: फिर दूसरा ये इफेक्ट जैसा होता है ना कि ये चाय का कप रख रहे है और हीरो चलते हुए आ रहा है, टक टक
1: हाँ
0: टक
1: हाँ
0: टक,
1: हाँ
0: ये असेंबल करते थे, असेंबल रिकॉर्ड किया जाता था फिर से उसको
1: अच्छा
0: डबिंग की तरह, और
1: हाँ
0: वो सब डालते थे। जैसा गाड़ी का साउंड है, वो हमारे पास रिकॉर्डिंग ला के देता था, हम काट के उसको डाल देते थे। तो उसका एक ट्रैक बनता था
1: जी,
0: अलग सा, उसमें दो तीन ट्रैक बनने का था, ये एक ट्रैक में है ब्लो, एक में है किक, एक में है बॉडी फॉल,
1: अच्छा
0: ये सब असेंबल होता था। और जो म्यूजिक वाले रहते थे, जैसा बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है, रिकॉर्ड करते थे बैकग्राउंड म्यूजिक हर सीन का,
1: जी
0: उसके अंदर रिएक्शन का अलग वो म्यूजिक लेते थे, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक,
1: अच्छा
0: जैसा ढम एक आवाज आता था बैंक का, पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है उसमें ढम आवाज आता था पूरा, तो अलग देते थे, उसका बनता था। तो ये सब ट्रैक बनते थे, वो एडिटर लोग जो रहते ना उनके असिस्टेंट काम करते थे।
1: जी
0: कोई कोई एडिटर को डबिंग देते थे, वो परफेक्ट मैच करता था जैसा इसमें किया है अपना, उसको डबिंग एडिटर बोलते थे। बहुत लोगों ने नाम दिए, कोई देते नहीं थे।
1: जी
0: जैसा मनोज कुमार के पिक्चर में नाम आता था उमा शंकर नायक,
1: हाँ जी
0: मतलब स्पेशली वो डबिंग के लिए था।
1: जी
0: बहुत सारे लोग आए भी, एक बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए अलग आदमी था। तो ये लोग क्या बराबर काम करते थे वो, और परफेक्ट सिंक, मतलब जो आर्टिस्ट ने बोला है वॉइस टू वॉइस लिप सिंक,
1: जी
0: ये रहता है ना, मैच करके पूरा उसका ट्रैक बनता था पूरा। और म्यूजिक का भी ऐसा होता था, साउंड का, वो सब बोलते थे उसको।
1: जी
0: फॉरेन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहती थी ये चीज़ के,
1: हाँ हाँ
0: तो डबिंग एडिटर अलग, बहुत सारे पिक्चर में आप नाम देखते थे पुराने में, डबिंग एडिटर, इफेक्ट एडिटर, बैकग्राउंड म्यूजिक का एडिटर। इधर क्या होता था कि हमारा जो प्रोड्यूसर के हिसाब से हम काम करते थे,
1: जी
0: तो उसमें हमारा नाम नहीं आता था पहले, मगर ये दीवाना मुस्ता नहीं में क्या किए थे कि सारा काम बॉम्बे में साउंड का हुआ था,
1: अच्छा
0: शूटिंग उधर होती थी, एडिटिंग भी उधर होती थी, कुछ पैच शूटिंग इधर किए थे।
1: जी
0: उसमें मिस्टर परवेश मिर्जा बोल के एक डायलॉग राइटर थे उसके,
1: हाँ
0: उन्होंने हमारे पास आए और बोले कि भाई इसका सारा काम करना है। तो लास्ट में ये हुआ है कि हमने भी काम किया है, एडिटर ने भी काम किया है,
1: हाँ
0: तो उन्होंने बोले क्या करे, तुम्हारा नाम देना है, ये तो आपने पैसे हमने आपको दिए। तो मैंने उसको बोला कि भाई एक काम करो, साउंड एडिटर बोल के नाम दे दो, जो कि
1: अच्छा
0: फॉरेन पिक्चर में आता है।
1: हाँ हाँ
0: जैसे आप शान पिक्चर देखोगे तो उसमें जो साउंड एडिटिंग का काम किया है,
1: हाँ
0: डेविड नाम है, डेविड पॉल
1: अच्छा
0: स्पेशली नाम आता था उसका साउंड एडिटिंग, तो वो हम देखे थे। तो हमने बोले यार हमारा भी नाम दे दो, और पर्दे पर हमारा नाम आया है तो नाम तो देखो, मेरा नाम आया है तो मेरे फैमिली खुश हो जाएंगे,
1: जी
0: नाम
1: जी
0: से कुछ नहीं, मगर क्या है कि लोग भी जानते थे कि
1: हाँ
0: भाई, जैसा अभी कोई आया हमारे दोस्तों को कहते थे यार तेरी पिक्चर लगी है उधर, तेरा नाम देख लिया हमने। मुझे सबसे ज्यादा फेमस मैं हो गया मैंने प्यार किया से,
1: अच्छा
0: तो उसमें मेरा चीफ असिस्टेंट एडिटर नाम दिए थे।
1: जी,
0: तो हमारा औरंगाबाद में पिक्चर लगी थी अजंता थिएटर में,
1: हाँ
0: और हमारा जो कॉलेज थे, मैं जहाँ पर पढ़ता था
1: अच्छा
0: उसके कुछ लोग उधर पढ़ते थे,
1: हाँ
0: और लातूर में रमा में पिक्चर लगी थी। तो उधर क्या हुआ था कि फिल्म लाइन में हम दो ही आदमी थे, मेरा भाई था 62 में आया था, मैं 77 में, उसके बाद बहुत आ गए उधर मराठवाड़ा से।
1: हाँ
0: तो जितने भी मेरे प्रोफेसर वगैरह सब थे, कॉलेज के फ्रेंड थे, वो
1: जी
0: पिक्चर देख रहे थे,
1: हाँ
0: उन्होंने मेरा नाम देखे, थिएटर वाला खुद गया भागते हुए मेरे मम्मी के पास में, और
1: हाँ
0: बोला मम्मी को कि भाई आज मतलब मेरे जो प्रोफेसर थे, जो दोस्त लोग थे, उन्होंने बोला कि भाई हमको खुशी हो गई कि
1: वाह
0: एक छोटे से कस्बे का लड़का, मतलब ज़्यादा एजुकेटर पढ़ा नहीं है,
1: हाँ जी
0: मतलब उधर का एजुकेशन अलग है, बॉम्बे का अलग है, तो इतना बड़ा पिक्चर में काम किया, वो भी 100-100 फीट के उधर ये रहते थे स्क्रीन रहते थे,
1: हाँ
0: 200-300-400 फीट के बड़े बड़े बड़े बड़े थिएटर रहते थे, उन्होंने नाम पढ़ लिए भागते हुए गए।
1: हाँ
0: फिर उसके बाद जो भी पिक्चर में काम करता था वो घर में जाके बोलते थे, अरे अपने दिलीप का नाम है,
1: जी
0: चलो पिक्चर, हमको
1: जी
0: फ्री में पिक्चर रहती थी उसमें।
1: जी जी तो ये आपके गांव के लोग, आपके घर के लोग, आपके साथ पढ़ने वाले लोग, इनके लिए आप कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे?
0: सर गाने तो अपना भंडार है, हिंदुस्तान में म्यूजिक का भंडार है, अभी एक एक चुने तो बहुत ये हो जाएगा,
1: बिल्कुल,
0: मगर उसका एक गाना ही मैं फिर से सुनाना चाहूंगा, मैंने प्यार किया का, जो कि बिरहा गीत है, कहे तो से सजना वो तोरी उमरिया, ऐसा गाना है।
1: हाँ जी,
0: वो उन्होंने शारदा सिन्हा ने गाया था, वो इसकी लोक गायिका है बिहार की।
1: जी जी जी,
0: बहुत बढ़िया गाना था उसके पीछे।
1: आइए सुनते हैं।

0: जैसे जैसे दिलीप जी आपका करियर आगे बढ़ा और नई फिल्में भी आप करने लगे, आपने मराठी में फिल्में की हैं, रीजनल फिल्मों की एडिटिंग और हिंदी फिल्मों की एडिटिंग, इसमें कुछ फर्क महसूस करते हैं आप?
1: मैंने तो सर एक पिक्चर किया था, बकला नाम था उसका, छत्तीसगढ़ी।
0: अच्छा,
1: छत्तीसगढ़ी पिक्चर किया था। अच्छा, रीजनल पिक्चर में इसमें क्या रहता है, बहुत सारा फर्क रहता है। फर्क क्या रहता है?
0: हाँ,
1: कि ये हिंदी पिक्चर जो है उसका बिग कैनवस है
0: जी,
1: इंटरनेशनल लेवल पर है।
0: जी जी
1: मतलब आज जो हम इधर देखते हैं फॉरेन में भी हमारे लोग देखते हैं,
0: जी,
1: मगर जो रीजनल पिक्चर रहते हैं ना, पर्टिकुलर वो स्टेट का रहता है। जैसा भोजपुरी है अपना, ज़्यादा से ज़्यादा यूपी बिहार, जैसा बंगाली पिक्चर है बंगाल, और क्या बोलते हैं अपना छत्तीसगढ़ी। मगर रीजनल पिक्चर में टॉप के दो तीन टेरिटरी है जो कि तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, वो हिंदी के लेवल के पिक्चर बनाते हैं, उनका बजटिंग हिंदी के बराबर रहता है। मगर ये पार्ट, ये दो टेरिटरी छोड़कर, मतलब तमिल पिक्चर और तेलुगु पिक्चर छोड़कर,
0: हाँ जी,
1: बाकी सबका क्या है, लिमिट रहता है, क्योंकि तो उनका एग्जीबिशन ज्यादा नहीं रहता है ना।
0: हाँ जी,
1: जो कि हिंदी पिक्चर में क्या रहता है कि 10 टेरिटरी है, पूरा बिक जाता है, इंटरनेशनल लेवल मार्केट भी है उनका। मगर जो अपनी रीजनल पिक्चर रहती है वो लिमिटेड उसी स्टेट के लिए रहता है।
0: हाँ,
1: अभी भोजपुरी है, अभी भोजपुरी तो सब जगह पर जाता है, पंजाबी में जाता है, सब जगह पर जाता था, मगर ज़्यादातर वो एक उनका स्टेट के उस पर रहता है, मतलब एक क्षत्रिय भाषा रहती है।
0: अच्छा,
1: और उनका पर्टिकुलर वो स्टेट में ही ज़्यादा चलता है, तो उनका क्या रहता है कि एक लिमिटेशन रहता है कि भाई हमको ऐसा करना है, इतने में करना है, ऐसा करना है।
0: अच्छा,
1: तो उनका क्या रहता है कि फ़र्क ये रहता है कि उनको हमको फास्ट काम करके देना पड़ता है, फास्ट काम के, चलो भाई हमको 20 दिन में, वो जैसा पिक्चर कर लेते तो वो डबिंग का डेट लेके आ जाते हैं, कभी कभी मिक्सिंग का डेट, रिलीज डेट फिक्स रहता है उनका, तो हमको चेस करना पड़ता है, तो उनका काम हमको बहुत जल्दी फास्ट करना पड़ता है।
0: अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में हमने देखा है कि बहुत से एडिटर, पहले एडिटर जो थे बाद में निर्देशक बन गए, बहुत से सिनेमाटोग्राफर बाद में निर्देशक भी बने हैं। आपका भविष्य में ऐसा कोई विचार है फिल्म निर्देशक?
1: अभी क्या है कि सर वो क्या रहता है कि अपनी लाइन जो है, या सभी का ही है, जो विधाता ने लिखा है, जो आपका लक है
0: जी,
1: उतना ही आदमी, हम मेहनत तो सब कर लेते हैं।
0: हाँ जी,
1: मेहनत तो बहुत लोग कर लेते हैं। अभी बहुत लोगों को क्या हुआ कि उस टाइम में पर्टिकुलर प्रोडक्शन मिल गया, प्रोड्यूसर मिल गए,
0: जी,
1: जैसा हमारे मिस्टर राजकुमार हिरानी है, उनको बिग प्रोडक्शन मिल गया, उनके कॉन्सेप्ट रहते हैं, कॉन्सेप्ट रहते तो निशिकांत मुखर्जी तो पूरा आर्ट में थे, इससे काम करते थे, उनके साथ में थे, वो तो उतना अपना चला उनका। ऋषिकेश मुखर्जी तो आर्ट फिल्म से तरफ ज़रा झुकाव था उनका
0: जी,
1: और बनाते थे अच्छे पिक्चरें। जैसे डेविड धवन है, कमर्शियल में सक्सेस हो गए, यन चंद्रा तो एक दो पिक्चर के बाद ही टॉप में पहुंच गए। तो नसीब होता है। अभी क्या पड़ाव ऐसा हुआ है कि अभी एक तो उम्र हो गई है, तब भी हमने कोशिश किया है
0: जी,
1: कि जो हमारे राजस्थान में मेरी कुलदेवी है, जो दरक परिवार,
0: अच्छा,
1: दरक परिवार नहीं, जो हम महेश्वरी मारवाड़ी है, मतलब महाराष्ट्र से है, मराठी हमको आती है, घर में लैंग्वेज हम बोलते हैं, तो हमने, हमारी कुलदेवी है ये मूसा माता
0: जी,
1: तो हमारे बचपन में हमारे माँ बाप ने बोले थे, हमारा दादा दादी, कुलदेवी ढूंढो। तो हम राजस्थान बहुत बार गए मगर उसमें हमको किधर नहीं मिली वो।
0: अच्छा,
1: तो हम एक दिन, हमारे जो दरक है कोई, उन्होंने बोले हमारे कि उधर मंदिर बन रहा था, हम उधर चले गए, तो उधर मंदिर बन रहा था 2018 में।
0: अच्छा,
1: मूसा माता का तो कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो हम पिछले साल 2021 में मंदिर बन गया
0: जी जी
1: तो मैं उधर गया था 2022 में अप्रैल में, मंदिर के दर्शन किया मैं, माता जी का सहपरिवार गया था, तो उसमें मुझे ऐसी कल्पना आई कि माता जी के लिए एक भक्ति गीत बनाते हैं।
0: अच्छा,
1: तो वहाँ से कल्पना आई, मगर वो अभी क्या था कि सब चीज़ें असेंबल करना,
0: हाँ,
1: पॉसिबिलिटी नहीं थी
0: जी।
1: हम म्यूजिक डायरेक्टर को अप्रोच किए कि भाई ऐसा ऐसा है, तो अभी क्या था कि माता जी, मतलब अभी भी बना था, जैसा दूसरे की हिस्ट्री है वैसा कोई माता जी का हिस्ट्री नहीं था। तो हमने क्या किया, सारा थोड़ा बहुत माहिती लेकर, मतलब जो भी है अपना, सब उनका सब हमने इकट्ठा किया
0: जी,
1: उनके बारे में
0: जानकारी
1: ली
0: जी,
1: और वो उस पर हमने एक गीत बनाया।
0: अच्छा,
1: गीत बना के मैंने उसको फिल्म फॉर्मेट पर शूट किया, रेड एमएक्स पर शूट किया
0: जी,
1: और जो कि अभी मैं नवरात्रि में रिलीज किया है। और वो शॉर्ट फिल्म है।
0: अच्छा,
1: तो वो हमने किया है। और अभी मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा ही सिलसिला चलता रहे। ये इसमें मैंने प्रोड्यूस खुद किया है, डायरेक्ट खुद किए।
0: अच्छा,
1: उसमें बहुत लोगों का सहभाग है, डांस मास्टर का, कैमरामैन ने अच्छा काम किया। तो वो गीत हमने बना के रिलीज कर दिया जो चल रहा है, कि हम चाहते हैं कि भाई दूरदर्शन पर भी आ जाए। तो हम उसको कोशिश में लगे कि उसका जरा अच्छे लेवल में, अच्छे कैनवास में उसको ये करके ब्रॉडकास्ट करें, बनाए हैं, और ये करते रहेंगे
0: जी।
1: अभी क्या है कि हालात ऐसा हो गया है फिल्म लाइन का,
0: हाँ जी,
1: तो आजकल मतलब जो कॉमन मैन है,
0: हाँ,
1: ये कॉमन डायरेक्टर है, पिक्चर नहीं बना सकता।
0: जी जी जी,
1: मतलब इतना कमर्शियलाइज हो गया है कि एक तो बजटिंग बहुत हो गया है। पहले क्या होता था कि मराठी पिक्चर में भी हम पिक्चर बना सकते थे, 30-40 लाख रुपए है तो पिक्चर बना सकते थे।
0: अच्छा,
1: अभी मराठी में भी करोड़ों रुपए लग रहे, क्यों? तो लोगों का सोच अलग हो गया
0: जी,
1: कैनवास अलग हो गया, लोग सोचते, थिंकिंग बड़ी हो गई।
0: हाँ,
1: उसके अंदर भी जो जैसा मैंने बोला ना, डेडिया के पर आंचलिक उपन्यास था
0: जी,
1: एक पिक्चर आई थी सौराट, तो वो पिक्चर में 100 करोड़ का धंधा किया है वो पिक्चर, ये शोलापुर के पास में यरमाड़ा के करमाड़ा कोई गांव है,
0: हाँ,
1: उसमें शूट किया है वो पिक्चर में। एक कहानी इतनी सिमिट की है उसने,
0: हाँ,
1: कि एक ही जगह पर शूट किया है। अभी मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ
0: जी,
1: गांव में तो जा नहीं सकता मैं, मगर वो पिक्चर देखने का मुझे लगा कि मैं गांव में आके बैठ के देख लिया। तो क्या रहता है कि अभी इम्पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गया।
0: अच्छा,
1: क्यों? तो ट्रेड पूरा डिफरेंट चेंज हो गया पूरा। पहले क्या होता था कि ABC पिक्चर बनती थी, ए में अमिताभ बच्चन, जितेंद्र बहुत थे, बी में फिर उसके नीचे वाले थे, सी में मतलब छोटे मोटे थे, पिक्चरें बनती थी, पिक्चर बिक जाती थी, हर पिक्चर छोटे में पिक्चर बिक जाती थी। मगर अभी क्या हुआ, पिक्चर का मार्केटिंग खत्म हो गया, अभी कॉरपोरेट के हाथ में है सब, बड़ी बड़ी कंपनियां ने ये कर लिया है। तो ये दौरान तो मैं बना ही नहीं सकता ना सोच सकता। सबसे पहले डेविड धवन वगैरह भी क्या थे, इनका आर्टिस्ट अप्रोच बहुत था।
0: अच्छा जी,
1: जैसा संजय दत्त है, गोविंदा ने इनको सपोर्ट किया, गोविंदा ने बहुत हेल्प किया, प्रोड्यूसर ने पहला नीलानी ने ये किया
0: जी।
1: और वो टाइम का माहौल अच्छा था, थिएटर बॉम्बे के अंदर 200-300 थिएटर थे,
0: अच्छा
1: पिक्चर चलती थी। अभी थिएटर खत्म हो गए पूरे,
0: हाँ हाँ,
1: तो अभी तो क्या इम्पॉसिबल लग रहा है, माहौल ऐसा है।
0: अब कार्यक्रम में हम आपकी तरफ से एक और गीत सुनना चाहेंगे, कौन सा गीत सुनवाएंगे आप श्रोताओं को?
1: मेरा एक गीत था, मतलब आदमी हमेशा आपके वाइफ को तो चाहता ही है खुद के, मतलब अर्धांगिनी है जो,
0: हाँ,
1: मगर उसके पहले आदमी जो कॉलेज डे रहता है,
0: हाँ,
1: उसमें मैं एक जगह पर बैठा था टेरेस के ऊपर, और हमारे उस टाइम में तो फॉरवर्ड नहीं था कॉलेज के टाइम में
0: जी,
1: उधर तो हम किसी को देखे तो 4-5 आदमी आते आते थे, बोले क्यों देखा उसको। तो मैं एक जगह पर खड़ा था और एक बहुत खूबसूरत लड़की सामने बैठी थी, और उसके बाल जो है ना बार बार वो आ रहे थे चेहरे पर।
0: अच्छा,
1: तो कॉलेज में मैं गाने भी गाता था, कॉलेज में मुझे सर्टिफिकेट मिला, तो मैंने ऐसा ही गाना गाया, चेहरे पे गिरी जुल्फे कहे दो तो हटा दूं मैं, गुस्ताखी माँ, बोलके मैं भागते हुए नीचे आ गया। मुझे लगा कि भाई उसके कोई आ जाएंगे और पकड़ के मुझे पीटेंगे।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो वो हुआ ही ऐसा, मैं बैठा हुआ था कि वो लड़की आ गई और साथ में दो लड़कियां थे और एक लड़का था, तो मैं देखा उसको, मैं बोला मेरे से गलती हो गया क्या कुछ, नहीं बोले, वो गाना तुमने अधूरा गाया, पूरा गाना सुना।
0: क्या बात है।

0: दिलीप दरक जी, आज फिल्म एडिटिंग के बारे में, फिल्म के संपादन के बारे में आपसे बहुत विस्तार से बातचीत हुई और अपने अनुभव आपने हमसे साझा किए, हमारे श्रोताओं को बताएं। आपके यहाँ आने के लिए विविध भारती परिवार की ओर से, हमारे श्रोताओं की ओर से हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको इतना नवाजा, मतलब ढूंढ के निकाला, और बहुत मैं आज खुश नसीब हूँ कि इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा स्वागत मेरा आज तक किसी ने नहीं किया है। जो हम बचपन से सुनते थे विविध भारती, जैसा रेडियो ऑन होता तो भागते हुए जाते थे, चलो ये गाना आने वाला है, उसमें पहले बोला जाता था कि अभी ये गीत सुनिए, एक गीत के बोलिए, इसको म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन है, लिरिक्स ये है, ये गाना है।
0: अच्छा,
1: तो हम सुनते थे पूरा। वो स्टूडियो में बैठो कि मैं कभी रेडियो पर सुना करता था नाम विविध भारती सा, आज मैं ये स्टूडियो में आया, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मन पूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूँगा कि आपका ये कारवा जो चल रहा है, हम पैदा होने से पहले विविध भारती है, अभी मरने के बाद भी रहेगा विविध भारती, हम तो आते जाते रहेंगे। तो बहुत बढ़िया, हमको आनंद हो गया और बहुत खुशी हो गई कि आपने हमारा इतना बहुत बढ़िया स्वागत किया। मैं तहे दिल से, मतलब मेरे अंतर आत्मा से आपका शुक्रिया।

0: अदा करता हूँ और आपका
1: बहुत।
0: आभार मानता हूँ।
2: अभी आप सुन रहे थे फिल्म एडिटर दिलीप दरक से जयंत पात्रिकर की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: चिन्मय विद्यालय इंग्राजी माध्यम छेंड राउरकेला स्वतंत्र आदर्श स्वतंत्र चिंताधारा और स्वतंत्र शिक्षा प्रदान करुथिबा एक अनन्य शिक्षानुष्ठान चिन्मय सेवा ट्रस्ट द्वारा परिचालित स्वामी चिन्मयानंदन आदर्श से अनुप्राणित आईसीएसई बोर्ड स्वीकृति प्राप्त 34वें वर्ष रे पदार्पण करथिबा उत्तम मनुष्य गढ़ुथिबा एक अग्रणी शिक्षानुष्ठान जेउठी सर्वांगीन शिक्षा उचित मार्गदर्शन सह पिलांक सुरक्षा सुस्थता और सर्वांगीन विकास को दिया जाए प्राथमिकता शत प्रतिशत पास हार सह श्रेष्ठ फलाफल हेउचे जहार अनन्य सफलता जेउठी 2026-27 शिक्षाबर्ष पई केजी श्रेणी रु नवम श्रेणी एवं विशेष भाव रे एकादश विज्ञान और वाणिज्य श्रेणी पर्यंत चलीचे एबे नामलेखा एवं समस्त श्रेणी रे सीमित स्थान रहीचे ताहाले आउ डेरी काहे कि केजी रु नवम और एकादश श्रेणी रे नामलेखाइबा पई विद्यालय रो कार्यालय सह आज ही जोगाजोग करंतु समय सकाळ 8टा रु दिन 11टा मोबाइल नंबर 7873819988 एवं 9437109907 आउ थरे कहि दउछि मोबाइल नंबर 7873819988 एवं 9437109907 चिन्मय विद्यालय सफलतार अनन्य शिक्षालय
1: परवर्ती हिंदी भक्ति गीत कंठदान करिसेंति सुरेश वाडकर रचना हेमलता दीपक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की दो सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। शाम 3 बजे तक 72.43% मतदान की खबर है। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा है कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता है।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज गुजरात के सूरत में संपन्न हो गया। इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं को अवसरों में बदलना और आत्मनिर्भर विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी अपने लोकप्रिय फिल्मी गीतों और विज्ञापनों के लिए देशभर में जाने जाते हैं। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मक शैली के साथ काम करेगा। श्री प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद हो गए जबकि एक जवान घायल हो गया। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेठिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हो गई थी। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस महीने भीषण गर्मी की आशंका से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश के कुछ क्षेत्रों में तापमान सामान्य से ज्यादा रहने और लू चलने की आशंका है। श्री सिंह ने कहा कि मई के दूसरे और चौथे सप्ताह में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रह सकता है। उत्तर पश्चिम, मध्य और पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों के साथ साथ पूर्वी तट पर भी लू की स्थिति रहने का अनुमान है। हालांकि पहले और तीसरे सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ और बारिश तथा बादलों के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस से। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया था। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: सुनिले हिंदी रे संवाद आकाशवाणी दिल्ली रो कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी राउरकेला केन्द्र। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାର କରାଯାଉଛି ଏଫ୍ଏମ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ 102.6 ମେଗାହର୍ଜ ଯୋଗେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ଆଜିର ଏବଂ ଆଗାମୀକାଲିର ପ୍ରଚାର ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ କେତୋଟି ସୂଚନା। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା ଚଳିତ ଅଧିବେଶନ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆମର ଏହି ସୂଚନା ପରେ ପରେ 6:10 ଏବଂ 6:30 ଶୁଣିବେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ। 6:55 ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ। 7:25 ଜିଲ୍ଲା ହାଲଚାଲ କ୍ରମରେ ଆଜି ଶୁଣିବେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହାଲଚାଲ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। 7:30 ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନାନୀ, ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। 8:00 ଶୁଣିବେ ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସିନେ ସଙ୍ଗୀତ। 9:15 ରହିଛି ବିବିଧ ଭାରତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। 10:00 ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଗୀତ ଓ ଗଜଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଜଲ ଗାୟକ ହରିହରନଙ୍କ କଣ୍ଠରେ କେତୋଟି ଗଜଲ ଏବଂ 10:30 ଶୁଣିବେ ଲୋକଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଘନଶ୍ୟାମ ସା ଓ ସାଥୀ। ପରିଶେଷରେ 11:00 ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରହିଛି ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରଚାର ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ କେତୋଟି ସୂଚନା। ଆକାଶବାଣୀ ରାଉରକେଲା।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों नमस्कार, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है सत्यजीत रे की स्मृति को। सत्यजीत रे का शुमार भारत के महानतम फिल्मकारों में होता है। आज पश्चिमी दुनिया में अगर भारतीय सिनेमा अपनी कोई पहचान कायम कर पाया है या अपना परचम बुलंद कर पाया है तो इसका सीधा श्रेय जाता है सत्यजीत रे को, जिनकी पहली ही फिल्म पाथेर पांचाली सन 1956 में कैंस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी। सत्यजीत रे का सिनेमा सरोकारों का सिनेमा था। वहां पॉपुलर सिनेमा की कोरी चमक दमक नहीं थी, वहां समस्याओं से जूझते भारतीय समाज की चिंता थी, वहां भूख और गरीबी के खिलाफ रचनात्मक हस्तक्षेप था, वहां सामाजिक अन्याय की बातें थीं, सदियों से शोषित होती चली आई नारी की पीड़ा को पर्दे पर साकार रूप देने की आकांक्षा थी सत्यजीत रे के सिनेमा में।

मुंबई सिनेमा की मार धाड़, उसका नाच गाना और उसका स्वप्निल संसार एक छोर पर है और दूसरे छोर पर है सत्यजीत रे का यथार्थवादी सिनेमा। आइए एक नजर डालें सत्यजीत रे की सिने यात्रा पर। सत्यजीत रे का जन्म 2 मई 1921 को कलकत्ता के एक सांस्कृतिक परिवार में हुआ था। फिल्मों का शौक सत्यजीत रे को बचपन में ही लग गया था। उन्हें वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक का शौक भी लग गया और पेंटिंग का भी। अपनी मां के कहने पर सत्यजीत रे सन 1940 में शांति निकेतन आ गए। वे चित्रकला के छात्र बनकर यहां आए थे।

सन 1942 में वे शांति निकेतन छोड़कर अपने घर चले आए। सन 1943 सत्यजीत रे ने डीजे कीमर नामक एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जूनियर विजुलाइजर का काम शुरू किया। 13 साल तक सत्यजीत रे इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी में बने रहे। इसी दौरान सत्यजीत रे ने शौकिया तौर पर पटकथाएं लिखना शुरू किया। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी घोरे बाईरे पर आधारित पटकथा इन्हीं दिनों सत्यजीत रे ने लिखी थी। उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने सन 1950 में उन्हें लंदन हेडक्वार्टर भेज दिया। 6 महीने के लंदन प्रवास में सत्यजीत रे ने विक्टोरिया देसीका की फिल्म बाइसाइकिल थीफ देखी और इसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब सत्यजीत रे ने यह तय कर लिया था कि वे शौकिया कलाकारों को लेकर एक यथार्थवादी फिल्म जरूर बनाएंगे। उन्होंने विभूति भूषण बंदोपाध्याय की कृति पाथेर पांचाली के अधिकार खरीद लिए। तलाश थी एक फाइनेंसर की। प्रोड्यूसरों को प्रभावित करने के लिए सत्यजीत रे अपने साथ एक नोटबुक लेकर जाते थे जिसमें पाथेर पांचाली के कुछ अहम दृश्यों के रेखा चित्र बनाए हुए थे। 2 साल तक सत्यजीत रे प्रोड्यूसरों की तलाश में भटकते रहे लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार निराश होकर सत्यजीत रे ने अपनी जीवन बीमा पॉलिसी गिरवी रख दी। कुछ पैसा मित्रों और रिश्तेदारों से मिला और 27 अक्टूबर 1952 को रविवार यानी दफ्तर की छुट्टी के दिन पाथेर पांचाली का पहला दृश्य फिल्माया गया। जैसा कि हमने आपको बताया 27 अक्टूबर 1952 को सत्यजीत रे ने फिल्म पाथेर पांचाली का पहला दृश्य फिल्माया था। ये वो दृश्य है जिसमें अपू दुर्गा के पीछे काश के खेत में से भागता है। काश एक बहुत ऊंची सी घास होती है। ये दोनों लोग खेतों में से भागते हुए जा रहे हैं पहली बार गांव के नजदीक से गुजरती छुप छुप रेलगाड़ी को देखने के लिए। सत्यजीत रे को ये लगा था कि ये दृश्य बहुत ही प्रभावी होगा और इसके जरिए उन्हें पाथेर पांचाली के प्रोड्यूसर मिल जाएंगे, यानी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो इस फिल्म में पैसा लगाने को तैयार हो जाए। लेकिन ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत आसान नहीं था। अपू की भूमिका के लिए कलाकार को ढूंढना सत्यजीत रे के लिए बहुत मुश्किल था। उन्होंने समाचार पत्रों में विज्ञापन छापे, सैकड़ों लोग इसके लिए ऑडिशन देने के लिए आए, लेकिन आखिरकार सत्यजीत रे को दक्षिण कलकत्ता के एक फ्लैट के पास बिजोया खेलता हुआ दिख गया और बस उन्हें लगा कि यही है उनका अपू। इसी दौरान बिमल रॉय ने सलील चौधरी की कहानी पर बनाई अपनी यथार्थवादी फिल्म 2 बीघा जमीन, जिसे सन 1954 में कैंस फिल्म फेस्टिवल में ग्रां प्री अवार्ड मिला।

0: दो बीघा जमीन और कुरुसावा की रोशोमन ने यथार्थवादी सिनेमा पर सत्यजीत रे का विश्वास प्रबल कर दिया। बहुत मुश्किलों से बनी फिल्म पाथेर पांचाली आखिरकार 26 अगस्त को कलकत्ता में प्रदर्शित हुई और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाब रही। सन 1955 में केन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म ने स्पेशल जूरी अवार्ड जीता और सत्यजीत रे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्मकार बन गए।
1: सोनार मानुष भासछे रसे, सोनार मानुष भासछे रसे।
0: पाथेर पांचाली की कामयाबी ने सत्यजीत रे को नई ऊर्जा से भर दिया। पाथेर पांचाली, अपराजितो और अपूर संसार, ये तीनों अपू त्रयी के नाम से विख्यात हैं। सन 1981 तक हर साल सत्यजीत रे अपनी एक फिल्म जरूर लेकर आए। सत्यजीत रे की फिल्म यात्रा सिने इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी हुई है। सन 1958 में आई परश पाथर, इसी साल आई जलसाघर, 1960 देवी, सन 1961 तीन कन्या, सन 1962 कंचनजंगा, सन 1963 महानगर, 1964 में आई चारुलता, 1968 में आई गोपीगाइन बाघबाइन, सन 1977 में आई उनकी हिंदी फीचर फिल्म शतरंज के खिलाड़ी। प्रेमचंद की कहानी पर उन्होंने अपनी एक टेलीफिल्म भी बनाई सदगति, सन 1984 घरे बाईरे, सन 1989 गणशत्रु। 1984 के बाद कुछ साल सत्यजीत रे अपनी बीमारी की वजह से सिनेमा से दूर रहे। सन 1989 में उन्होंने इप्सन की कृति एनिमी ऑफ द पीपल पर अपनी फिल्म बनाई गणशत्रु, इसके अगले वर्ष शाखा प्रशाखा और सन 1991 में आई सत्यजीत रे की अंतिम फिल्म आगंतुक। सत्यजीत रे ने अपनी अधिकांश फिल्में साहित्यिक कृतियों पर बनाई थीं। सन 1992 में सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर अवार्ड मिला था। इसी साल उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म का लेखन जानी मानी लेखिका शमा जैदी ने चर्चित लेखक जावेद सिद्दीकी के साथ किया था। मैंने शमा जैदी और जावेद सिद्दीकी दोनों से बातें की। शमा जैदी ने हमें बताया,
2: बंसी चंद्रगुप्त उनके आर्ट डायरेक्टर थे
0: जी,
2: तो जावेद और मेरे वो बहुत दोस्त थे, वो तो उनके यहाँ हम जाके
0: जावेद सिद्दीकी साहब जिन्होंने शतरंज के खिलाड़ी में आपके
2: तो
0: साथ
2: मैं उनके साथ जाती थी, तो उन्होंने कहा कि तुम चलो, सत्यजीत रे आए हुए फिल्म बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बैकग्राउंड मटेरियल मेरे लिए जमा करो, तो काफी मैंने इधर उधर से उनको मटेरियल भी दिया उसके लिए
0: जी,
2: तो उन्होंने कहा कि तुम डायलॉग भी लिख लो, तो मैंने कहा ऐसी फंसी उर्दू शायद मैं नहीं लिख पाऊंगी, मगर मेरे एक दोस्त हैं मैं बात करती हूँ उनसे, तो मैंने जावेद से कहा, जावेद ने कहा अरे मैंने कभी फिल्म के लिए नहीं लिखा है,
0: उन दिनों वो जर्नलिस्ट थे।
2: हाँ जर्नलिस्ट थे, मैंने कहा नहीं नहीं तुम लिखोगे।
3: अब ये शतरंज भी कंपनी की अमलदारी में आ गई क्या? खूब खूब। वैसे मैंने ला मार्टिनेर के कॉलिन साहब से सीखी है, मैं उन्हें उर्दू फारसी पढ़ाने जाता हूँ ना।
4: अच्छा अच्छा मुंशी साहब, ये दोनों वजहों में फर्क क्या है?
3: नवाज साहब को ज्यादा फर्क नहीं है, या आपका वजीर जो है वो अंग्रेजी खेल में क्वीन यानी मलिका कहलाता है, और दोनों आमने सामने रहती हैं, और प्यादा पहली चाल में दो घर चल सकता है।
4: दो घर?
3: जी हाँ दो घर, और मुखालिफ सिरे पर पहुंच जाए तो मलिका बन जाता है।
4: कमाल करते हैं ये अंग्रेज भी। मगर इन तब्दीलियों से फायदा?
3: बाजी झटपट खत्म हो जाती है।
4: क्यों, उन्हें हमारा खेल सुस्त लगता है क्या?
3: जी हाँ, उन्हें हमारी सवारियां भी सुस्त लगती हैं, इसीलिए तो रेलगाड़ियां आने वाली है।
4: और तार?
3: जी हाँ। तार घर तो कब के आ गए, लेकिन मुझे एक आंख भी नहीं भाते।
4: क्यों?
3: बुरी खबरें जो फौरन पहुंच जाती हैं।
4: बुरी खबरें?
3: आपने कुछ सुना नहीं?
5: हम सुनते उनते कुछ नहीं मुंशी साहब,
3: खेलते हैं। मीर साहब, हंसने से बला नहीं टलेगी। सुना है कंपनी बहादुर अवध पे कब्जा करने वाली है। यही खबर देने को तो हाजिर हुआ था मैं।
6: मुंशी साहब, आप अंग्रेजी वजह की शतरंज खेलते हैं फिर भी अंग्रेजों की चाल नहीं समझ सके। अरे भाई, ये नेपाल में लड़ाई, पंजाब में लड़ाई, अफगानिस्तान में लड़ाई, इन लड़ाइयों के लिए दरकार है पैसा, और कंपनी ठहरी कंगाल। पैसा लाए कहां से?

0: ये हैं चर्चित लेखक जावेद सिद्दीकी, जो सत्यजीत रे से जुड़ी निजी यादें हमारे साथ बांट रहे हैं।
1: भाई, शतरंज के खिलाड़ी की याद मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट याद है। उसकी वजह यह है कि शतरंज के खिलाड़ी वो फिल्म है जहां से मेरे फिल्मी सफर का आगाज होता है।
0: बिल्कुल,
1: उससे पहले मैंने कोई फिल्म लिखी नहीं थी, मेरा कोई इरादा भी नहीं था, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि मैंने जर्नलिज्म छोड़ दिया था। और उस जमाने में मेरी दोस्त शमा जैदी ने मुझसे कहा कि सत्यजीत रे तुमसे मिलना चाहते हैं। और पहले तो मैं समझा कि ये मजाक हो रहा है, लेकिन ये कि फिर मैं सत्यजीत रे से मिलने के लिए गया, जो बॉम्बे में एक होटल में ठहरे हुए थे। बड़ा मैं हैज बैज में था कि मतलब पता नहीं ये क्या हो रहा है, क्या है। लेकिन मैंने जब फोन किया तो एक बड़ी गूंजती हुई आवाज आई, क्योंकि सत्यजीत रे की आवाज जिसे इंग्लिश में बैरिटोन कहते हैं,
0: बिल्कुल
1: वो वैसी एक आवाज थी, बड़ी इम्प्रेसिव
0: जी।
1: और उन्होंने कहा कि कम आप। तो मैं चला गया और उन्होंने वो खुद दरवाजा खोला, क्योंकि वो कमरे में अकेले थे
0: जी।
1: पहली मर्तबा मैंने इतना लंबा बंगाली देखा बाल वो कोई 6 फीट से मेरा ख्याल है 1-2 इंच ऊपर ही थे
0: जी हाँ।
1: और एक बड़ी प्लीजिंग पर्सनैलिटी, खादी का कुर्ता पजामा सफेद पहने हुए। और मैंने अपना इंट्रोडक्शन कराया, वो बैठे रहे, मैं उनके सामने बैठ गया। और उनकी एक बड़ी अजीब आदत थी कि वो कोई जब सोचते थे तो कोई चीज चबाया करते थे।
0: अच्छा,
1: कभी वो रुमाल का कोना चबाया करते थे, कभी अपने चश्मे का डंडा चबाया करते थे। तो उनके बेचारे सारे चश्मे जितने भी थे वो सब बहुत जख्मी हालत में, वो अपने चश्मे की डंडी चबाते रहे और वो मुझे देखते रहे कुछ देर तक। और फिर कहने लगे कि अच्छा, उनको एक बात मैं बता दूं यूनुस साहब, कि उन्हें इंग्लिश और बंगला के सिवा कोई जबान नहीं आती थी।
0: और ये फिल्म उनकी पहली और आखिरी हिंदी फिल्म थी।
1: पहली और आखिरी हिंदी फिल्म। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आई एम टोल्ड दैट यू आर ए वेरी गुड शॉर्ट स्टोरी राइटर। मैंने कहा साहब, आई राइट इन उर्दू एंड नोबडी कैन बी ए गुड जज ऑफ हिज ओन वर्क। इफ यू लाइक आई कैन गेट सम ऑफ माय वर्क ट्रांसलेटेड फॉर यू एंड यू कैन हैव ए लुक। तो वो कहने लगे कि नो यंग मैन, आई कैन हैव ए लुक एट यू
0: जी,
1: एंड हियर इज माय स्क्रिप्ट एंड यू आर राइटिंग द डायलॉग।
0: ओहो,
1: तो ये कुल 1.5 मिनट की मुलाकात थी सर। और मतलब वो ऐसी अजीबोगरीब मुलाकात थी कि उसे भूलने का सवाल ही नहीं पैदा होता।
0: बिल्कुल।
1: तो फिर मैं बौखला के फिर मैं भागा हुआ वहां से अपनी दोस्त शमा जैदी के गया और मैंने उनसे पूछा कि भैया ये बताओ डायलॉग कैसे लिखे जाते। तो वहां से सत्यजीत रे, अच्छा जब हमने डायलॉग लिख दिए तो उसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था कि हमने जोश में लिख तो डाले, लेकिन जो लोग बाकी लोग इन्वॉल्व थे, खासतौर से हमारे दोस्त बाद में बहुत ज्यादा बन गए सुरेश जिंदल जो प्रोड्यूसर थे
0: जी,
1: वो बेचारे बहुत घबराए हुए थे, पकड़ लिया है पता नहीं कहाँ से। और उसको इतनी इम्पोर्टेंट फिल्म जिसकी पूरी दुनिया वेट कर रही है, उसके डायलॉग इन्होंने लिखवा लिए। हालांकि उस रेस में दूसरे लोग भी थे, वो जिसे फारसी में कहते हैं ना कुरै फाल बनामे मने दीवाना जदन, कि वो कुरै फाल जो था वो इस दीवाने के नाम। तो बहर हमने वो लिख दिए और सुरेश जिंदल साहब ने जो बम्बई में जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, खासतौर से उर्दू जानने वाले, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और ये वो पता नहीं कौन कौन, उनको बुला के बिठाया और कोई 20 आदमियों की एक महफिल थी जिसमें मैंने वो पढ़ के डायलॉग उनको सुना दी फ्रॉम पहले फ्रेम से आखिरी फ्रेम तक
0: जी।
1: फिर अब सब चुप थे। वो मोमेंट मेरे लिए बड़ा अजीबोगरीब था कि सब चुप बैठे हुए, भाई पता नहीं मैंने पहली बार लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा है। सडनली उनकी बूमिंग वॉइस मुझे सत्यजीत रे की सुनाई दी और वो बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला है जो मैं कभी नहीं भूलता
0: जी,
1: कि I don't know what he has written, but it sounds very good.
0: वाह।
1: उसके बाद की यादें भी बड़ी प्यारी हैं कि जब फिर हम, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने लोग उनके करीब थे वो उन्हें सत्यजीत रे या कुछ ऐसा नहीं कहते थे, या मिस्टर रे नहीं कहते थे, हम लोग उन्हें मानिक दा कहा करते थे।
0: बिल्कुल।
1: जो मानिक उनके घर का नाम था, और बोधी जो उनकी बीवी हैं वो असल में उन्हें मानिक कहा करती थी, तो सभी मानिक दाई कहते थे।

0: कुछ दिनों के बाद फिर मानिक दा का फोन आया, कहने लगे भाई वो तुमने डायलॉग तो लिख दिए और वो बहुत अच्छे भी हैं, मैंने कई लोगों से उनको पढ़वा के तर्जमा करा के देखा और बहुत बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका शीन काफ कौन बताएगा। विल यू बी एबल टू बी द डायलॉग डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म? तो वो गरीबी का जमाना था, मैंने अरे भाई इसे अंधा क्या चाहे दो आंखें, तुम्हें भाग के फौरन कलकत्ता पहुंच गया। अच्छा फिर जब हम वहां पहुंचे तो वहां एक अजीबोगरीब सूरत हाल थी। वहां सूरत हाल ये थी कि वो उनके जो बंगाली असिस्टेंट थे वो कलकत्ते के इंद्रपुरी स्टूडियो में एक लखनऊ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। अब जाहिर है कि वो इसलिए नामुमकिन था तो वो बेचारे किसी लखनऊ से पहले तो खुद वाकिफ नहीं थे, और दूसरी चीज ये कि लखनऊ हो या यूपी को आप अगर इन जनरल कह लें तो वो एक कल्चर है, वो एक मिजाज है, और कल्चर और मिजाज को आप जब तक आप उसे जिए नहीं, आप उसे बरते नहीं, आप उसे महसूस नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे बहुत ही अजीब लगा कि ये तो क्या हो रहा है भाई, ये तो सब सारी की सारी चीज़ें गलत हैं। फिर हमने उसमें दखल अंदाजी की कि साहब ये तलवारें ऐसी नहीं होती थी और कपड़े ऐसे नहीं होते थे और ये चलते ऐसे नहीं थे और ये ऐसे होता था वो ऐसे होता था। फिर हम ढूंढते फिरे कलकत्ते में एक एक चीज़ पुराने ज़माने की, क्योंकि 1857 का माहौल था
1: जी।
0: तो मानिक दा बहुत इम्प्रेस हुए हमारी मेहनत से। और तो आप अगर देखें तो उसमें फिल्म में मेरा टाइटल दो मर्तबा आता है, एक मर्तबा एज एन असिस्टेंट, स्पेशल असिस्टेंट, और दूसरा डायलॉग राइटर।
1: ये बताएं कि जब शतरंज की खिलाड़ी बन रही थी, अब आप उसमें दो तरह से शामिल हो चुके थे, बतौर डायरेक्टर आप उनको कहां किस तरह से पाते हैं?
0: मैं जिस सत्यजीत रे को जानता हूँ, मेरा ख्याल ये है कि वो एक बेहद जहीन, बेहद समझदार और फिल्म को महसूस करके बनाने वाला डायरेक्टर था, और ये बहुत ही अहम बात मेरे लिए थी, और उसकी बहुत सारी मिसालें थीं। एक तो ये कि वो, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि उसके फोटोग्राफर जो थे, सिनेमाटोग्राफर, वो शोमेंदु रॉय थे, लेकिन ये कि कैमरा ऑपरेट मानिकदा खुद करते थे।
1: अरे वाह।
0: हाँ, वो हमेशा खुद करते थे, ज्यादातर काम वो खुद ही करते थे, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक वो खुद स्कोर करते, कंपोज करते थे, एडिटिंग पे वो खुद बैठते थे, और कैमरा ऑपरेट भी खुद करते थे। अक्सर हम लोग में से कोई अगर उनको कोई राय दे देता था तो वो उसको बड़े गौर से सुनते थे और उसको करते भी थे। उनमें वो जो एक गुरूर होता है कि साहब मैं सत्यजीत रे हूँ, तो वो मुझे नहीं दिखाई दिया। और कुछ ऐसी बातें भी थी बड़ी बड़ी ही इंटरेस्टिंग जिन्हें सीखने का हमको मौका मिला। मिसाल के तौर पर ये कि जब मीर का घर बन रहा था सईद जाफरी का, और बंसी चंद्रगुप्त का आर्ट डायरेक्शन था, तो हम जब वहाँ पहुँचे सवेरे सवेरे देखने के लिए, तो उन्होंने कहा कि देखिए बंसीदा, और बंगला में बातें कर रहे थे लेकिन ये कि बंगला समझ में आने लगी थी, वैसे भी आसान जबान है वो। तो उन्होंने कहा कि देखिए वो मीर के जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं, और मैं नहीं समझता कि ये जो रंग रोगन है इस हवेली का ये सही है, तो इसको थोड़ी एजिंग की ज़रूरत। तो बंसीदा ने कहा कि हाँ मैं एजिंग कर दूंगा। और वो जाने लगे मानिकदा, और जाते जाते उनको वो एक बाल्टी दिखाई थी जिसके अंदर पेंट करने वालों ने इस खौफ से कि ब्रश सूख न जाए वो भिगो दिए थे पानी में, और वो गंदा सा पानी वहाँ पड़ा हुआ था। एंड सडनली ही स्टॉप्ड, और उन्होंने वो ब्रश उठाया और उसको उन्होंने दीवार के ऊपर पेंट करना शुरू कर दिया। और जब वो बहुत ही गंदी मैली सी एक तह चढ़ गई, तो उन्होंने कहा मुझे ये चाहिए और धब्बे चाहिए मुझे, ताकि ये एहसास हो सके कि इस आदमी की माली हालत जो है वो कैसी है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा जो मैं कभी नहीं भूलता
1: जी,
0: डायरेक्शन की जो जहानत होती है वो मैं उसके लिए मैं कोट करूंगा कि एक सेट था, तो उसमें वो मिर्जा साहब जो है वो शतरंज खेलने के लिए आते हैं सवेरे सवेरे, वो आए और वो बाहर एक, उस जमाने में ब्रूट हुआ करते थे वो बड़े बड़े, मतलब 10K का जो की लाइट होती थी, तो वो एक लकड़ी का घोड़ा बना के और उसके ऊपर रख दी गई थी
1: जी,
0: बाहर की रेज जो है वो अंदर आ सके। तो उन्होंने लाइटिंग जब देखी तो उन्होंने उनसे शिवेंद्र राय से कहा कि इसको एक 2 फुट ऊपर कर दो। तो जी 2 फीट ऊपर करने वाली बात थी, मुझे तो कुछ इतनी समझ में नहीं आई। तो शिवेंद्र राय ने कहा ठीक है दादा मैं कर देता हूँ। तो मैं उनके पीछे पड़ गया, मैंने कहा कि मानिकदा ये बताइए आप, वो उससे क्या फर्क पड़ता है लाइट, आपने उसे 2 फुट ऊपर क्यों कराया। तो वो बहुत देर तक टालते रहे, फिर लंच में मैंने फिर उनको घेर लिया, हम सब लोग साथ में ही लंच करते थे। और उनकी एक बड़ी अजीब आदत थी कि वो एक मरतबा जब सेट पे आ जाते थे तो पैकअप बोलने के बाद ही सेट से निकलते थे, लंच में भी वो बाहर नहीं जाते, वहीं सेट पर खाना खाते। तो मैंने कहा कि ये आपने क्यों किया, थोड़ा सा चिढ़ गए, कहने लगे तुमने स्क्रिप्ट लिखा है ना। मैंने कहा हाँ। तुमने क्या टाइम लिखा है, क्या वक्त है। सुबह का वक्त है, 9:30-10 बजे का वक्त होगा। तो कहने लगे और ये मौसम कौन सा है, महीना कौन सा है। मैंने कहा अकॉर्डिंग टू अस ये दिसंबर है। तो कहने लगे कि दिसंबर में लखनऊ में 10 बजे सूरज निकलता है, तो सूरज की जो किरणें हैं वो ऊपर से आएंगी, बीच में से नहीं आएंगी।
1: वाह,
0: समझे आप।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: सूरज अभी निकला है तो उसकी जो एंगल जो होना चाहिए किरणों का वो हायर साइड पे होगा, न के नीचे। तो ये जो बात थी वो तरीके की, वो मुझे बहुत ही बहुत कुछ उनसे सीखने का मौका मिला। जब भी आते थे यहाँ बॉम्बे में तो 1-2 मुलाकातें उनसे जरूर होती थी, हम उनके घर जाया करते थे, चाय के बड़े शौकीन थे वो।
1: अच्छा,
0: मुझे भी चाय का बड़ा शौक, तो मैं उस लालच में बहुत जाता था उनके घर, क्योंकि उनके कोई एक बहुत चाहने वाले थे जिनका दार्जिलिंग में टी स्टेट था। तो वो हाथ से तोड़ी हुई चाय की पत्तियां उनको भेजा करते थे, वो ब्लेंडेड या ये नाम वाली चाय नहीं होती थी, और वो चाय का फ्लेवर ही अजीब होता था। और उसको वो बड़े प्यार से बना के वो उसके ऊपर लेक्चर भी देते जाते थे और समझाते भी जाते थे और पीते भी जाते थे, और गुड ओल्ड डेज के ऐसा लगता है कि यादें कल की हैं।
1: सत्यजीत रे ने कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाई। सन 1971 में उनकी बनाई डॉक्यूमेंट्री थी सिक्किम। इसके बाद सन 1987 में उन्होंने अपने पिता पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई सुकुमार रे। सन 1976 में आई डॉक्यूमेंट्री बाला, और सन 1961 में रविंद्रनाथ टैगोर पर एक डॉक्यूमेंट्री आई। सन 1972 में उन्होंने द इनर आई नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इस तरह सत्यजीत रे न सिर्फ फीचर फिल्में बनाते थे बल्कि डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाने में भी उनकी अच्छी खासी रुचि थी। सत्यजीत रे केवल सिनेकार ही नहीं थे, वे चित्रकार भी थे, संगीतकार भी थे और लेखक भी। बच्चों के लिए उन्होंने अपार लेखन किया। 23 अप्रैल 1992 को सत्यजीत रे इस असार संसार को छोड़कर चले गए। महान फिल्मकार कुरुसावा ने सत्यजीत रे के लिए कहा था, सत्यजीत रे का अवलोकन बड़ा गहरा और खामोश होता है। उनकी फिल्मों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। वो अपने आप में एक विशाल फिल्म इंडस्ट्री है। अगर आपने सत्यजीत रे का सिनेमा नहीं देखा तो समझ लीजिए कि आपका जीवन वैसा ही है जैसे आप धरती पर तो रहे मगर आपने सूरज और चांद पर नजर नहीं डाली। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: आज के फनकार।

फिल्म संसार की जानी मानी कलाकारों पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, हर रोज सुबह 9:30 और रात 9:30 पर।

कहते पृथ्वी पृथ्वी रु जन्म होती माँ सीता सीता देवी शत्रु होती रावण रावण रिपु हेले राम रामचंद्र मित्र हेले सुग्रीव सुग्रीव भृत्य होती हनुमान हनुमानंकर बापा होती पवन पवन वाहन हेले हरिण प्रांताक्षर विनाशाय प्रांत अक्षर अर्थात शेष अक्षर अणकु लोप करिदेले रहिला हरि से ही हरि समस्तंकर सर्वस्मिन कालरे मंग

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जयमौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था, उसे गलत नहीं कहा जा सकता। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं, उनमें दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आयोग ने बताया कि बुधवार को फलता विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया गया। सभी मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया में क्षेत्र में विस्फोटों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल के बहुत ही रचनात्मक और प्रभावशाली होने की कामना की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्य टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 160 रन का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ଶୁଣିଲେ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଏଥିସହିତ ଶେଷ ହେଲା ଆଜି ଦିନରେ ଆମର ପ୍ରଚାର ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆକାଶବାଣୀ ରାଉରକେଲା 102.6 FM ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ। ଆଜିର ଅଧିବେଶନ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଗାମୀକାଲି ଆମର ପ୍ରଚାର ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ କେତୋଟି ସୂଚନା। ଆଗାମୀକାଲି ସକାଳ 6:05 ଶୁଣିବେ ଭକ୍ତିଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦନା। ଶ୍ରୀ ରାମଚରିତ ମାନସର ଆଗାମୀକାଲି ପ୍ରଚାର କରିବୁ 146ତମ ଭାଗ ସକାଳ 6:35। ସକାଳ 7:25 ରହିଛି କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିଶୁ ରାଇଜ। ସକାଳ 8:30 ଶୁଣିବେ କେତୋଟି ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସଙ୍ଗୀତା ମାସି ଏବଂ ରାଜା ରଥଙ୍କ କଣ୍ଠରେ। 8:45 ବଣ ପାହାଡ଼ର ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ କିଷାନ ଗୀତ, ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଏବଂ ସାଥୀ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 9:00 ଶୁଣିପାରିବେ ଅପରାହ୍ନ 5:00 ଯାଏ ଆମର ନିୟମିତ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିବା ବିବିଧ ଭାରତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:00 ରହିଛି ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସିନେ ସଙ୍ଗୀତ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:00 ପ୍ରଚାର କରିବୁ ନାରୀ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାରୀ ମହଲ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏଥିଲା ଆଗାମୀକାଲି ଆମର ପ୍ରଚାର ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ କେତୋଟି ସୂଚନା। ଆକାଶବାଣୀ ରାଉରକେଲା ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 11:07 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ ଆଜିର ଅଧିବେଶନ। ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବୁ ଆଗାମୀକାଲି ଠିକ୍ ସକାଳ 5:55 ସେତେବେଳେ।